आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारु चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर, एफएम पर 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की पहली तिथि तदनुसार 22 मई सन 2026 सवेरे के 5:57 होने को है। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की

0: और तेजी से बढ़ रहा है।
1: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने SIT को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सू के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आज के विचार में आचरण विषय पर विचार सुनिए। वाचक स्वर श्री अगर चंदना हटा का है।
3: प्रत्येक मानव चाहता है कि उसे यश और सम्मान मिले, पर जिन कार्यों से सम्मान मिलता है उन्हें वह करने को तैयार नहीं होता, प्रयत्न नहीं करता। यह तो निश्चित है कि कोई भी बात केवल चाहने से ही नहीं मिल जाती। चाहने वाले तो उसके लिए योग्यता भी प्राप्त करनी होती है, पुरुषार्थ भी करना होता है। सम्मान प्राप्त करने का सुगम उपाय है कि हम भी दूसरों का सम्मान करें। साधारणतया लोग अपना सम्मान तो करवाना चाहते हैं, पर दूसरों का सम्मान स्वयं नहीं करते। तो बताइए, आप अपनी ऐंठ में रहेंगे तो दूसरे को सम्मान कैसे पा सकेंगे? आपको घमंडी समझेंगे और उस दोस्त को महत्व दे देंगे, फिर वे आपका सम्मान क्यों करेंगे? लोक व्यवहार में भी यह प्रसिद्ध है कि साथ दे और वो साथ ले। हम किसी को देंगे नहीं तो दूसरे हमें क्यों देने लगेंगे? हाँ, आंटी बांटी का भी बराबर का नाता होता है। कहावत है, रख पत रखाए पत। मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा तो आप भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार बर्ताव करेंगे। सम्मान प्राप्त करने का एक और सुगम उपाय है कि अपने में गुणों का विकास करते जाएं। हमें ये देखना होगा कि जो व्यक्ति सम्मान प्राप्त करता है उसमें ऐसे कौन से गुण हैं जिनसे वह सम्मान पा रहा है। वैसे कोई व्यक्ति सामाजिक कार्यों में सबसे आगे रहता है या गाने बजाने में निपुण होता है तो फिर पढ़ने लिखने में होशियार है, ऐसे व्यक्ति समाज में सहज ही सम्मान पाए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण व अवगुण होते ही हैं, पर साधारण गुण होने से सम्मान प्राप्त करने योग्य विशेषता प्राप्त नहीं हो सकेगी। यश और सम्मान प्राप्त करने के लिए एवं किसी भी अच्छे गुण का समुचित विकास करना आवश्यक होगा। दूसरों की अपेक्षा जहाँ तक आपके गुणों का स्तर ऊंचा नहीं होगा तब तक तो सर्वसाधारण

0: के समान ही आपकी स्थिति रहेगी। उस स्थिति में आप सम्मान प्राप्त करना चाहें तो संभव नहीं होगा। इसलिए विशेषताएँ चाहे थोड़ी ही हो पर होनी ऐसी चाहिए कि दूसरों की अपेक्षा काफ़ी अच्छे स्तर की हों। जैसे लाखों विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते हैं पर उनमें से सबसे अधिक नंबर लाता है उन्हीं विद्यार्थियों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। जैसे कि महात्मा भर्तृहरि ने कहा है, गुणा पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः, अर्थात गुणीजनों की पूजा गुण से होती है, उनके वेश या उम्र से नहीं। अतः गुणों का विकास अधिकाधिक उच्च स्तर का करिए एवं दूसरों को उचित सम्मान देते रहिए तो आपको बिना मांगे भी सम्मान अवश्य मिलेगा।
1: आज का विचार था आचरण विषय पर, वाचक स्वर था श्री अगरचंदना हटा का। हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ। संगीतकार हैं श्री सतीश भाटिया। आज आप सुनेंगे एपिसोड नंबर 36।

कामदेव को भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए भेजना देवताओं की एक चाल थी जिसमें वे सफल हुए थे, किंतु शिव के तृतीय नेत्र के खुलते ही कामदेव के भस्म हो जाने की घटना से देवगण एक बार फिर हतोत्साह हो गए। रति के रोने बिलखने से द्रवित होकर भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया कि उसका पति कामदेव अब से अनंग होकर सभी प्राणियों को व्यापेगा। इस वरदान से देवताओं का मनोबल बढ़ा और ब्रह्मा तथा विष्णु समेत सभी देवता शिव जी के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने अनंग के रूप में कामदेव को पुनर्जीवन देने के लिए शिव जी की प्रशंसा की। देवगण ने तब पार्वती के अपार तप का वर्णन करते हुए शिव जी से उन्हें पत्नी रूप में अंगीकार करने की प्रार्थना की। अपने आराध्य श्रीराम के वचन याद करके शिव जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ, संगीतकार थे श्री सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी ही देर बाद सुनेंगे आप कार्यक्रम खेती की बातें। 7 बजे सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात। सुप्रभात कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वार्ता जैव विविधता का महत्व एवं चुनौतियां। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सुभाष। प्रस्तुति रहेगी श्री रेवंत राम लेगा की। कार्यक्रम संयोजन श्री अमित सिंह का। सौरभ कार्यक्रम में सवेरे 8:30 पर आप सुनेंगे कहानी हेली। कहानीकार होंगे डॉक्टर चेतन स्वामी। 9:15 पर कार्यक्रम गांधी चर्चा में आज का विषय रहेगा शाश्वत द्वंद। वाचक स्वर श्री चंद्रशेखर जोशी का। प्रस्तुति श्री अशोक कुमार की। कार्यक्रम संयोजन श्री अमित सिंह का। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। दिन में 11 बजे आप सुनेंगे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की गरिमामय उपस्थिति में सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा 23वां

अलंकरण समारोह और रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2026 का विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजन का सीधा प्रसारण। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से दिन में 11 बजे प्रसारित होगा। महिलाओं के लिए महिला जगत का समय दिन में 1:05 पर रहेगा। चर्चा के विषय रहेंगे जैव विविधता दिवस, बीज संरक्षण, सांस्कृतिक उत्सव और परंपराएं। बच्चों के साथ खेलें और समय बिताएं, घरेलू कचरे से खाद बनाना। साथ ही आप सुनेंगे वार्ता, मोटा अनाज स्वास्थ्य का आधार। वार्ताकार होंगी श्रीमती साक्षी व्यास। रसोई की बातें और ब्यूटी टिप्स।

युवा साथियों के लिए युवाणी का प्रसारण संध्या 5:05 पर रहेगा। आज की बात का विषय रहेगा एआई और रोजगार का भविष्य। लघु जानकारी सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे में, फंगस, पीएम सेतु योजना और गीत संगीत।

ग्रामीण श्रोताओं के लिए ग्रामीण जगत का प्रसारण संध्या 7 बजे होगा। चर्चा के विषय रहेंगे फसल चक्र का महत्व, सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्परिणाम, उष्ट संरक्षण योजना राजस्थान, हमारी जनगणना हमारा विकास, लोकगीत और मौसम संबंधी जानकारी। रात 10 बजे उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तां जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे सितार पर राग नंद कल्याण, कलाकार उस्ताद रईस खां।

0: ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है खेती की बातें।
1: भाई लोगा, गाय रे गोबर रो इस्तेमाल भी रसोई गैस सू लेयर देसी खाद और जैव उर्वरक बनाने में करियो जा रही है। गाय रे गोबर सू पेंट, पेपर, बैग, ईंट, गोकास्ठ लकड़ी और दंत मंजन ताई बनाया जा रहा है। कई स्याणा मिनक बतावे है कि गाय रे गोबर सू बनियोड़ा घरा में एटॉमिक रेडिएशन रो कोई असर कोनी होवे और गौमूत्र सू भी ला इलाज बीमारियां ने ठीक करियो जा सके है। वजह है आज देसी गाय पालन ने प्रमोट करियो जा रियो है और ओ ग्रामीण क्षेत्रा में आमदनी रो मोटो जरियो बन गयो है। पहली सिर्फ गाय रे दूध कमाई होती ही पण जद सू इको फ्रेंडली रो नारो बुलंद होयो है, जद सू ही गाय रे गोबर सू लेयर गौमूत्र तई मोकड़ा उत्पाद बनाया जा रहा है। गाय रे दूध में औषधीय गुण मौजूद होया करे है। इरे दूध सु बनियोड़ा घीरी विदेशा में भी मांग है, जद के इरे गोमूत्र सु आज मोकड़ी ला इलाज बीमारियां हैं बिरे निदान में भी काम लियो जा रियो है। गाय रे गोबर और इस्तेमाल रसोई गैस सु लेयर देसी खाद और जैव उर्वरक बनाने में करियो जा रियो है। इन सु पेंट, पेपर बैग, ईंट, गोकास्ठ लकड़ी और दंत मंजन ताई बना रिया है। एक एकली गाय प्राकृतिक खेती रे खर्चे ने आदो कर देवे है। जे आप भी गाय पालो हो तो इरे दूध रे सागे सागे गौमूत्र और गोबर ने बेचर आछो पैसो कमा सको हो। पुराने समय सु ही गांव में घरा ने गोबर सु लेपने रो चलन रहो है। गाय रे गोबर ने अपर ग्रंथा में सोनो कहो गयो है। ओ वास्तु रे अनुसार तो शुभ है ही, सागे ही कीटा सु भी सुरक्षित राखण में मदद करे है। दूजी किस्मारी गाया और भैंसा रे गोबर में 50 सु लेयर 70 लाख ताई बैक्टीरिया होया करे है, पण देसी गाय रे 1 ग्राम गोबर में 3 सु 5 करोड़ बैक्टीरिया मौजूद होया करे है, जका घर ने सुरक्षित राखे है। इन विज्ञान रे मद्देनजर अबे गोबर सु ऑर्गेनिक पेंट बनायो जा रियो है। अपर देश रे कई राज्या में गोठाना में ना केवल ऑर्गेनिक पेंट रो उत्पादन हो रियो है, सागे ही ओ पेंट जको है ओ मल्टीनेशनल कंपनियां रे पेंट सु भी सस्तो बिक रियो है। मोकड़ी संस्थावां और लघु उद्योग कुटीर उद्योग धंधा

वाला भी गोबर सू बने वाला वैदिक पेंट लॉन्च करया है। इस सागे ही गोबर सू पेपर बैग मैट सू लेयर ईंट ताई इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लॉन्च करया जा चुका है, जका केमिकल प्रोडक्ट रा अच्छा विकल्प है। केमिकल रे बढ़ते इस्तेमाल सू अपारी खेती बंजर हो रही है और भूजल भी प्रदूषित होतो जा रही है। इन समस्या ने जड़ सू खत्म करने में अबे किसान भाया ने जीरो बजट प्राकृतिक खेती करन करन सारू प्रेरित करया जा रहा है। आ खेती पूरी तरह सू गाय माथे आधारित है, जिनमें इन्हें गोबर और गौमूत्र सू जीवामृत बीजामृत

0: कई राज्य सरकारें किसान भाइयों ने गायें उपलब्ध करवा रही है, अनुदान भी दे रही है ताकि गाय पालन ने प्रमोट करता थका प्राकृतिक खेती और इनसू उपजोड़ा पौष्टिक उत्पाद है वाने वडाओ मिल सके। सागे ही किसान भाई गाय रो दूध बेचर भी अच्छी आमदनी कर सके है। जे आप पशुपालक हो और खुद रो डेयरी फार्म चलाओ हो तो एक बायोगैस प्लांट भी लगा सको हो जिन मायने पूरे गांव ने निशुल्क रसोई गैस मिल सके है। कहीं आप जानो हो के आपा भारतीय गोबर सु एक मजबूत कागज और केरी बेग ताई तैयार कर सका हा। अपर देश रही कई संस्था में गाय रे गोबर सु कागज बनाने रो तरीको सिखावे है और वे कागज बना दिखायो है। सागे ही देश री कई योजनावा में जोड़ लोगा ने इन भातरा उत्पादन बनाउन सारू जागरूक कराया जा रहा है। वो भी ग्रामीण रोजगार और किसान भया सारू अच्छी आमदनी रे सृजन में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रियो है। गाय रे गोबर सु तैयार माड़ा सु स्नायु संबंधी बीमारिया में राहत मिले है। गोबर ने अब सेहत री सुरक्षा सु जोड़ता थका गऊ अरक दंत मंजन साबण सजावट रो सामान माड़ा चूड़िया और मोबाइल स्टिकर तई तैयार करीज गया है। जठे गोबर सु तैयार दंत मंजन ने मुंडे रे पायरिया ने खत्म करने में प्रभावी बतायो जा रही है। बठे गोबर सु बनियोड़े साबण ने स्किन एलर्जी में लाभकारी बतायो जा रही है। इरे अलावा दीपावली माथे गोबर सु बनियोड़ा दिया मूर्तियां भी घनी चर्चावा में रेवे है और तिवार आवताई आरी मार्केटिंग भी अच्छी हो जावे। आयुर्वेद में गाय ने गऊ मूत्र ने संजीवनी समान बतायो है। कई आयुर्वेदिक संस्थाना में गौमूत्र सु मोकड़ी लाइलाज बीमारियां ताईरो सफल इलाज होने की बात कही जी है। गौमूत्र रे औषधीय गुणा सु पेट री बीमारियां सु लेर चरम रोग आंत्रशोथ पीलिया सांस री बीमारी विरेचन कर्म मुख रोग नेत्र रोग अतिसार मूत्राघात कृमि रोग हृदय रोग बीमारियां जड़ा मोकड़ा घातक रोगा में भी आरो इलाज प्रभावी बताई जो है।
1: गोबर निर्मित विविध उत्पाद इस विषय पर थी खेती की बातें। वाचक स्वर श्री बजरंग सारस्वत का था। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। लीजिए सुनिए लोक भजन।

सुबह की सुनहरी किरणें, चिड़ियों की मधुर चहक, पेड़ों की हरियाली और बहती हवाओं की सरसराहट, प्रकृति का हर दृश्य मानव जीवन का संगीत सुनाता है। जी हाँ श्रोताओं, इन्हीं मनमोहक रंगों और प्रकृति की अनुपम सुंदरता के साथ आप सभी का स्वागत हमारे आज के सुप्रभात कार्यक्रम में। श्रोताओं, धरती पर मौजूद हर जीव, हर पौधा और प्रकृति का हर छोटा बड़ा तत्व हमारे जीवन को संतुलित और सुंदर बनाता है। आवश्यकता है प्रकृति को अनुभव और महसूस करने की।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोताओं, प्रकृति के रंग बिरंगे रूप, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियां, पर्वत और सूक्ष्म जीव, ये सभी मिलकर हमारी धरती को जीवन प्रदान करते हैं। जैव विविधता केवल प्रकृति की सुंदरता नहीं बल्कि मानव जीवन का आधार भी है। धरती की हरियाली है जीवन का श्रृंगार, जीव जंतुओं से महकता है सारा संसार। प्रकृति का संतुलन बनाए रखना है काम, जैव विविधता बचाना हम सभी का है काम। जी हां श्रोताओं, आज है 22 मई और हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ताकि लोगों में पर्यावरण संरक्षण और जीवों की विविधता के प्रति जागरूकता को बढ़ाया जा सके। श्रोताओं, आज के समय में बढ़ता प्रदूषण, जंगलों की कटाई, जलवायु

0: परिवर्तन जैव विविधता के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। श्रोताओं, यदि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो भी मानव जीवन सुरक्षित रह सकता है। तो इसी विषय पर आज हम जानकारी प्राप्त करने के लिए एक आपको जानकारी दिलवा रहे हैं वार्ता के माध्यम से, जैव विविधता का महत्व एवं चुनौतियां, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुभाष सुथार। प्रस्तुति है श्री रेवंत राम लेगा की, कार्यक्रम का संयोजन श्री अमित सिंह का है।
1: प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस विश्व में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 का विषय वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना है। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे प्रयास करके जैव विविधता के नुकसान को रोकना और प्रकृति का संरक्षण करना है। हम सभी पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु एवं वनस्पति से जुड़े हुए हैं। इसमें हम सभी पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु एवं वनस्पति से जुड़े हुए हैं। इसमें यदि कोई एक कड़ी कमज़ोर होती है तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बिखर जाता है। यानी जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की विविधता हमारे पर्यावरण को मजबूत तथा समृद्ध बनाती है। मानव जीवन के प्रारंभ होने से पहले पृथ्वी पर जैव विविधता किसी अन्य काल से अधिक थी। मानव के पृथ्वी पर आने से जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगी, क्योंकि एक या अन्य प्रजाति का मानव ने आवश्यकता से अधिक उपभोग किया है, जिससे जीव जंतु एवं वनस्पति पर संकट आया। पृथ्वी के सभी भागों में जैव विविधता एक समान नहीं है। ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रदेशों में सर्वाधिक है। जैसे जैसे हम ध्रुव प्रदेशों की तरफ बढ़ते हैं तो इन विविधता में कमी आती है। पृथ्वी पर भूआकृतिक तथा जलवायु विभिन्नता के कारण प्रजातियों में विविधता पाई जाती है। इन जीव जंतुओं की विभिन्नता प्रकृति के साथ साथ सभी जीवधारियों के लिए बहुत जरूरी है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव तथा उनकी विभिन्न प्रजातियों की विविधता या अंतर को ही जैव विविधता कहा जाता है। इस शब्द को वैश्विक स्तर पर फैलाने में ईओ विल्सन और वाल्टर जी रोजेन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। पृथ्वी पर अनगिनत जीव जंतु मिलते हैं, जिनमें आनुवंशिक विविधता में जीवधारियों के गुण आनुवंशिक स्तर पर जीन द्वारा निर्धारित होते हैं। किसी भी प्रजाति के जीव में एक समान जीन के अलग अलग रूपों का आकलन आनुवंशिक विविधता कहलाती है। इस विविधता के कारण ही मनुष्य के कद, रंग या शारीरिक लक्षणों में भिन्नता पाई जाती है। प्रजाति में अधिक आनुवंशिक विविधता पर्यावरणीय परिवर्तनों से अच्छी तरह ढाल सकने में सक्षम होती है। प्रजातीय विविधता एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की अनेकता से है। जिन क्षेत्रों में प्रजातियों में अंतर अधिक है उसे जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है, जैसे भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय। पारिस्थितिकीय विविधता किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आवास की विविधता पारिस्थितिकी विविधता है, जैसे वन, घास के मैदान, समुद्र, पर्वत, मरुस्थल इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाने का उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना है कि यह विविधता हमारे जीवन के लिए कितनी जरूरी है। जैव विविधता का सम्मेलन सर्वप्रथम 5 जून 1992 में रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए खोला गया और 29 दिसंबर 1993 में लागू हुआ। 17वां जैव विविधता सम्मेलन अक्टूबर 2026 को येरेवान, आर्मेनिया में किया जाएगा। सम्मेलन की थीम प्रकृति के लिए कदम उठाना है। वर्तमान में तीव्र गति से वन कट रहे हैं एवं नदियां प्रदूषित हो रही है। जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत का क्षय हो रहा है, अनेकों जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं। इसीलिए यह दिन हमें चेतावनी देता है कि हमें प्रकृति की रक्षा, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत का क्षय, अनेकों जीव जंतुओं का विलुप्त हो रहे हैं। इसीलिए यह दिन हमें चेतावनी देता है कि यदि हमें प्रकृति की रक्षा नहीं की तो भविष्य संकट में पड़ सकता है। भारत जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत में

भौगोलिक विविधता के कारण जीव जंतु और वनस्पतियों में अधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ विश्व की लगभग 6 से 7% जीव प्रजातियाँ और 8% पादप प्रजातियाँ पाई जाती है, यानी दुनिया की लगभग 8% जैव विविधता भारत में मिलती है, जबकि हमारे पास विश्व का केवल 2.4% भूभाग है। भारत में अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे, पक्षी, स्तनधारी, सरीसृप और समुद्री जीव पाए जाते हैं, जैसे बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, एक सींग वाला गेंडा, हिम तेंदुआ, हाथी, बाघ, मोर, चिंकारा, काला हिरण, गोडावण, ऊंट, लोमड़ी, रेगिस्तानी बिल्ली एवं अनेकों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इसी प्रकार भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र से लेके अल्पाइन तक वनस्पति पाई जाती है। मानव जीवन में जैव विविधता का महत्व बहुत अधिक है। यह विविधता मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है। मनुष्य इनकी विविधता से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करता है। हम जो भोजन खाते हैं, जो हवा लेते हैं, जो पानी पीते हैं, सब प्रकृति की देन है। धान, फल, सब्जियां, दालें हमारे भोजन के स्रोत हैं। अनेकों दवाइयां, पौधे, जड़ी बूटियों से बनती है। कृषि, पर्यटन, वन उत्पाद, मत्स्य पालन, पशु पक्षियों से प्राप्त उत्पाद करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार है। पर्यावरण संतुलन जैव विविधता से ही संभव है। लकड़ी, ईंधन, कपड़ा प्रकृति से प्राप्त करते हैं। भारत में प्रकृति को पूजनीय माना गया है। पिंपल, बरगद, तुलसी और नदियों की पूजा हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। यह विविधता ही प्रकृति को समृद्ध और संतुलित करती है। जैव विविधता के अनेकों महत्व के बावजूद इन पर खतरा मंडरा रहा है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ता प्रदूषण, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक आपदा जैसी समस्याओं ने जैव विविधता को खतरे में डाल दिया है। वनों की अत्यधिक कटाई हो रही है। पेड़ों की कटाई से पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न होता है तथा जीव जंतुओं का आवास नष्ट हो रहा है। अत्यधिक प्लास्टिक का उपयोग, रासायनिक कचरा, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, औद्योगिकरण, शहरीकरण ने पर्यावरण को प्रदूषित किया है। वैश्विक तापमान में वृद्धि से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, जिससे जैव विविधता प्रभावित हुई है। ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, सूखा, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा से प्राणी जात एवं वनस्पति जात को नुकसान हुआ है और परिणाम स्वरूप संबंधित प्रभावित क्षेत्रों की जैव विविधता में बदलाव आया है। रासायनिक कृषि के कारण उपजाऊ मृदा बंजर हो रही है तथा जीव जंतुओं को भी नुकसान हुआ है। वहीं विदेशज प्रजातियों के आगमन से परिस्थिति पारितंत्र में प्राकृतिक या मूल जैव समुदाय को व्यापक नुकसान हुआ है। जैव विविधता को इन खतरों से बचाने के लिए हम सब मिलकर इनकी संरक्षण की दिशा में पहल करते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं एवं पेड़ों को बचाना होगा। प्लास्टिक का दैनिक जीवन में उपयोग कम करना होगा। विशेष रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बंद करना होगा तथा इनके स्थान पर अन्य विकल्पों को अपनाना होगा। वन्य जीवों के अवैध शिकार एवं तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना होगा। जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास का संरक्षण किया जाए, इसके लिए सौ स्थान इसके अंदर जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल आगार, पवित्र उपवन एवं जिले तथा बाह्य स्थान संरक्षण इसके अंदर बीज बैंक, जीन बैंक, वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर की विधियों का प्रयोग किया गया है। वहीं पर्यावरण प्रदूषण को कम किए जाने की आवश्यकता है। प्रदूषण बढ़ने से जो पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा उत्पन्न होता है, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण जीवों की पहचान करके उनके संरक्षण की आवश्यकता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संगठन IUCN एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने विश्व के सभी राष्ट्रों को पर्यावरण संरक्षण के नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा। भारत ने संरक्षण को प्रभावी बनाने हेतु जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया। इस प्रकार वैधानिक एवं व्यक्तिगत सहयोग के द्वारा जैव विविधता संरक्षण को सुनिश्चित किया जाना है। जल

0: संरक्षण, पर्यावरण शिक्षा, जैविक खेती को बढ़ावा देना है। पर्यावरण संरक्षण के लिए संदेश, पृथ्वी हर व्यक्ति की जरूरत पूरी कर सकती है, लेकिन व्यक्ति के लालच को नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। जब भी पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो अमरता देवी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उनका कथन है, सर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, अर्थात पेड़ बचाने के लिए सिर कट जाए तो भी सस्ता है। यह घटना आज भी विश्व को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जैव विविधता केवल जंगलों और जानवरों की बात नहीं है, अपितु ये मानव अस्तित्व का आधार है। यदि हमें सुंदर जीवन, अच्छा पर्यावरण और सुरक्षित भविष्य चाहिए तो हमें प्रकृति की रक्षा करनी ही होगी। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर हम सब मिलकर ये संकल्प ले कि प्रकृति की रक्षा करेंगे, पेड़ पौधों को बचाएंगे और नए लगाएंगे, जल और वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुंदर पृथ्वी छोड़ेंगे।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने सुनी ये महत्वपूर्ण वार्ता, जैव विविधता का महत्व एवं चुनौतियाँ। वार्ताकार थे डॉक्टर सुभाष सुथार, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेगा की, कार्यक्रम संयोजन श्री अमित सिंह का। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: श्रोताओं, अब जानकारी प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में, जिसे भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए चलाया गया। श्रोताओं, इसका उद्देश्य समान अवसर, सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को बढ़ाना, रोजगार के अवसर देना, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण पर जोर देना, आवास योजनाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, बैंक ऋण सुविधाएं, साथ ही सुरक्षा और समानता, बुनियादी सुविधाएं और सरकारी योजनाओं में भागीदारी को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो है समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना और उनको समान अवसर प्रदान करना।

आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। सवेरे के 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में अभी आपने कारवां फिल्म का ये गीत सुना। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में है। फिल्म का नाम है भीगी पलकें।

गीत फिल्म का गीत था ये, स्वर सुमन कल्याणपुर का था। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में है और फिल्म का नाम है ठोकर।

मीडियम वेव 215.05 मीटर पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं, उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
5: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में

0: कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आर्जिकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
7: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में 1 से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
5: सीबीआई ने

0: परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज दो और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। बीसीके के वन्नियारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्ता के शब्द हैं 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय

0: मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, दो मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाई तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस निकोस क्रिस्टोडोलाइडस इन न्यू दिल्ली टुडे। First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on June 1st postponed. Railways urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Chennai Super Kings by 89 runs in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the Delhi airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vefaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. A report.
3: Prime Minister Narendra Modi and the President of Cyprus will hold discussions on further strengthening bilateral cooperation in various areas of mutual interest. The areas include trade, investment, technology, education, culture, mobility, defense and security, artificial intelligence, fintech, innovation and research. They will also exchange views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. Several agreements will be signed and exchanged after the talks. The President of Cyprus will meet President Draupadi Murmu at the Rashtrapati Bhavan today evening. The visit of President of Cyprus taking place within a year of the historic visit of Prime Minister Narendra Modi to Cyprus in June last year, which was the first visit by an Indian Prime Minister to Cyprus in over two decades. This visit also assumes added significance in view of Cyprus's ongoing presidency of the Council of the European Union. India and Cyprus share close and time-tested partnership. The two countries will mark 65 years of diplomatic relations in February next year. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Modi chaired the meeting of the Council of Ministers yesterday in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said that the meeting involved exchange of perspectives and best practices relating to boosting ease of living, ease of doing business, and how to further reforms in order to realize the shared dream of a Vikasit Bharat. The first International Big Cat Alliance IBCA summit, which was scheduled to take place in New Delhi on the 1st of June, has been postponed to a later date. The summit focuses on the conservation of 7 big cat species, which are tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar, and puma.

0: members. The paper adds that the Supreme Court was not wrong to dismiss a petition that sought to stall the caste census, which is part of the ongoing Census 2027. The Chief Justice of India remarked that any government of the day must know how many people are backward and how many need welfare. And finally, the Statesman on its front page says, ahead of Nautappa, planes simmer, but some respite around May 29th. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on the June 1st, postponed. Railway urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RJ Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सवेरे के 8:30 हुए हैं। सौरभ कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कहानी हेली। कहानीकार हैं डॉक्टर चेतन स्वामी।
3: मारो घर एक डेलाण हेली है, चो फेर अरमाय सगले घना फूट रा मांडना कुरुड़ा। दादोजी ने हेली सजाउंडो घणो कोड रहा करतो। बारो मानणो हो कि हेली अर घर धिराणी मांडी चूंडी सजी संवरी शणगारोड़ी रही घर री इज्जत है। हेली री पोल सदाई उगाड़ी रेवनी चाहिए अर चार मिनक बढ़ता निकलता दिसना चाहिए। हेली माए मिनखारी चबा चोल नहीं रेवे जना क्या री हेली है अर कहीं सेठ है। दादाजी इन हेली ने घने कोड अर गह के सागे चिणवाई। कया करता कि बेटा पोता पड़पोता ताई मजे सु रहा की दिक्कत को नहीं आसी। डिगी ढोलानी छात वाला कमरा जिना ने बे आसरा कया करता। गोखे वाला बारी झरोका उन्हाड़े दिना माए दिनुगाड़े पून बायरो लेवणो होवे तो पग पसार बैठ जाओ। मैं दो भायारो टाबरपणो अठे ही बदीत होयो। मैं अजे 17 रो कोनी होयो और रविंद्र तो ओजो 13 ही साल रो। मारे घर उपरा बजराग तूट्यो। सिलीगुड़ी माए दम घुटने सु मारे जी सारी मौत होएगी। मारी मौत रो रहस्य मैं दो भाई कदई जान को नहीं सक्या। पाटरी गोदाम माए मारो दम घुट गयो। लोग के वे पाटरी लूंठी लूंठी गांठा बा माथे आए पड़ी। बे उन दिन गोदाम माए एकला सिलीगुड़ी में मारे पाटरो काम हो। दो अणसंबोड़ा टाबरा रे सिर सु बाप रो आधार खो सीज गयो। बोपार अबे मुनिमा रे हवाले रह गयो जिनने पछे मारा मामोजी संभाल्यो। कई दिना पछे हेली में भाड़ेती राखर मारे परिवार ने सिलीगुड़ी जावणो पड़्यो। अणछकरे एण बजराक रे घाले मारे परिवार ने बंगाल रो वासी बनणो पड़्यो। अबे मारो बोपार मामाजी अर मुनिम गुमास्ता माथे टिक्योड़ हो। मामाजी रे समझाया मैं बठे सुई बी कॉम ताई री बढ़ाई करी अर मारे घरू बोपार माए लाग गयो। बठे रही एक मारवाड़ी परिवार माए मारो ब्याह हो गयो। बे लोग कलकत्ते रहा करता। बोपार रे काम खातर नीरी बार मने कलकत्ते जावणो पड़या करतो। जूट मिलारा घना चक्कर लगावना पड़ता। मारे बोपार री परकत एड़ी ही। नैने के भाई रविंद्र री मारे पीढ़िया रेण बोपार माए थोड़ी सीख भी रुचि को नी। वो मने काम माए भिजोड़ो देखतो तो मनी मने इन बोपार री खेचल सुन डरन लाग गयो। सेकेंडरी करती वेला ई मन साफ कह दियो, भाई जी मैं तो मेडिकल लेन में जासू, आगे साइंस लेसू। मने कोई आपत्ति कोनी अर माँ एड़ी बातां घनी जानती ही कोनी। मैं उंडे उछाओ माए बदे पोकरता कहो, जे तू साइंस लेर डॉक्टर बने तो आपने परिवार खातर घने गीर बेरी बात होसी। तने इन खातर जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। मारी बात सुन ने थ्यावस मिल्यो और बायोलॉजी सु सीनियर कर्या पछे वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम री तैयारी माए जुट गयो। पहले बरस रो मेरिट माए थोड़ो लारे रह गयो। अगले साल उनने MBBS तो नहीं पर BDS खातर टॉप रैंक में प्रवेश मिल गयो। वो थोड़ो रुआसो होयो पर मैं उनरो मन बदावता कहो कि दांताना डॉक्टर कहीं कम होवे। मारी कमाई या रेपुटेशन किनी फिजिशियन सु कम

0: इन हेली सु हेत हो गयो। मैं एक दो दिन सु सोच रहे हो क्यों नहीं मैं मारी डेंटल क्लिनिक आपने इन्हीं कस्बे माए खोल लेऊं। रोज सिंजा रो सिंजा घरे इन हेली माए आए जाऊं। मारे मुंडे चिड़केरी मुलक आएगी और माँ तो आपरे छोटकी बेटे रे इन निर्णय सु घनी राजी हुई।
1: सौरभ कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी कहानी हेली। कहानीकार थे डॉक्टर चेतन स्वामी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार पंकज उदास है।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से प्रदेश के दो दिन के दौरे पर नई रेल सेवाओं और सुविधाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए जन सहभागिता पर जोर दिया। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत प्रदेश के 5 सरहदी जिलों के 1200 से अधिक गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। और प्रदेश में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कुछ स्थानों पर आज और कल आंधी बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से प्रदेश के दो दिन के दौरे पर रहेंगे। रेल मंत्री कई नई रेल सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। वे सबसे पहले जोधपुर पहुंचेंगे, जहां उनका विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन का कार्यक्रम है। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये रेलगाड़ी पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जैसलमेर में 67 करोड़ रुपए की लागत से नए बने कोच केयर कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ करेंगे। जोधपुर से रेल मंत्री जालौर जाएंगे, जहां वे भुज नई दिल्ली रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। ये ट्रेन राज्य भर के कई स्टेशनों से होकर गुजरेगी। जालौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि दिल्ली भुज एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत से जिले में खुशी का माहौल है। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी।
1: जालौर जिले को दिल्ली से सीधा रेलवे सेवा जोड़ने का अब सपना साकार हो रहा है। जिले के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। ये गाड़ी प्रतिदिन जालौर जिले के रानीवाड़ा, मारवाड़, भीनमाल, मोदरान और जालौर में इसका ठहराव रहेगा। जिले वासियों के लिए सीधा मोकलसर, समदड़ी, लूनी, पाली, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़ और जयपुर और दिल्ली के लिए सेवा उपलब्ध रहेगी। वहीं गुजरात की ओर जाने वाले लोगों के लिए धानेरा, भीलड़ी, भरूच, गांधीधाम, अंजार के लिए यात्री गाड़ी शुरू होने से लोगों में खुशी का माहौल है। कप्तान कनकलर, आकाशवाणी समाचार, जालौर।
0: रेल मंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा के लिए पाली भी जाएंगे। श्री वैष्णव कल जयपुर में रोजगार मेले में भाग लेंगे, जहां वे इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। 5 देशों के विदेश दौरे से लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने ये बैठक की। पश्चिम एशिया संकट से उपजे हालात के मद्देनजर और विभिन्न चुनौतियों से निपटने की दृष्टि से भी ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि बैठक में जीवन की सुगमता और व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भविष्य में सुधार करने के तरीकों पर भी विचार विमर्श किया गया। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज शाम कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वच्छता को देशवासियों का सामूहिक दायित्व बताया है। उन्होंने कहा कि ये केवल सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जन जन का आंदोलन है। श्री शर्मा कल डूंगरपुर में स्वच्छता संदेश कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर ने स्वच्छता को जन सहभागिता का उत्सव बनाया है। इसकी वजह से आज सब जगह डूंगरपुर मॉडल की चर्चा होती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए लगातार

0: लगातार काम कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत अब तक राज्य में 3 लाख के करीब व्यक्तिगत शौचालय और 5,000 से अधिक सामुदायिक शौचालय बनवाए गए हैं। वहीं 41,000 से ज्यादा ODF प्लस मॉडल विलेज बने हैं और 21 जिलों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री ने आज दंभोला गांव में पैदल भ्रमण कर लोगों से संवाद भी किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया है। इससे लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का नया आदर्श दुनिया के सामने पेश किया गया है। कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर खुशी जाहिर की। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद से लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया है।
1: संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत राज्य में सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास शुरू किया गया है। इस योजना के तहत 5 सरहदी जिलों में 1,200 से अधिक गांवों के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार ने सालाना 150 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। कल जयपुर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में वाइब्रेंट विलेज राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक हुई। इसके तहत जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और फलौदी में रणनीतिक महत्व के 184 गांवों में विभिन्न क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा में विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण और बुनियादी सुविधाओं सहित कई विषयों की मौके पर ही समीक्षा की और अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से काम करने को कहा। श्री बिरला ने शहर के सुनियोजित, सुरक्षित और सुविधाजनक विकास पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में LPG प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन LPG देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर जीवों के महत्व और पर्यावरण संतुलन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस साल की थीम वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना रखी गई है। इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। पाली से हमारे संवाददाता ने बताया कि जैव विविधता दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण शपथ और पौधरोपण सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: जैविक क्षेत्र गांवों और पहाड़ों के बीच तेंदुओं की मौजूदगी जैव विविधता का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जैव विविधता संरक्षण का महत्व बताया जाएगा। पौधरोपण, पर्यावरण संरक्षण, शपथ एवं संगोष्ठी आयोजित कर प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीवों के संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। वहीं अधिक से अधिक पौधरोपण, जल संरक्षण करने तथा पर्यावरण को स्वच्छ रखने की अपील की जाएगी। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
0: प्रदेश में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इसके असर से उत्तर पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में आंधी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इसका असर आज और कल रहने के आसार हैं। इससे दोपहर बाद कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। इस बीच 46.5 डिग्री सेल्सियस के साथ कल श्रीगंगानगर प्रदेश में सबसे गर्म स्थान रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि दिन के समय जहां तपती धूप लोगों को झुलसा रही है, वहीं रातें भी काफी गर्म बनी हुई हैं।
4: सूरज की पहली किरण के साथ ही गर्मी अपना एहसास करवा देती है। इसका असर देर रात तक बना रहता है। लगातार भीषण गर्मी के चलते दोपहर के समय बाजार भी वीरान नजर आने लगे हैं। तेज गर्मी को देखते हुए प्रशासन की ओर से दमकल की सहायता से शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव भी करवाया जा रहा है। इधर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर के समय

0: अतिआवश्यक काम होने पर ही घरों से निकलने की एडवाइजरी जारी की है। शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर।
1: अधिकतर शहरों में कल दिन का पारा 40 से 44 डिग्री के बीच रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से प्रदेश के दो दिन के दौरे पर रहेंगे। नई रेल सेवाओं और सुविधाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए जन सहभागिता पर जोर दिया। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत प्रदेश के 5 सरहदी जिलों के 1,200 से अधिक गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। और प्रदेश में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कुछ स्थानों पर आज और कल आंधी बारिश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए रागिनी का गाया ये लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में रागिनी का गाया ये लोकगीत अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। गांधी चर्चा में सुनिए शाश्वत द्वंद विषय पर आज का विचार। वाचक स्वर श्री चंद्रशेखर जोशी है, प्रस्तुति श्री अशोक कुमार की है, संयोजन श्री अमित सिंह का।

नमस्कार, गांधी चर्चा में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में सुनिए शाश्वत द्वंद्व विषय पर गांधी जी के विचार। एक मित्र लिखते हैं, आपने यंग इंडिया के 11 अक्टूबर के अंक में प्रकाशित अपने एक लेख अहिंसा की गुत्थी में अत्यंत ही स्पष्ट और जोरदार ढंग से लिखा है कि कायरता और अहिंसा दोनों साथ साथ नहीं रह सकती, एक दूसरी से बिल्कुल मेल नहीं खाती। आपके कथन में लेश मात्र भी अस्पष्टता नहीं है, पर मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमें बतलाएं कि मनुष्य अपने चारित्रिक गठन से कायरता को किस तरह बिल्कुल निकाल फेंक सकता है। मैं देखता हूं कि मानव चरित्र उसकी बनी बनाई आदतों का कुल योग ही होता है। हम अपनी पुरानी आदतों को खत्म करके साहस, बुद्धिमता और कर्म की नई आदतें कैसे डाल सकते हैं? मुझे इसका पूर्ण विश्वास है कि आदतों को खत्म किया जा सकता है और ज्यादा अच्छी उच्च स्तर की ऐसी नई आदतें डाली जा सकती हैं जो मनुष्य को एक सर्वथा भिन्न चरित्र प्रदान कर दें। मुझे लगता है कि आप मानते हैं कि प्रार्थना, शील और अध्ययन मनन के बल पर मनुष्य अपने एक सर्वथा नए रूप को जन्म दे सकता है। क्या आप इनके बारे में हमें बतलाने की कृपा करेंगे? यंग इंडिया के किसी अंक में आप इसके बारे में अपनी जानकारी और अपना परामर्श अवश्य दीजिए। प्रार्थना का वो कौन सा तरीका है और वो कैसे मनुष्य को इसमें समर्थ बनाता है कि वो अपने आप को एक नए सांचे में ढाल सकें? कृपया इसका खुलासा करके हमारी सहायता कीजिए। बापू कहते हैं कि ये प्रश्न उस शाश्वत द्वंद्व से संबंध रखता है जिसका महाभारत में इतिहास के नाम पर अत्यंत ही विशद ढंग से निरूपण किया गया है और जो नित्य ही करोड़ों व्यक्तियों के हृदयों में निरंतर चलता रहता है। मनुष्य का निर्दिष्ट लक्ष्य है पुरानी आदतों पर विजय पाना और भलाई को सर्वथा उचित स्थान पर बैठाने के लिए अंदर की बुराई पर विजय पाना। यदि धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि ये विजय कैसे प्राप्त की जाए तो वो हमें कुछ सिखाता ही नहीं। मनुष्य जीवन का यही सबसे सच्चा उद्यम है, परंतु इस उद्यम में सफलता पाने का कोई बना बनाया राजमार्ग नहीं है। हम भारतीय जिन बुराइयों से पीड़ित हैं, उनमें शायद कायरता ही सबसे बड़ी बुराई है और शायद यही सबसे बड़ी हिंसा है। आम तौर पर रक्तपात आदि को ही हिंसा समझा जाता है, पर ये उससे भी कहीं बड़ी हिंसा है, इसलिए कि ये ईश्वर पर आस्था के अभाव और उसकी विभूति के अज्ञान से ही पैदा होती है। लेकिन खेद है कि मैं कायरता और अन्य बुराइयों को दूर करने के तरीके के बारे में पत्र लेखक द्वारा अपेक्षित जानकारी और सलाह देने की योग्यता अपने में नहीं पाता, परंतु इतना मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि हृदय से निकली हुई प्रार्थना निस्संदेह मनुष्य के पास एक ऐसा अत्यधिक शक्तिशाली साधन है जिसके जरिए वो कायरता और अन्य सभी पुरानी से

रानी कुटेवों पर काबू पा सकता है, पर अपने अंतर में ईश्वर की उपस्थिति के बारे में एक जीवंत आस्था रखे बगैर ऐसी प्रार्थना असंभव है। बापू कहते हैं कि ईसाई धर्म और इस्लाम इसी द्वंद्व को ईश्वर और शैतान के बीच निरंतर चलने वाले संघर्ष की संज्ञा देते हैं, जो मनुष्य के बाहर नहीं उसके अंतर में ही चलता है। पारसी धर्म इसी को अहुर्मज़्द और अहर्मन का संघर्ष और हिंदू धर्म इसे भलाई और बुराइयों की शक्तियों के बीच के निरंतर द्वंद्व के रूप में देखता है। ये चुनाव तो हमें स्वयं ही करना पड़ता है कि हम भलाई की शक्तियों के साथ चलेंगे या बुराई की शक्तियों के साथ। ईश्वर से की जाने वाली प्रार्थना का बस एक ही लक्ष्य होता है, मनुष्य और ईश्वर के बीच पवित्र मैत्री स्थापित करके मनुष्य अपने आप को शैतान या पाप की जड़ से मुक्त कर ले। पर हार्दिक प्रार्थना मात्र जप करना ही नहीं है, वो तो अंतर की एक अकुलाहट होती है जो मनुष्य के प्रत्येक शब्द, उसके प्रत्येक कर्म, बल्कि उसके प्रत्येक विचार में भी व्यक्त होती है। जब भी कोई बुरा विचार मनुष्य को विचलित कर दे, उसे समझ लेना चाहिए कि उसकी प्रार्थना हृदय से नहीं निकली थी। मुंह से बुरा शब्द निकलने या कोई बुरा कर्म हो जाने पर भी ऐसा ही समझना चाहिए। बापू के अनुसार मन, वचन और कर्म, इन तीनों प्रकार की बुराइयों के विरुद्ध सच्ची प्रार्थना ही एक बिल्कुल अभेद्य कवच है। ऐसी सच्ची प्रार्थना के लिए किया जाने वाला पहला प्रयास ही सदा सफल नहीं होता। हमें अपने आप से निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। हमें अपनी शंकाओं के बावजूद अपनी आस्था बनाए रखनी पड़ती है। इसमें महीने भी वर्षों जितने लंबे मालूम पड़ते हैं। इसलिए प्रार्थना की प्रभावशीलता तभी देखी जा सकती है जब हमारे अंदर अपरिमित धैर्य हो। पहले तो हमें अपने चारों ओर अंधकार ही अंधकार, निराशा और इससे भी अधिक भयावह परिस्थितियां दिखाई देंगी, परंतु हमारे अंदर इतना साहस होना चाहिए कि हम इन सब के विरुद्ध संघर्ष करते रहें और कायरता को पास भी न फटकने दें। प्रार्थना पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति पीछे हटना नहीं जानता। बापू कहते हैं कि मैं आपको कोई कपोल कल्पित बात नहीं सुना रहा हूँ। मैंने आपके सामने कोई काल्पनिक चित्र भी पेश नहीं किया है। मैंने तो उन लोगों का अनुभूत सत्य ही आपको बतलाया है जिन्होंने प्रार्थना के बल पर अपनी प्रगति की हर बाधा दूर कर ली थी। साथ ही मैंने अपना अनुभूत सत्य भी आपको बतला दिया है कि मेरी अवस्था के साथ साथ मेरा यह एहसास भी दिन दिन बढ़ता जा रहा है कि मैं जो कुछ भी हूँ, मुझे वैसा बनाने का श्रेय आस्था और प्रार्थना को ही सबसे अधिक है। मेरे लिए तो ये दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और मैंने आपको अपना जो अनुभव बतलाया है वो चंद घंटों का नहीं, कुछ दिनों या हफ्तों का भी नहीं, लगभग 40 वर्षों की अविच्छिन्न अवधि का अनुभव है। मुझे निराशा, घोर अंधकार, धैर्यहीनता और अहंकार के तरह तरह के आक्रमणों का सामना करना पड़ा है, पर मैं ये कह सकता हूँ, ऐसी धृष्टता कर सकता हूँ कि मेरी आस्था इतनी समर्थ सिद्ध हुई है कि अंत में वो अब तक की सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करती ही रही है। हालांकि मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी आस्था अभी भी उतनी समर्थ नहीं बन पाई है जितनी कि मैं चाहता हूँ। बापू कहते हैं कि मेरी आस्था अभी उससे कहीं कम समर्थ है। यदि हमारे अंदर आस्था हो, यदि हमारे हृदय प्रार्थनामय हो, तो हमें ईश्वर को लुभाने की, उसके साथ किसी प्रकार के समझौते की जरूरत नहीं। हमें तो अपने आप को शून्य बना लेना चाहिए। बड़ो दादा ने अपने देहावसान के कुछ ही दिन पहले मुझे एक बड़ा ही सुंदर संस्कृत श्लोक लिख भेजा था। उसका सार यही था कि निष्ठावान मनुष्य अपने आप को शून्य बना लेता है। हम जब तक अपने आप को बिल्कुल ही नगण्य या अहंकारहीन नहीं बना लेते, तब तक अपने अंदर की बुराइयों पर विजय नहीं पा सकते। बापू कहते हैं कि ईश्वर पूर्ण आत्मसमर्पण से कम किसी भी कीमत पर हमें वो वास्तविक मुक्ति देने को तैयार नहीं होता जो सचमुच वांछनीय है। और मनुष्य जब अपने अहम को इस प्रकार बिल्कुल खत्म कर देता है तो उसी क्षण वो पाता है कि वो समस्त प्राणियों की, समस्त चेतन जगत की सेवा में रत है। इसमें उसे आनंद प्राप्त होता है और उसका मनोरंजन भी होता है। वो
एक नया

मानव बन जाता है जो ईश्वर के रचे इस जगत की सेवा करने में कभी कोई थकान अनुभव नहीं करता। ये थे शाश्वत द्वंद्व विषय पर गांधी जी के विचार। आइए अब सुनते हैं एक भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। आज का विषय था शाश्वत द्वंद। वाचक स्वर श्री चंद्रशेखर जोशी का था, प्रस्तुति श्री अशोक कुमार की, कार्यक्रम का संयोजन श्री अमित सिंह का था। मीडियम वेव 215.05 मीटर पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू।
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा।
0: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
0: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुमबाई।
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
0: जी,
2: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
0: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
2: बिल्कुल सही,
0: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
2: जी अजीत जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है।
0: जी, सुना तो है,
2: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
0: अच्छा,
2: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है।
0: क्यों?
2: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओ, वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
0: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओ, रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
2: जी।
0: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
2: जी।
0: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
2: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
0: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है। यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
2: जी
0: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
2: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें

0: पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
1: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
0: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
1: दरअसल चलते नहीं है, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है, तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
0: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
1: लेकिन भला वो कैसे?
0: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छान कर निकाल देती हैं। और हाँ जी जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
1: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
0: जी
1: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
0: जी
1: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
0: सुंदरबन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
1: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
0: जी
1: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
0: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वारभाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
1: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
0: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
1: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
0: जी
1: अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
2: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water

ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की, जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाईं।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं,

0: बिल्कुल नहीं।
1: किसी को खुशी नहीं दे सके। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
0: अरे नहीं नहीं नहीं तिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें, सब ठीक हो जाएगा तिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ, हाँ, उठो आजा, आओ। हाँ देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो क्या क्या तुम्हें नहीं लगता थी मक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
1: हाँ, क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
0: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे।
1: हाँ।
0: संतान न होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
1: शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही हैं।
0: हाँ।
1: हाँ।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
2: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदूर का राजमार्ग जाता था।
3: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
1: सुनिए देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
0: हाँ ये तो है।
1: राहगीरों को सुस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
0: सही कहा।
1: और हाँ पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
0: बिल्कुल,
1: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
0: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हाँ। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
1: ठीक है,
0: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं। हाँ। ठीक है ना।
1: बिल्कुल ठीक है।
2: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
3: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
2: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
3: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
1: अजी सुनिए।
0: हाँ।
1: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
0: ये लो थे मक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
1: हाँ।
0: मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
1: अरे अरे इसको भी डालो।
0: हाँ हाँ
1: ये देखो
0: देखो देखो कितना छोटा था, नहीं ये पौधा कितना हाँ। छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
1: प्यारा लग रहा है। हाँ। मेरा छोटा सा
2: बच्चा। लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
3: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
0: देखा तिमक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे।
1: हाँ।
0: और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
1: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया।
0: हाँ।
1: सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
0: ये सब तुम्हारे

0: हरी मेहनत का नतीजा है।
1: अरे देखो तो किसी हरियाली हो गई।
2: ऐसा नदी नहीं है जैसे हमारा शहर हो।
3: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा।

0: ती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8,000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
1: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
2: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
0: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
3: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
0: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8,000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसे सदा याद रखा जाएगा।
4: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय पटी लैंगडिंगडो, ध्वनि अंकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मर्दा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
0: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे, ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है। अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ?
1: एडमिशन कराने।
3: खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग।
1: आरबीआई कहता है
2: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किड बैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

मैं आकाशवाणी हूँ। 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक,

0: पिता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाश वाणी।

0: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।
1: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: चला है। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: भी आपने सुनी। और विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डीएन ध्रुव के साथ आकाशवाणी की ओर से कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और माननीय मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपना स्थान ग्रहण कर चुके, उनको पुष्प भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार पुष्प भेंट कर रहे हैं श्री अमित शाह जी को।
1: Well, the program has begun with the arrival of the Home Minister Shri Amit Shah. They have all taken the seats on the dais, and now we have the welcome address by the DG of BSF Shri Praveen Kumar. He walks to the podium to address the gathering.
0: आपको बताना चाहेंगे आज यहाँ सीमा सुरक्षा बल का 23वां अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान जैसे गरिमामय और प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन आज विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में किया गया। कुछ एक पलों में विधिवत स्वागत।

और फिलहाल आपको बता दें, सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम है और आज उन वीर सीमा प्रहरियों के शौर्य और बलिदान को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने पराक्रम से देश का गौरव विश्व पटल पर ऊंचा किया है। अनेक सीमा प्रहरियों ने वीरता के अमित कीर्तिमान स्थापित किए हैं और

0: The 23rd BSF Investiture Ceremony and the Rustamji Memorial Lecture is taking place today at the Vigyan Bhavan. And with the arrival of the Home Minister, Shri Amit Shah, the program has just begun and he was presented with a bouquet. And now, the DG of the BSF, Shri Praveen Kumar, is at the dais addressing the gathering with a welcome address.
1: और संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं. उनका साहस, समर्पण और बलिदान हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है. हम आज अपने बल के संस्थापक श्री के एफ रुस्तम जी की गौरवशाली विरासत को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, जिनकी दूरदृष्टि और सफल नेतृत्व ने इस महान बल की मजबूत नींव रखी. पिछले 6 दशकों में सीमा सुरक्षा बल ने विश्व के श्रेष्ठतम सीमा सुरक्षा बलों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है. सीमा प्रबंधन, आतंकवादी रोधी अभियानों तथा आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में बीएसएफ ने अद्वितीय पेशेवर दक्षता का परिचय दिया है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारे जवानों ने वीरता एवं कर्तव्य निष्ठा की सर्वोच्च परंपराओं को कायम रखते हुए 2 वीर चक्र एवं अनेक वीरता पदक अर्जित किए हैं. हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं: सुदृढ़ एवं व्यापक सीमा प्रबंधन, आधुनिक तकनीक से सुसज्जित सुरक्षा व्यवस्था, परिचालन तत्परता और जवानों का कल्याण. गत वर्ष सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाओं पर अनेक महत्वपूर्ण सफलता

0: सफलताएं प्राप्त की तथा माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बल के तकनीकी आधुनिकीकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों, ड्रोन एवं एंटी ड्रोन तकनीक, थर्मल इमेजर तथा एकीकृत कमांड सिस्टम जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं को भी प्रभावी रूप से अपनाया गया है। गत वर्ष बीएसएफ ने सीमा पार से भेजे गए 300 से अधिक ड्रोनों को निष्क्रिय कर मार गिराया है, जो उभरती सुरक्षा चुनौतियों के प्रति हमारी सतर्कता एवं सजगता का प्रमाण है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, आवास एवं कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जवानों और उनके परिवारों के जीवन स्तर एवं मनोबल को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल ने खेलों में के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले एक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 8 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक तथा राष्ट्रीय खेलों में 149 पदक अर्जित किए हैं। यह अत्यंत गर्व का विषय है कि कल ही मात्र 24 घंटा पहले बीएसएफ की प्रथम सर्व महिला पर्वतारोहण टीम ने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट फतह कर विश्व की सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा एवं बीएसएफ का ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त किया है। साथ ही बीएसएफ की पुरुष पर्वतारोहण टीम माउंट लोत्से अभियान पर अग्रसर है, जो बल की अदम्य साहस एवं उत्कृष्टता की भावना को प्रतिबिंबित करता है। यह वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा सुरक्षा बल अपनी हीरक जयंती मना रहा है। सेवा, बलिदान और शौर्य के 60 गौरवशाली वर्ष। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों, मैराथनों एवं जनसंपर्क गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बीएसएफ ने कश्मीर, जम्मू, अमृतसर एवं देहरादून में सफल मैराथनों का आयोजन किया, जो जनता के साथ बल के गहरे जुड़ाव एवं राष्ट्र सेवा की भावना को दर्शाता है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत के लिए निर्धारित लक्ष्य को साकार करने हेतु बीएसएफ पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हम माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को भी आश्वस्त करते हैं कि सीमा की समस्त सीमा प्रहरी परिवार सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बनाने के लिए कर्तव्यबद्ध एवं समर्पित है। अंत में मैं एक बार पुनः माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का सीमा सुरक्षा बल को निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद।
1: महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी ने विधिवत स्वागत किया सभी अतिथिगणों का। और अब बीएसएफ डॉक्यूमेंट्री पर एक वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा।
2: सुरक्षा बल देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। यूं तो सीमा सुरक्षा बल की गौरवशाली यात्रा उत्कृष्ट सीमा प्रबंधन और अद्वितीय आंतरिक सुरक्षा क्षमता के साथ साथ आधुनिकतम तकनीकी दक्षताओं को एक छोटे से अंतराल में बयां कर पाना बेहद कठिन है, परंतु हमने इसके सारांश को एक छोटे से वृत्तचित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसे नाम दिया है सीमा और आंतरिक सुरक्षा के सजग प्रहरी सीमा सुरक्षा बल। तो प्रस्तुत है यह वृत्तचित्र।
3: वर्ष 1965 में स्थापना के साथ ही बीएसएफ ने राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व संभाला। स्थापना के मात्र 6 वर्षों के बाद संस्थापक महानिदेशक श्री के एफ रुस्तम जी के नेतृत्व में बीएसएफ ने 1971 के युद्ध में पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर अदम्य साहस, उत्कृष्ट युद्ध कौशल एवं पराक्रम का परिचय दिया। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में बीएसएफ की अहम भूमिका रही है। बाद के वर्षों में सीमा सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ ने पंजाब और कश्मीर के आतंकवाद विरोधी अभियानों और पूर्वोत्तर भारत के प्रतिविद्रोहिता अभियानों में अप्रतिम योगदान दिया। कारगिल युद्ध के समय भी बीएसएफ के वीरों ने अग्रिम मोर्चों पर डटे रहकर अपनी बहादुरी सिद्ध की। भारत सरकार के 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करने में भी बीएसएफ की सक्रिय भागीदारी रही है। इन सभी अभियानों में अद्वितीय योगदान के लिए बीएसएफ ने अनेक वीरता पदक अर्जित किए। आज पश्चिमी सीमा पर हिमालय की बर्फीले व दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों

0: बढ़ते रेगिस्तान तथा गुजरात के विशाल रण जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों से जूझते हुए सीमा प्रहरियों के समक्ष सीमा पार आतंकवाद, हथियारों एवं गोला बारूद की तस्करी, हीरोइन व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। पूर्वी सीमा पर सीमांत क्षेत्रों में घनी आबादी, नदी नालों की बहुतायत, मानसूनी वन और उत्तर पूर्व की जटिल पहाड़ी श्रृंखलाएं भौगोलिक जटिलता प्रस्तुत करती हैं। पूर्व में सुंदरबन डेल्टा तथा पश्चिम में गुजरात के क्रीक जैसे दुर्गम जलीय सीमांत इलाकों में बीएसएफ की वाटर विंग के फ्लोटिंग बीओपी एवं अत्याधुनिक क्राफ्ट इन क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी जैसे चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में भी पूरी जिम्मेदारी से योगदान देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के प्रहरियों ने अदम्य साहस, पराक्रम और सर्वोच्च समर्पण का परिचय दिया।
1: ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है।
0: अभियान में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर प्रहरियों की गाथाएं राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में सदैव अमर रहेंगी। गृह मंत्रालय सदैव बीएसएफ के लिए मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत रहा है तथा बल के आधुनिकीकरण, परिचालन क्षमता और कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।
2: और मैं सभी बल के जवानों को कहना चाहता हूँ, न केवल देश के प्रधानमंत्री, न केवल गृह मंत्री, समग्र देश की जनता आपकी वीरता को सैल्यूट करती है, आपकी दक्षता पर भरोसा करती है और आपकी प्राण के अंत तक देश की सुरक्षा करने की धगस से निश्चिंत होकर 12 महीना चैन की नींद सोती।
0: आधुनिकीकरण की दिशा में बीएसएफ अग्रसर है, जिसे स्मार्ट फेंस की व्यवस्था बखूबी रेखांकित करती है। यह फ्लडलाइट्स, ड्रोन आधारित निगरानी, रडार, फिडार, सीसीटीवी कैमरों और अन्य उपकरणों के समेकित उपयोग की व्यवस्था है। स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ ड्रोन फॉरेंसिक्स के उपयोग में भी बीएसएफ ने नए प्रतिमान रचे हैं। सीमा प्रबंधन में तकनीकी नवाचारों का समावेश करने के लिए विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से करार किए गए और किए जा रहे हैं। बीएसएफ की अश्रु गैस इकाई ने इस वर्ष अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस संस्था के उत्पाद आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में अहम भूमिका निभाते हैं। खेलों के क्षेत्र में भी बीएसएफ ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। बीएसएफ में खेलों के प्रति नीतियों में आमूल परिवर्तन किए गए हैं। खिलाड़ियों के चयन, उनके प्रशिक्षण, खानपान, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा उन्नत प्रशिक्षण उपकरणों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बीएसएफ के खिलाड़ी वर्ल्ड पुलिस गेम्स, पुलिस ड्यूटी मीट तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और वुशु जैसे खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश एवं बल का नाम विश्व स्तर पर गौरवान्वित कर रहे हैं। बीएसएफ के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित स्वदेशी नस्ल के श्वानों ने अनेक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। प्रहरियों का कल्याण गृह मंत्रालय एवं बल प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। नए आवासीय परिसरों का निर्माण किया गया है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पारिवारिक कल्याण से संबंधित अनेक योजनाओं का सतत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की पेंशन एवं अन्य देयकों के त्वरित निस्तारण को भी बीएसएफ प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। बल की हीरक जयंती के अवसर पर वर्ष पर्यंत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 60 वर्षों की सेवा, बलिदान एवं सशक्तिकरण की गाथाओं को पिरोए हुए अनेक कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पूरे

0: प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण में बीएसएफ के योगदानों को जन जन तक पहुंचाना है। हीरक जयंती समारोह के उपलक्ष्य में बीएसएफ के महिला पर्वतारोही दल ने वंदे मातरम अभियान को सफल काम करते हुए 21 मई 2026 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय पाई है।
1: कौशल, शेरिंग, रेबेका और मुनमुन, सबसे पहले तो समस्त बीएसएफ परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई।
0: विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर राष्ट्रगीत गाकर बीएसएफ टीम ने देश और बल के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। आज इस अवसर पर प्रत्येक सीमा प्रहरी माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने और माननीय गृह मंत्री जी के सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वोत्तम सुरक्षा बल बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए पुनः संकल्प लेता है। जय हिंद।
2: रक्षा बल ने अपने 6 दशकों में गौरवपूर्ण सफर में न केवल सीमाओं की रक्षा की है बल्कि देश की विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों में भी अद्वितीय योगदान दिया है। सीमा सुरक्षा बल ने स्वयं को विशिष्ट संगठन के रूप में स्थापित करते हुए देश की प्रथम रक्षा पंक्ति में होने का सम्मान भी अर्जित किया है। और अब सीमा प्रहरियों का अलंकरण समारोह, मुख्य अतिथि श्री अमित शाह के करकमलों से।
3: And now the awards are going to be given to all the people for the gallantry and for the wonderful work they have done for the country and what they have achieved. And they'll be receiving the awards from the Home Minister, Shri Amit Shah. And Shri Amit Shah has come to the front of the dais to give away the awards to everyone.
4: BSF ki 35 battalion ki ek tukdi area domination ke liye aage badh rahi thi. तभी नक्सलियों द्वारा बिछाई गई आईडी की चपेट में आकर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए। परंतु अब इस बहादुर प्रहरी ने ना सिर्फ आखिरी सांस तक नक्सलियों से लोहा लिया बल्कि अपने साथियों को सुरक्षित बचाने में भी कामयाब रहे। अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद उप निरीक्षक महेंद्र सिंह की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती राजवती।

आरक्षक रंजीत यादव 163 बटालियन मरणोपरांत। 6 जून 2023 मणिपुर के मैतेई एवं कुकी समुदाय के बीच खूनी संघर्ष के दौरान शांति बहाली के लिए तैनात 163 बटालियन की टुकड़ी पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया, जिससे टुकड़ी में शामिल आरक्षक रंजीत यादव बुरी तरह जख्मी हो गए। परंतु अपने बहते खून की परवाह किए बगैर बहादुर प्रहरी रंजीत यादव आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उपद्रवियों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बहुत अधिक खून बह जाने के कारण अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। असीम शौर्य, पराक्रम, मारक क्षमता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर प्रहरी रंजीत यादव को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक रंजीत यादव की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या यादव।

आरक्षक नरेंद्र कुमार मरणोपरांत एवं श्री अशोक कुमार उप कमांडेंट 122 बटालियन 28 मई सन 2023 मणिपुर का मौर्य इलाका राज्य में कानून

व्यवस्था कायम करने के मकसद से तैनात बीएसएफ की 122 बटालियन की एक टुकड़ी का नेतृत्व बहादुर अधिकारी श्री अशोक कुमार कर रहे थे। अचानक उग्र भीड़ ने आम नागरिकों पर हमला कर दिया। अमूल्य मानव जीवन की हिफाजत के लिए सीमा प्रहरियों ने फौरन जवाबी कार्रवाई की और आगे बढ़ते हुए उपद्रवियों का डटकर मुकाबला किया। परंतु इस दौरान सीमा प्रहरियों की टीम में शामिल बहादुर आरक्षक नरेंद्र कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन आखिरी दम तक डटे रहे और कर्तव्य की बलिदिवेरी पर अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अद्भुत नेतृत्व क्षमता और पराक्रम के लिए बहादुर अधिकारी अशोक कुमार तथा शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार को वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पहले पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार की बहादुर जीवन संगिनी श्रीमती सुनीता देवी।

देवियों तथा सज्जनों, सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास असंख्य वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। उसी गौरवशाली इतिहास में गत वर्ष एक और नया अध्याय लिखा गया, जिसे हम सभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट 7वीं बटालियन, 9 और 10 मई 2025 की रात जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी सीमा चौकी खरकोला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी के बीच बहादुर अधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव ने नेतृत्व संभाले रखा और अपनी जान पर खेलकर अपने घायल साथियों को भी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। शौर्य, पराक्रम, नेतृत्व एवं बहादुरी की अद्भुत मिसाल कायम करने वाली इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट।

श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर से लगी पाकिस्तानी सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाक रेंजर को अपनी जान पर खेलकर गिरफ्त में लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्पन्न हुए सामरिक व पेचीदा कूटनीतिक परिदृश्य को बदल देने वाले बहादुर अधिकारी श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट को उनके अदम्य साहस, शौर्य तथा सूझबूझ के लिए वीरता पदक से अलंकृत किया गया। श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट।

श्री आलोक नेगी सहायक कमांडेंट 53वीं बटालियन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा पर दुश्मन द्वारा की गई तीव्र एवं लगातार गोलाबारी के बीच 53वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री आलोक नेगी ने अत्यंत विषम परिस्थितियों में अग्रिम चौकियों पर तैनात रहते हुए अपने जवानों का मनोबल बनाए रखा और अपनी प्रभावी कार्रवाई से शत्रु की गतिविधियों को निष्फल किया। साहसिक नेतृत्व, वीरता, पराक्रम और असीम शौर्य के लिए इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री आलोक नेगी, सहायक कमांडेंट।

मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा 175 बटालियन 20 अप्रैल सन 2023 भारत बांग्लादेश सीमा पर रात के लगभग 9:30 बजे पेट्रोलिंग के दौरान मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा ने टेंगोन नदी के पुल के समीप कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देख जैसे ही ललकारा कि भारी संख्या में बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद बहादुर सीमा प्रहरी नरबू शेरपा ने वीरता के साथ मुकाबला करते हुए

एक तस्कर को धर दबोचा। शौर्य, पराक्रम एवं वीरता की पराकाष्ठा रचते हुए मातृभूमि की रक्षा सुनिश्चित करने वाले हेड कांस्टेबल नरबू शेरपा को राष्ट्र द्वारा वीरता पदक से अलंकृत किया गया। मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा।

और अब सराहनीय सेवा पदक उन कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों व सीमा प्रहरियों के लिए जिनकी लंबी बेदाग और सराहनीय सेवाओं के फलस्वरूप राष्ट्र द्वारा सराहनीय सेवा पदक से अलंकृत किया गया है। इस क्रम में सर्वप्रथम अलंकरण हेतु गर्व से आगे आ रहे हैं श्री मनिंदर प्रताप सिंह पवार महानिरीक्षक।

और अब विशेष संक्रिया यानी स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक श्री अंकित गोयल आईपीएस उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय गुरदासपुर 12 नवंबर 2021 महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में एसपी के रूप में तैनाती के दौरान श्री अंकित गोयल ने विश्वस्त सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें नक्सलियों और कमांडोज के बीच 13 से 16 नवंबर 2021 तक चले मुठभेड़ में 27 खूंखार नक्सली मारे गए तथा भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। वीरता शौर्य एवं रण कौशल में माहिर इस बहादुर अधिकारी को स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अंकित गोयल उप महानिरीक्षक।

0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि वह हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह
1: एंड नाउ श्री अमित शाह द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ द ईयर। ही वॉक्स टू द पोडियम।
2: आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित महानिर्देशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी, श्री तपन डेका जी निर्देशक आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार जी सचिव सीमा प्रबंधन गृह मंत्रालय, श्री महेश कुमार अग्रवाल विशेष महानिर्देशक सीमा सुरक्षा बल, और आज इस सभागार में उपस्थित 43 वो बहादुर सीमा सुरक्षा बल के जवान जिनको अलग अलग प्रकार के पदक आज प्राप्त हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल के सभी पूर्व डीजी जिन्होंने अपने अपने समय में सीमा सुरक्षा बल को और मजबूत करने में सराहनीय योगदान दिया है, और भारत सरकार के सभी उपस्थित अधिकारीगण, अलग अलग सीएपीएफ के डीजी और प्यारे जवानों, सबसे पहले मैं आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह अलंकरण समारोह एक प्रकार से अधिक निष्ठा

कर्तव्य परायणता और राष्ट्र के प्रति पूर्ण आपका जो समर्पण है इसका प्रतीक है। सबसे पहले मैं स्थापना से अब तक 65 से 2026 तक सीमा सुरक्षा बल के जिन जवानों ने अपनी अप्रतिम देशभक्ति और कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो सभी 2000 से ज्यादा जवानों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि और आदर पूर्वक नमन करना चाहता हूं। मित्रों, आज मेरे लिए भी एक प्रकार से गौरव का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के अलंकरण समारोह और उसके स्थापक श्री रुस्तम जी की स्मृति में स्मृति व्याख्यान में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला है। मैं एक प्रकार से तीसरी बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा हूं। आज हम सब जानते हैं कि 65 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा व्यवस्था में जो गैप्स थे, जो कमियां थी, उसका एक गहन अभ्यास करने के बाद एक ऐसे बल की उपस्थिति महसूस की गई जो शांति काल में भी 24 घंटा हमारी सीमाओं की सुरक्षा करे। और उस वक्त पद्म विभूषण KF रुस्तम जी के नेतृत्व में BSF की स्थापना हुई और जब से BSF की स्थापना हुई है सैन्य BSF ने न केवल गृह मंत्रालय पूरे देश को सीमाओं की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित सुरक्षा कर निश्चिंत करने का काम सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया है। इसको पूरा देश इसकी भूरी प्रशंसा करता है। 65 से 74 तक श्री रुस्तम जी ने सीमा सुरक्षा बल का एक प्रकार से नेतृत्व भी किया, नींव डालने का काम भी किया और सीमा सुरक्षा बल का कल्चर को बनाने का भी काम किया। कोई भी संस्था में संस्थापक शुरुआत किस रास्ते पर करता है इसका बड़ा महत्व होता है और मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्रीमान रुस्तम जी ने जो नींव डालने का काम किया है वो नींव पर आज सुरक्षा के क्षेत्र में एक भव्य इमारत बनाने का काम BSF ने किया है जो देश के लिए अति गौरव की बात है। आज यहां पर वीरता पदक, सराहनीय सेवा पदक और अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गृह मंत्री पदक भी हमारे जवानों ने जवानों को दिया गया है। ये कोई सीमा सुरक्षा बल के लिए नई बात नहीं है। मैं आगे बताऊंगा, ढेर सारे पदक आपने आपके शौर्य और पराक्रम से अर्जित किए हैं और बल की शान हमेशा बढ़ाई है। मगर सबसे पहले मैं अभी BSF की महिला टीम द्वारा माउंट एवरेस्ट पर फतह करने की एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है, इसलिए उस टीम के सभी सदस्यों को और सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी हमने दृश्य देखा, एवरेस्ट की चोटी पर जब वंदे मातरम गाया जाता है तो यहां दिल्ली के हॉल में बैठकर भी हमारे मन के अंदर बहुत आनंद और संतोष की अनुभूति होती है। मैं उन महिला जवानों को उनके अनुभव को

बैठकर महसूस करता था कि कितना रोमांच हुआ होगा जब आसमान को छूने वाली चोटी पर वंदे मातरम का वो गान करते होंगे, और वो भी वंदे मातरम के 150वीं जयंती के वर्ष में एक गान गाने का सौभाग्य इनको मिला है। मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्र अटल जी के समय पर एक बॉर्डर एक बल ये सिद्धांत तय किया गया, और उसके बाद बीएसएफ को देश की सबसे दो कठिन सीमाओं का काम दिया गया। पाकिस्तान से सटी हुई 1289 किलोमीटर की सीमा और बांग्लादेश से सटी हुई 4100 किलोमीटर की सीमा। हम सब जानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से दोनों सीमाएं वल्नरेबल भी है और हमारे लिए चिंता का कारण भी है, परंतु उस वक्त भी सोच समझकर ही देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी ने निर्णय किया होगा कि जो सबसे कठिन काम है वो बीएसएफ को दे दीजिए, बीएसएफ कभी दो कदम पीछे नहीं हटेगी। और मुझे कहते हुए आनंद है कि अब तक ये बॉर्डर दो बॉर्डर को आपके संभालने के बाद जितनी भी चुनौतियां आई इसमें पराजय का मुंह दुश्मन को ही देखना पड़ा है, कभी आपने भारत का सर नीचे नहीं होने दिया है। और आज हम देखते हैं कि कई प्रकार की नई चुनौतियां सीमा सुरक्षा में हमारे सामने खड़ी हुई हैं। अवैध घुसपैठ, नारकोटिक्स की तस्करी, गौ तस्करी, फेक करेंसी का चलन, संगठित अपराध, ड्रोन से हथियारों की और नशे की तस्करी, कई प्रकार की चुनौतियां बीएसएफ के सामने हैं, मगर बीएसएफ ने लगातार इसके लिए किसी न किसी प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करने का सुनियोजित प्रयास किया है। और मैं आगे पर 60वें साल में भारत सरकार क्या करने वाली है वो भी बताऊंगा, मगर आपने आपके पास जो सीमित संसाधन थे वो सीमित संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए इस सभी चुनौतियों के साथ दो दो हाथ कर देश की सुरक्षा करने का काम किया है, जिससे हमें सुनिश्चितता है। आपकी भूमिका अब आने वाले दिनों में और ज्यादा अधिक इंटीग्रेटेड भी करनी पड़ेगी और व्यापक भी करनी पड़ेगी। अब हम केवल पारंपरिक तरीके से सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने राज्य पुलिस, सशस्त्र बल, अन्य सशस्त्र बल, एनसीबी, इंटेलिजेंस एजेंसियां और राज्य के प्रशासन इस सब के साथ मिलकर सुरक्षा की ग्रिड को मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर हम ये नई चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। और एक हमने सीमा सुरक्षा को एक आइसोलेटेड काम के रूप में देखने की जगह एक टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखना पड़ेगा, तभी जाकर हमें सारी चुनौतियों को पार करने में सफल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने आगे के खतरों को भी देखना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि देश के उस पार से कृत्रिम तरीके से जनसांख्यिकी में जो बदलाव किया जा रहा है घुसपैठ के द्वारा, उसको रोकने के लिए सतर्क और सजग रहना पड़ेगा। अर्थतंत्र पर नारकोटिक्स और फेक करेंसी के हमले से जिस प्रकार से हमारे अर्थतंत्र को खोखला करने का प्रयास हो रहा है, इसके लिए भी हमने सतर्क रहना पड़ेगा। साइबर चुनौतियां, हाइब्रिड वॉरफेयर और ड्रोन के खतरे, ये सभी के लिए एक नई रणनीति लेकर आना पड़ेगा। और मैं मानता हूं

सबकी जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। मगर मेरा सीमा सुरक्षा बल से भी आग्रह है कि आप भी केवल सीमा की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पटवारी तक, एसपी से लेकर पुलिस के थाने के इंचार्ज तक हमारा संवाद होना चाहिए और इनसे मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन का उपयोग कर घुसपैठियों को निकालने की एक सुचारू व्यवस्था भी बनानी चाहिए, घुसपैठ को रोकने की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। और मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है उसको हमें रोक देना पड़ेगा और ये आप सबने कर दिखाया है। मैं कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिस से सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते देखते देखते समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और ये हमारे जवानों ने कर दिखाया है कि समस्या को संभाल कर रखना, कंट्रोल में रखना, ये सुरक्षा का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। समस्या को मूल समेत समाप्त करना ही सुरक्षा का दृष्टिकोण हो सकता है और वो आज सिद्ध हो चुका है। और अब घुसपैठ के लिए भी बीएसएफ ने इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज 1, वाइब्रेंट विलेज 2 आपके समर्थन में एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया विकास का कार्यक्रम है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर किया है और अब बंगाल सरकार ने भी जितनी भी भूमि देनी थी वो सारा देने का निर्णय कर चुके हैं, कुछ तो हैंडओवर भी कर दिए हैं। अब हमारे पास काम है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की है, कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी, इसका चार्टर भी बन जाएगा। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन भी चिन्हित करे हुए पॉइंट्स को बीएसएफ के और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए उपलब्ध कराएगा। इस सब चीजों का उपयोग करते हुए हमें आने वाले दिनों में एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड दोनों देशों की सीमाओं के सीमा पर बनानी पड़ेगी और इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाना पड़ेगा। मित्रों, जिस तरह से मैंने किया कहा कि 60वां वर्ष एक स्मार्ट बॉर्डर बनाने का वर्ष है, उसी तरह से 60वां वर्ष बीएसएफ के जवानों के कल्याण का भी वर्ष है। 2 महीने के अंदर ही नरेंद्र मोदी सरकार बीएसएफ और सभी सीएपीएफ के जवानों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर आएगी जिससे हमारे जवान सुनिश्चित होकर सीमाओं की सुरक्षा करें, उनके परिवारजनों की चिंता भारत सरकार का गृह मंत्रालय करे। इस प्रकार का एक कार्यक्रम भी हम आने वाले 1 साल के अंदर लेकर आएंगे। हमने एक बहुत बड़ा अभियान कुछ समय के बाद नार्कोटिक्स के खिलाफ भी देश में चलाने जा रहे हैं, इसमें भी सीमा सुरक्षा बल की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है और सीमा सुरक्षा बल की सतर्कता से दोनों ओर की सूचना एकत्रित कर नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, आने वाले 3-4 साल एक प्रकार से सीमा की सुरक्षा में संपूर्ण बदलाव के 4 साल रहने वाले हैं और हमने इसके लिए अभी से कमर कसनी है, मन से तैयारी करनी है। तकनीक की सुरक्षा आने से जवानों की

0: हिस्सेदारी कम नहीं होती। तकनीकी सुरक्षा का सपोर्ट आने से जवानों की जिम्मेदारी बढ़ती है। ये भाव के साथ तकनीक को आत्मसात करते हुए, स्थानीय लोगों से संवाद प्रस्थापित करते हुए, स्थानीय प्रशासन से तालमेल बढ़ाते हुए हम सब एक बार लक्ष्य तय कर ले कि इस देश को घुसपैठ से मुक्त करना है और हमारी जनसांख्यिकी के में कृत्रिम परिवर्तन को हम रोकने में सफल हो, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कठिन काम है। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में जो अभियान चलने वाला है उसमें आपका पूर्ण मनोयोग के साथ सहयोग मिलेगा और हम एक नई सुरक्षा ग्रिड का निर्माण पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर बनाने में सफल होंगे। फिर से एक बार श्रीमान रुस्तम जी को मन पूर्वक नमन भी करना चाहता हूं और उनके काम की सराहना भी करना चाहता हूं, और जिन जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो सबको श्रद्धांजलि देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।
1: भविष्य में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और मजबूत सुरक्षा ग्रिड के लिए अभियान चलेगा और अभियान में सहयोग की भी आवश्यकता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपने विचारों के साथ।
2: जो महोदय के हृदय में
3: इस दिवस की याद को हमेशा संजोए रखेगा।
1: और अब सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री प्रवीण कुमार द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह।
3: धन्यवाद श्रीमान। और
4: श्री महेश अग्रवाल विशेष महानिदेशक बाय द डीजी ऑफ द Border Security Force, Shri Praveen Kumar.
1: विशेष महानिदेशक द्वारा धन्यवाद।
5: माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्री तपन डेका डायरेक्टर आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार सचिव सीमा प्रबंधन, श्री प्रवीण कुमार महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, हमारे मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2026 के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी की उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यंत सार्थक और गरिमामयी बना दिया है। आपके सानिध्य और समय के लिए मैं सीमा सुरक्षा बल परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, आपने अत्यंत व्यस्तता के बीच इस कार्यक्रम के लिए समय निकालकर न केवल हमारा मान बढ़ाया है बल्कि यह दर्शाया है कि सीमा प्रहरियों के प्रति आपका स्नेह, सम्मान और विश्वास अटूट है, जो कि हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति और प्रेरणादायी शब्दों ने हम सभी का उत्साह बढ़ाया है तथा हमें नई ऊर्जा प्रदान की है। हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उन्हें अपने जीवन में अपनाते हुए अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करने का संकल्प करते हैं। सीमा सुरक्षा बल परिवार अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का भी हार्दिक आभार प्रकट करता है। आपके निरंतर सहयोग और विश्वास ने हमें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हमें आशा है कि भविष्य में भी आपका स्नेह और मार्गदर्शन यूं ही बना रहेगा। मैं मीडिया के यहां उपस्थित प्रतिनिधियों का भी विशेष धन्यवाद करता हूं। मैं आयोजन समिति के समस्त अधिकारियों एवं कर्मियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस व्याख्यान के सफल आयोजन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। धन्यवाद। जय हिंद।
4: श्री महेश अग्रवाल, स्पेशल डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एंड नाउ दिस विल बी फॉलोड बाय द राष्ट्रीय गीत विच विल बी परफॉर्मड बाय
6: सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान। सिर्फ सीमा सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि

की संपूर्ण राष्ट्र का समारोह है। राष्ट्रीय महत्व के इस विशेष अवसर पर अब समय है एक ही क्रम में पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एवं तत्पश्चात राष्ट्रगान जन गण मन में शामिल होने का, जिसे प्रस्तुत करेंगे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से आए युवा कलाकार।

0: मेमोरियल स्पीच लेक्चर बाय द होम मिनिस्टर श्री अमित शाह।
1: आज का ये अलंकरण समारोह साहस, समर्पण और राष्ट्र सेवा की गौरवपूर्ण परंपरा का प्रतीक है। हम उन वीर जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य को हमेशा सर्वोपरि रखा। सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में न केवल हमारे वीर जवानों के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया, बल्कि हमें राष्ट्र सेवा के मूल्यों और अधिक गहराई से समझने की प्रेरणा भी प्रदान की। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी इंचार्ज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वी के तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्रा, कमल सिंह, हेमराज मीणा और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की गरिमामय उपस्थिति में सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा 23वां अलंकरण समारोह और रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2026 का विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजन का सीधा प्रसारण आप सुन रहे थे।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 12:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

हमारे इस सभा में दिन में 12:10 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। सुगम संगीत के हमारे आज के कलाकार होंगे नजर मोहम्मद। फिल्म संगीत सुनिएगा दिन में 12:40 पर और दिन में 2:30 पर। बहने सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत। समय रहेगा दिन में 1:05। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे जैव विविधता दिवस, बीज संरक्षण, सांस्कृतिक उत्सव और परंपराएं, बच्चों के साथ खेलें और समय बिताएं, साथ ही घरेलू कचरे से खाद बनाना। और आप सुनेंगे श्रीमती साक्षी व्यास की वार्ता, मोटा अनाज स्वास्थ्य का आधार।

हमारे दूसरे सभा में संध्या 5:05 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज की बात का विषय रहेगा एआई और रोजगार का भविष्य। लघु जानकारी के विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, फंगस, पीएम सेतु योजना और अनुच्छेद 21। साथ ही कार्यक्रम के आखिर में आप सुनेंगे रोजगार समाचार और क्विज टाइम। संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और जिले की चिट्ठी का समय रहेगा संध्या 6:40। जिले की चिट्ठी आप हमारे आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से सुनेंगे। संध्या 7:00 ग्रामीण श्रोताओं के लिए होगा कार्यक्रम ग्रामीण जगत। चर्चा के विषय रहेंगे फसल चक्र का महत्व और सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्परिणाम। साथ ही आप सुनेंगे ऊर्जा संरक्षण योजना राजस्थान और हमारी जनगणना हमारा विकास। आखिर में मौसम की जानकारी और न्यूनतम समर्थन मूल्य।

8:30 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 9:30 पर। आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तां। आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। कलाकार होंगे उस्ताद रईस खां।

ये आकाशवाणी बीकानेर के का ढोला मारो चैनल है। अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम सुगम संगीत का, तो लीजिए अब आपको सुनवा रही हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के हमारे आज के कलाकार हैं नजर मोहम्मद। तो आइए सुनते हैं नजर मोहम्मद की गाई कुछ गजलें।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं नजर मोहम्मद की गाई कुछ गजलें। आइए सुनते हैं इनकी गाई अगली गजल।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नजर मोहम्मद की गाई कुछ गजलें। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 12:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। प्रोग्राम में पहले सुनिए रवि के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है शाहिर लुधियानवी ने, गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और फिल्म है आंखें।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा था शैलेंद्र ने, गीत को गाया था लता मंगेशकर ने और फिल्म थी पतिता।

उषा खन्ना के लिखे गीत को, माफ कीजिएगा, उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है निदा फाजली ने, गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने, फिल्म है आप तो ऐसे न थे।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म अनुपमा के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारो चैनल है। दिन के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में, माफ कीजिएगा, आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: कुछ दिल ने कहा।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जोधपुर स्टेशन से 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिल्ली कैंट के लिए रवाना किया। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन पहले 8 डिब्बों के साथ चलाई जा रही थी। इसके अपग्रेड होने से अब यात्रियों को आसानी होगी। इस मौके पर श्री वैष्णव ने भगत की कोठे स्थित वंदे भारत स्लीपर कोच वर्कशॉप के दूसरे चरण की भी घोषणा की। रेल मंत्री ने जैसलमेर स्टेशन पर नए बने कोच केयर कॉम्प्लेक्स का भी वीसी के माध्यम से शुभारंभ किया। जोधपुर स्टेशन पर आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुए। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि देश भर में रेल संपर्क सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। राजस्थान को 10,000 करोड़ से अधिक के बजट आवंटन से आने वाले समय में रेलवे में और भी बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा।
3: ओवरऑल पूरे देश भर में कनेक्टिविटी जम के बढ़ रही है। अपने राजस्थान के लिए 10,000 करोड़ से अधिक का बजट मोदी जी ने दिया है, तो उसके कारण बहुत सारा काम हो रहा है। जोधपुर स्टेशन भी आप देख ही रहे हो, कई नई नई रेलवे लाइनें बन रही हैं। अपना जैसे मारवाड़ जंक्शन से मावली 30-40 साल पुरानी डिमांड थी, आज उसका गेज कन्वर्जन चल रहा है। मेड़ता से पुष्कर का काम चालू हुआ, बहुत सारे काम चल रहे हैं। हरिद्वार की जो डिमांड है वो भी मेरे ध्यान में है, और उसके लिए भी मैं कोई ना कोई अलग व्यवस्था करूँगा और बहुत जल्दी वो व्यवस्था भी।
2: श्री वैष्णव शाम को जालौर जाएंगे, जहां से वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन भीलड़ी, जालौर, लूनी और जयपुर होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। इससे जालौर वासियों को पहली बार दिल्ली तक के लिए सीधे कनेक्टिविटी मिल सकेगी। उनका पाली जाने का भी कार्यक्रम है। श्री वैष्णव का ये दौरा राज्य में रेल सुविधाओं के विस्तार और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की दिशा में अहम है। उनका कल जयपुर में रोजगार मेले में शिरकत करने का कार्यक्रम है, जहां वे युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रेल मंत्री जयपुर जंक्शन में किए जा रहे पुनर्विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों में राज्यसभा की 24 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4-4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3-3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। राजस्थान में रवनीत सिंह बिट्टू, भाजपा सांसद राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस सांसद नीरज डांगी का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो जाएगा। चुनाव की अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। वहीं 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 11 जून तक नाम वापस ले सकेंगे। 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन वोटों की गिनती कर नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कराने से जुड़े मामले में राज्य सरकार को राहत देते हुए 31 जुलाई तक का समय दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने इस प्रकरण में सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद 11 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत के आदेश पर पहले राज्य सरकार को चुनाव करवाने के लिए 15 अप्रैल तक का समय दिया गया था। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इस मामले में समय सीमा बढ़ाने को लेकर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा चुनौतियों को व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि कई तरह की चुनौतियों के बावजूद बीएसएफ ने देश का गौरव लगातार बनाए रखा है। उन्होंने अवैध घुसपैठ, नशीले पदार्थों की तस्करी, जाली नोटों का चलन

0: और हथियारों तथा ड्रग्स की तस्करी की रोकथाम के लिए एकीकृत और व्यापक सुरक्षा ढांचे की जरूरत पर जोर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा के रामगंज मंडी में जिला अस्पताल के नए भवन की आधारशिला रखी। यह अस्पताल 63 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि इससे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 1:05 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आई हैं किरण शर्मा और डॉक्टर शर्मिला।

0: महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम महिला जगत में। आज आपका स्वागत कर रही है आपकी अपनी दो सखियां किरण शर्मा और
1: मैं डॉक्टर शर्मिला। स्वीकार कीजिएगा हमारा स्नेह भरा नमस्कार।
0: और हाँ सखियों, इसी के साथ ये भी बताइएगा कि कैसी है आप। भई आप बिल्कुल अच्छी होंगी क्योंकि समय चल रहा है बच्चों की छुट्टियों का, है ना।
1: किरण तुमने तो मतलब बहुत ही आनंद वाली बात सखियों को बता दी है ना, क्योंकि हमारी सखियां प्लान कर रही होंगी ठंडी जगहों पे जाने का या फिर आनंद ले रही होंगी ऐसी जगह का जिसका नाम सुनते ही सभी सखियों के कलेजे में एक सुकून भरी ठंडक महसूस हो जाती है ना।
0: बिल्कुल शर्मिला, सही समझा। हम उसी आंगन की बात कर रहे हैं शर्मिला, जो याद दिलाता है बचपन की मीठी यादों की, जिसको देखने का मौका हमें शायद इन छुट्टियों में ही नसीब होता है। वरना इस व्यस्त दिनचर्या में हम कहाँ जा पाते हैं पीहर के उस प्यारे से आंगन में, है ना।
1: और तुमने कितनी अच्छी बात, पीहर का नाम आते ही ऐसे कहते हैं ना माँ से मुंह भर जाता है, वो वाली बात तुमने बता दी कि हम भागकर जाती हैं और वहाँ मिलती हैं अपनी उन पुरानी सहेलियों से, अपनी सभी बहनों से, और उन सबसे मिलकर के शुरू हो जाती है हमारी कभी न खत्म होने वाली बातें, हंसी, ठहाकों की फुहारें, है ना।
0: बिल्कुल शर्मिला, और जब कभी हम बाजार जाते हैं ना तो मानो की टकरा जाए अपनी वो सखी जो बिछड़ गई थी स्कूल के दिनों में। फिर क्या कहने, हम आतुर हो उठती हैं उसे बाहों में भरने कि हम कहाँ खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, ये सब भी हम भूल जाती हैं।
1: मतलब गप्पे लड़ाने में इतनी बिजी हो जाती हैं कि हमें होश ही नहीं रहता कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें कौन देख रहा है या किस तरह की बातें हम कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। छुट्टियों के दिन सखियों होते ही इतने प्यारे हैं जो हमारे लिए हमें ना पूरे वर्ष की एनर्जी से भर देते हैं। हम एकदम ऐसे एनर्जेटिक होकर के वापस लौट जाते हैं अपनी उन दिनचर्या में, और मुझे लगता है अगर छुट्टियां किरण नहीं आए ना तो ये एनर्जी कहीं खत्म होती सी लगती है ना,
0: हमारा जीवन निरसी हो जाएगा।
1: हाँ।
0: और शर्मिला, इन दिनों में हम पूरा आनंद भी उठाते हैं माँ और भाभी के हाथ के खाने का, है ना, और घूमने का, सखी सहेलियों से बातें करने का, और अपनी बहनों और बहन के बच्चों के साथ हंसी ठिठोली करने का, है ना।
1: और खाने की बात से तो किरण तुमने मुझे एक बात याद दिला दी कि हम तो ना पूरा साल ऐसे बना बना के खिलाते ही रहते हैं, है ना। ऐसा मौका कभी नहीं मिलता कि हमें कोई बना के खिलाए, है ना।
0: तो ये दिन है ना छुट्टियों के, ये इतने सुहाने होते हैं शर्मिला कि जो माँ के हाथ का खाना है ना उसके स्वाद की खुशबू हमें काफी दिन पहले ही आने लगती है। नहीं
1: बिल्कुल।

0: और अपनी पसंद माँ भी उस दिन वही बनाती है जो हम लोगों को बहुत पसंद होता है कि हाँ बेटी आ रही है चलो ये चीज बना लूँ, ये बना के रख लेती है वो, इस तरह की चीजें भी है ना।
1: तो बिल्कुल सखियों, आप भी इन जो छुट्टी के दिनों का आनंद भरपूर लीजिए और साथ ही इस गीत का भी आनंद लीजिए हमारे साथ।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
1: चलो
0: कहाँ
1: एडमिशन कराने?
3: खाता हुआ एक्टिव,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: किरण पता है कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि अगर इस दुनिया में हर चीज बिल्कुल एक जैसी होती तो कैसा होता।
7: अच्छा तो शर्मिला अपने मन की बात कुछ अच्छे से हमारी सखियों को समझाओ ना।
6: मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ किरण कि हर इंसान का चेहरा एक जैसा होता, सब एक ही रंग के कपड़े पहनते, सब एक ही भाषा बोलते, रोज खाने में सिर्फ जैसे आलू कहूँ मैं कि आलू की सब्जी खाते, कितना सिंपल होता ना सब।
7: बिल्कुल शर्मिला तुम्हारी जो बातें हैं ना कहने की, तो मुझे लगता कि हमारा जीवन बिल्कुल निरस हो जाता। नहीं और ना और ये भी है कि जो तुम कह रही हो ना, मेरे हिसाब से ईश्वर ने सबको अलग अलग, मतलब करोड़ों अरबों लोग हैं लेकिन उनकी शक्ल बिल्कुल अलग है, उनकी आंखें, उनका जो भी है शारीरिक संरचना बिल्कुल अलग दी है।
6: मतलब तुम ये कहना चाह रही हो जैसे कि एक बगीचा है और उसमें अगर गुलाब ही के फूल हों सारे तो वो अच्छा नहीं लगेगा,
7: आनंद नहीं लगेगा। और वही अगर बगीचे में रंग बिरंगे फूल होंगे, हरियाली होंगी, तो हमारा जो मन है बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाएगा। नहीं
6: हाँ, वहाँ गेंदा भी होगा, चमेली भी होगी, सूरजमुखी भी हो, है ना, तो वो बगीचा कितना खूबसूरत लगता है ना। मैं कहना चाहती हूँ यही तो विविधता है।
7: बिल्कुल शर्मिला, और बिल्कुल तुम्हारा इशारा मैं समझ गई कि तुम बात करना चाह रही हो आज के दिवस की। नहीं
6: क्योंकि किरण आज है 22 मई, जिसे हम जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि पर्यावरण के प्रति

0: लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल एक विशेष थीम भी हमारे यहाँ तय की जाती है। जैसे इस साल की जो थीम है वो है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना।
1: बिल्कुल, और ये थीम इस बात पर जोर देती है कि बड़े बदलाव छोटे स्थानीय प्रयासों से ही शुरू होते हैं। जीव विविधता दिवस हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी पर मौजूद हर पेड़, पौधा, पक्षी, जीव और बीज प्रकृति की अमूल्य धरोहर है,
0: और यदि बीज सुरक्षित रहेंगे तभी आने वाली पीढ़ियां भोजन, औषधि और हरियाली पा सकेंगी। एक छोटे से बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है। दुनिया में लाखों प्रकार के पौधों के बीज पाए जाते हैं। पुराने समय में लोग देसी बीजों को मिट्टी के घड़ों, नीम की पत्तियों में सुरक्षित रखते थे।
1: बिल्कुल,
0: मधुमक्खियां और पक्षी भी बीज फैलाने में मदद करते थे, इसीलिए ये जैव विविधता को जो है महत्वपूर्ण साथी भी हम इनको मान सकते हैं।
1: बिल्कुल शर्मिला, और जब तुमने बात करी ना कि प्राणियों की विविधता की, तो मुझे भी कुछ बातें याद आ रही हैं, तो मैं भी साझा करना चाहूंगी अपने सखियों से कि जहां बात आती है पशु और पक्षियों की, तो बहनों उनके बिना हमारी प्रकृति कहां सुंदर लग पाएगी। चिड़िया की चहचहाट, कोयल की कुहूक भरता हुआ मधुर स्वर, तोते का कलरव, मोर का सुंदर नृत्य और कोए की कांव कांव, कबूतर की गुटरगू और बंदर का एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फुदकना, गाय का दरवाजे के आगे आकर रंभाना, हाथी का सूंड हिलाकर नाचना। सखियों, और भी हजारों पशु पक्षी हैं जिनसे सजी है हमारी प्रकृति की सुंदरता, नहीं शर्मिला?
0: हाँ किरण, सिर्फ प्रकृति की सुंदरता को ही बरकरार नहीं रखते ये सारे पशु पक्षी, बल्कि हमारी जीवन दायिनी गैस ऑक्सीजन के लिए भी ये बहुत जरूरी है पक्षी, क्योंकि पक्षियों के पंखों से निकलती हुई हवा में छुपी है हमारी जीवन दायिनी गैस। और अगर कौवे की बीट न होती तो कैसे उगेगा दिन और रात का ऑक्सीजन देने वाला पेड़ पीपल।
1: बिल्कुल शर्मिला, और गाय अगर नहीं बचेगी तो हमारी आने वाली पीढ़ी कहाँ से हष्टपुष्ट होगी। पर हमारे आयुर्विज्ञान में तो गाय की हर वस्तु अमूल्य है, चाहे गोबर हो, गोमूत्र हो या दूध, दही या घी। और गाय जिस घर के आगे आकर रंभाने लगती है शर्मिला, वहाँ खुशियों का स्वतः दस्तक खुशियाँ दे देती है।
0: वैसे भी हमारी भारतीय संस्कृति में गौ को तो माता भी माना जाता है, और उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास भी माना जाता है ना। मतलब हम ये कहते हैं कि समय समय पर हम अपने मतलब हमें गाय का हर काम मतलब उसका लेते रहना चाहिए। जैसे कि अगर सुबह उठकर आप गाय को कुछ खिलाते हो, गुड़ खिलाते हो या ऐसा कुछ खिलाते हो, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे संस्कार जो है वो माने जाते हैं। क्यों?
1: बिल्कुल शर्मिला, और कहते हैं ना गोमूत्र के में बैक्टीरिया को समाप्त करने की शक्ति छुपी होती है। और बात जब आती है कुत्ते की, तो बहनों कुत्ते से वफादार जानवर कोई हो ही नहीं सकता।
0: और आजकल तो कितना फैशन चल पड़ा है ना किरण, की हर घर में इंसान जो है वो कुत्ते पालने भी लग गया है।
1: बिल्कुल, अगर पालने की बात हो ना, तो शर्मिला ऐसे जानवरों को पालना चाहिए जो जैसे गाय है उसको, और कुत्ता घर के आगे शोभा देता है मेरे हिसाब से।
0: ये सही कहा तुमने,
1: जो बुजुर्ग होते थे वो घर के आगे पसंद करते थे। लेकिन हाँ, बात जब कुत्ते की होना, तो वो इंसान से ज्यादा समझता है हमारे भाव और विचारों को, नहीं?
0: तो बिल्कुल, ये इसी तरह की जैव विविधताओं की जो बातें हैं वो हमने अपने सखियों से साझा की। लेकिन इसी के साथ साथ सुनवा देते हैं ये एक प्यारा सा गीत।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: सके मोटा अनाज है सेहत का राज। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो किस प्रकार मोटे अनाज में छुपे हैं हमारी सेहत के राज, जानते हैं हमारी इस वार्ता से, जिसका विषय है मोटा अनाज स्वास्थ्य का आधार, जिसकी वार्ताकार है मीनाक्षी व्यास। तो सुनिए ये वार्ता।
3: मोटा अनाज वह अनाज होता है जो अन्य अनाजों की तुलना में अधिक वसा वाले होते हैं। इन्हें कुछ उचित मात्रा में खाए जाने से शरीर को विभिन्न पोषक तत्व मिलते हैं और सेहत और शारीरिक शक्ति को बढ़ावा मिलता है। मोटे अनाज में गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, जौ, राजमा, चना, मूंगफली, तिल, कादो, रामदाना, मंडुआ, सावा आदि आते हैं। वर्तमान में इन मोटे अनाजों

मांग बढ़ती जा रही है क्योंकि इससे हमारे शरीर के पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। ये पोषक के पावर हाउस कहलाते हैं। हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कहता है कि मोटा अनाज हमारे शरीर की सभी आवश्यक तत्वों की पूर्ति करता है। एग्रीकल्चर के अनुसार मोटा अनाज जिन अनाजों को पैदा करने के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता न हो वो सभी अनाज मोटा अनाज की श्रेणी में आते हैं। जो फसलें अधिकतर खरीफ के मौसम में बोई जाती है अर्थात वर्षा आधारित फसलें जो वर्षा के समय में बोई जाती है वे सभी मोटे अनाज के अंतर्गत आती है। वर्षा के मौसम में ज्वार बाजरा मक्का रागी मंडुआ आदि फसलें बोई जाती है। रागी जिसे मंडुआ भी कहते हैं साउथ की फसल है। आमदा कर्नाटक केरला आदि क्षेत्रों में ये फसल ज़्यादातर उगाई जाती है। सवा चावल यह भी मोटे अनाज की फसल है। यह मूलतः बिहार उड़ीसा बंगाल मध्य प्रदेश के नीचे के हिस्सों में ज़्यादातर बोया जाता है। इसके अलावा कदनी जिसे मालका लजी भी बोला जाता है जो कुट्टी की आदि फसलें ज़्यादातर नमी के मौसम में उगाई जाती है। वर्तमान में ऐसा होने लगा है कि साउथ में ये सभी फसलें 12 महीने बोई जाने लगी है। अब तापमान और वातावरण का कोई असर नहीं होता। अधिकतर पूरे वर्ष तापमान 23 से 24 डिग्री न्यूनतम से 30 डिग्री से 35 डिग्री अधिक रहता है। यानी अब साउथ में 12 महीने तापमान 20 डिग्री से 40 के मध्य रहता है। सीधे सीधे यह कहा जा सकता है कि मोटे अनाज की फसलें वर्षा ऋतु के शुरू होने में बोई जाती है और सर्दी शुरू होने पर काटी जाती है। अब बात करते हैं कि मोटा अनाज क्यों खाया जाए। हमारा कृषि मंत्रालय मोटे अनाज को पोषक अनाज कहता है। इसके अनुसार मोटे अनाज में वे सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मिनरल कैल्शियम जिंक आयरन पोटेशियम मैग्नीशियम आदि। ये सभी ग्लूटेन फ्री होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है जिससे ये पचने में सुपाच्य होते हैं। इसके सेवन से भूख कम लगती है जिसे वजन घटाने में भी ये सहायक है। अब बात करते हैं मोटे अनाज के फायदे। मोटे अनाज के सेवन के कई फायदे हैं जैसे लौह तत्व के अधिक होने से एनीमिया में, मैग्नीशियम के अधिक होने से उच्च रक्तचाप में, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण मधुमेह में, रेशे से भरपूर होने के कारण कब्ज में। इसमें पाए जाने वाले अनेक तत्व जैसे फास्फोरस कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। ओमेगा 30-20 एसिड रक्त में पाए जाने वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। मोटे अनाज में मिलने वाला पॉलीफिनाइल एसिड कैंसर से बचाता है। इसके अलावा कुपोषण से लड़ने में भी यह सहायक है। मोटे अनाज के सेवन से कई रोगों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जो एक ऐसा मोटा अनाज है जो एनीमिया में फ़ायदा करता है, वजन घटाने में भी सहायक है। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर डायबिटीज और हार्ट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। हड्डियों को मजबूत करता है। जौ का पानी किडनी को सुरक्षित रखता है। इसके साथ ही अगर पथरी हो जाए या पित्त की थैली जिसमें यूटीआई में भी मददगार है। बाजरा एक ऐसा मोटा अनाज है जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके सेवन से आयरन की कमी पूरी होती है। चना डायबिटीज में फ़ायदेमंद है। जुई यानी जो ओट्स यह एक ऐसा मोटा अनाज है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ओट्स में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। हड्डियां मजबूत होती है, पाचन क्रिया मजबूत होती है, वजन को घटाने और नियंत्रित करने में सहायक है, रक्त की कमी को दूर करता है, हार्ट के लिए फायदेमंद है। मोटे अनाज को गरीबों का अनाज भी कहते हैं। उप सहारा अफ्रीका और एशिया के लाखों छोटे किसान इन्हें आवश्यक मुख्य अनाज की फसलों के रूप में उगाते हैं। इसके कई कारण हैं जैसे कि इसका इस्तेमाल भोजन चारा और जैव ईंधन बनाने के लिए होता है। ये फसलें आमतौर पर सीमांत और असिंचित भूमि पर उगाई जाती है।

0: ये इनकी उपज स्थायी खेती और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करती है। पोषक अनाज एक सामूहिक शब्द है जो कई छोटे बीज वाले फसलों को संदर्भित करता है, जिसकी खेती खाद्य फसल के रूप में मुख्य रूप से समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों व शुष्क क्षेत्रों में सीमांत भूमि पर की जाती है। मोटे अनाजों में प्रोटीन की मात्रा होती है। जो लोग दूध का सेवन नहीं करते हैं लेकिन मोटे अनाजों का सेवन करते हैं, उनमें कैल्शियम की कमी नहीं होती है। हालांकि सभी मिलेट्स या मोटे अनाजों में लगभग उतनी ही मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, यानी 100 ग्राम कोई भी मिलेट्स खाएंगे तो 7 से 12 ग्राम प्रोटीन हमें मिलता है। लेकिन अंतर यह है कि एक अमीनो एसिड का बना होता है, जिसकी गुणवत्ता गेहूं और चावल के प्रोटीन से बेहतर होती है। मोटे अनाज में छिपा है पोषक का खजाना, जिन्हें अब श्री अन्न के नाम से भी जाना जाएगा। साथ ही भारत को ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स बनाया जाएगा। भारत सरकार की पहल पर वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी से हो गई है। साथ ही 2023-24 का बजट पेश करते हुए श्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने की बात की। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर्स के चलते पूरे विश्व में मोटे अनाजों के प्रति किसानों और आम नागरिकों में जागरूकता पैदा की जा रही है। भारत सरकार इस दिशा में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता पैदा हो और किसान मोटे अनाज की खेती की ओर आगे आए, ताकि फिर से सभी की थाली में मोटा अनाज आ सके। भारत के लगभग 21 राज्यों में विभिन्न मोटे अनाजों की खेती की जाती है, जबकि विश्व के 131 देशों में किसी न किसी रूप में मोटे अनाजों की खेती होती है। वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में अफ्रीका में 489 लाख हेक्टर, अमेरिका में 53 लाख हेक्टर और एशिया में 162 लाख हेक्टर में मोटे अनाजों की खेती होती है। इसमें अकेले भारत में 138 लाख हेक्टर भूमि पर मोटे अनाजों की खेती की जा रही है। संपूर्ण एशिया एवं अफ्रीका के देशों में 69 करोड़ लोग आज भी परंपरागत रूप से मोटे अनाजों को अपने भोजन में शामिल करते हैं। देश के 5 प्रमुख राज्यों में क्रमशः राजस्थान में बाजरा, ज्वार, कर्नाटक में ज्वार रागी, महाराष्ट्र में रागी और ज्वार और उत्तर प्रदेश में हरियाणा में बाजरा की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। मोटे अनाज स्वास्थ्य और पोषक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज मोटे अनाजों को सुपर फास्ट और पोषक अनाज कहा जाता है। बाजरा जैसे मोटे अनाज को भविष्य का अनाज तक कहकर संबोधित किया जा रहा है। इसमें बखूबी यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोटे अनाज स्वास्थ्य और पोषक की दृष्टि से आने वाले भविष्य में कितना महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखते हैं। भारत में बाजरा, ज्वार, खवा, कुट्टी, कोदो, रागी, कंगनी, चना, कुट्टू एवं चौलाई प्रमुख रूप से मेजर एवं माइनर मोटे अनाज पैदा किए जाते हैं। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने से खाद्य सुरक्षा बढ़ती है और किसानों को आर्थिक रूप से स्वस्थ बनाता है। इसके अलावा इन्हें उचित मात्रा में खाने से पर्यावरण को भी लाभ मिलता है, क्योंकि इसकी खेती में विशेष प्रकार की खाद का इस्तेमाल नहीं होता जो पृथ्वी को प्रदूषित करती है। इसलिए मोटे अनाज हमारी सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए उपयोगी होते हैं। हमें इन्हें अपने दैनिक भोजन में शामिल करना चाहिए, ताकि हम स्वस्थ रह सके और समृद्धि का एक साथ भरपूर लाभ उठा सके। मोटे अनाज का सेवन कैसे करें? मोटे अनाज का सेवन हेल्दी नाश्ता बनाकर कर सकते हैं। मोटे अनाज से कुकीज और केक बनाकर खा सकते हैं। मोटे अनाज से हम दलिया बनाकर भी खा सकते हैं, बाजरे की खिचड़ी बनाकर भी खा सकते हैं, रोटी बनाकर भी खा सकते हैं, सलाद के साथ भी खाया जा सकता है। मोटे अनाज को रात में पानी में भिगोकर इन्हें अंकुरित करके भी खाया जा सकता है। वर्तमान में फास्ट फूड में भी मोटे अनाज का उपयोग होने लगा है।
1: अभी हमने सुनी वार्ता मोटा अनाज स्वास्थ्य का आधार। वार्ताकार थी श्रीमती साक्षी व्यास, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से अनाज का महत्व बताया। और सखियों, वैसे भी हम मरुधरा के लोग हैं, हमारे यहाँ दादा दादी नाना नानी मोटा अनाज

0: जी खाया करते हैं, क्यों किरण, है ना, क्योंकि ये हमारा परंपरागत भोजन भी है। और वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी भी समय समय पर इसके महत्व को बताते रहते हैं, तो हमें भी इस मोटे अनाज की बात पर अमल करना है और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम मोटा अनाज खाएंगे तो हम स्वस्थ निश्चित रूप से रहेंगे।
1: नमस्कार, मैं हूँ कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: शर्मिला, हमारा भारत, प्यारा भारत, जो अपनी अलग ही पहचान रखता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं और समय समय पर मनाए जाने वाले हमारे त्यौहार, नहीं?
1: हाँ किरण, हमारी परंपराएं और हमारी संस्कृति ही है जो हमें हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रखती हैं। हमें किसी भी देश में चले जाएं चाहे, लेकिन आकर सुकून कहाँ मिलता है? अपने ही देश में, है ना? क्योंकि जितने त्यौहार अपने देश में मनाते हैं ना, उतने त्यौहार, तीज त्यौहार मुझे लगता है कि बाकी वाले इतना जानते भी नहीं है, है ना?
0: बिल्कुल शर्मिला, क्योंकि हमारे ये त्यौहार हमारा हर दिन नया तो बनाते ही है, बल्कि मन में अति आनंद और उत्साह का संचार भी तो करते हैं।
1: और किरण, ये त्यौहार और परंपराएं नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी को जोड़ने का सेतु भी है ये, है ना? क्योंकि अगर ये परंपराएं और त्यौहार ही नहीं हो तो हम पहले की चीजें जान ही नहीं पाएंगे, ना ही हमारे बच्चे आने वाली चीजों को सीख पाएंगे, ना ही उनके बच्चे।
0: बिल्कुल शर्मिला, तभी तो हर बात में हम कह उठते हैं कि माँ ये कहती थी या दादी माँ ये कहती थी, इस त्योहार पर क्या करना है, ऐसा करना है, ये व्यंजन बनेगा या ऐसी पोशाक पहनेंगे हम, नहीं?
1: हाँ, क्योंकि और हमारे बुजुर्गों की कही गई बातें हमारे लिए पत्थर की लीक बन गई हैं। हम उनसे हटकर मतलब इस तरह से कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कही हुई बातें आज भी हमारे जेहन में कहीं ना कहीं बुरी तरह से मतलब बस गई हैं, हम ये कह सकते हैं, है ना?
0: बिल्कुल शर्मिला, मैंने अभी एक चैप्टर पढ़ा, अपनी बेटी को पढ़ा रही थी, तो अच्छा। उसमें क्या था कि माँ ने कहा था दक्षिण दिशा में पैर नहीं करना है, तो वो लेखक कहता है कि हालांकि ये सब भ्रम होता है, हमारी जो धारणाएं होती है, लेकिन वो कहाँ रुक जाता है उसका मन कि माँ ने कहा था ऐसा नहीं करना है,
1: मतलब पुरानी परंपराएं हैं ना?
0: तो उन परंपराओं को हम लाग भी नहीं सकते, वो हमारे लिए एक सीमा या दायरा बना देती हैं और जो कहीं न कहीं हमारे उस अस्तित्व को बनाए रखती है।
1: बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे त्यौहार भी मनाते हैं ना किरण, जैसे होली है, दिवाली है, दशहरा है, रामनवमी है, जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी है, गणगौर है, न जाने कितने सारे।
0: बिल्कुल,
1: मैं तो ये कहूंगी किरण कि कार्यक्रम का समय पूरा हो जाएगा लेकिन हमारे त्यौहारों के लिए
0: समाप्त नहीं होगी। शर्मिला, अब अभी का ही समय देख लो या अभी के जो दिन चल रहे हैं वो देख लो कि अधिक मास चल रहा है और इस मास में हमारी सारी सखियां और माताएं जोर शोर से लगी है पुण्य कमाने, उसके लिए तीर्थ स्नान हो रहा है, जप दान हो रहा है, कथाएं चल रही है जिनकी भागीदार हमारी माताएं बहनें बन रही है, हमारी सखियां बन रही है, पीपल बड़ का पूजन भी चल रहा है, और जैसे अभी मैंने किया पूर्णिमा पे और अमावस्या पे 108 पीपल है वो सींचने का, और मुझे यहाँ बीकानेर क्षेत्र में मतलब ऐसा स्थान देखने को मिला जहाँ पर कम से कम 200 पीपल के पेड़ लगे हुए हैं, तो मुझे जानकर बहुत ही अच्छा लगा। पहले हम जाया करते थे शर्मिला लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में, अच्छा, कि वहां मिलेंगे, लेकिन मैं एक स्थल पर गई वहां पर कम से कम 200 है और उगाए जाने की तैयारी हो रही है,
1: इतना अच्छा,
0: तो बहुत अच्छा लगा कि आज भी हमारे जो हमारे बीच के जो लोग हैं वो इतने सजग हैं पर्यावरण के
1: प्रति। होना भी चाहिए क्योंकि पर्यावरण ही हमारे स्वास्थ्य की सबसे बड़ी निशानी है। और जो ये तुम त्योहारों की बात कर रही थी, जो अधिक मास है इसमें कहा भी जाता है कि इस समय में जो पुण्य किए जाते हैं और वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली भी होते हैं, और ये जरूरी भी था ना, कितना मतलब सोचो कि इस मौसम में ही सबसे ज्यादा जरूरत होती है पेड़ पौधों को पानी की, है ना? क्योंकि है ना संरक्षण की भी जरूरत होती है,
0: तो हमारी जो ये रीति रिवाज है ना,
1: अच्छा बनाया है ना इन चीजों को,
0: पर्यावरण को मित्र के रूप में जाना जाता है,
1: मतलब परंपराओं को निभाने से बहुत सारे फायदे भी है।
0: बिल्कुल सही कहा शर्मिला, वैशाख और जेठ माह में जैसा की तुमने कहा की गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और लोग घरों से निकलना ही नहीं चाहते, और उस समय भरी दोपहर में हमारी माताएं बड़े बड़े कंटेनर लेके पानी के और पीपल बड़ सींचने जा रही है
1: ना?
0: तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी ही एक रिश्तेदार वहां मिली, मतलब मुझे आते समय मिली वो, मेरे कम से कम 11 बज गए होंगे और तेज धूप थी उसमें, वो कि मेरी उस ननंद ने बताया ऐसा करने से पुण्य मिलता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भरी दोपहर कुछ मायने नहीं रखती है बल्कि पुण्य या जो भी बड़ों ने कहा है वो चीज हमारे रिवाज में,
1: कि यही हमारी भारतीय संस्कृति का संरक्षण तो होता ही है, इससे साथ ही सामाजिक एकता भी बढ़ती है, है ना? इससे हमें एक नैतिक शिक्षा भी मिलती है किरण, है ना? और तो और मानसिक प्रसन्नता का राज भी कहीं ना कहीं त्योहारों

0: छुपा हुआ है, क्योंकि हमारी जो ये परंपराएं हैं ना वो हमें मानसिक सुकून भी देती हैं। किरण
1: बिल्कुल शर्मिला, और कैसे एकता की सामाजिक एकता बढ़ती है कि मिलकर हम कभी कई स्थान पर जाते हैं, जैसे अभी बात की पीपल की, तो वहाँ सीखने जाते हैं या फिर कथा सुनने जाते हैं तो भी होता है, या मिलकर कोई ऐसा कार्य करें, तीर्थ में जाते हैं नहाने, तो भी हमारे जो एकता की भावना बढ़ती है, या जो नैतिक शिक्षा है वो भी हमें मिलती है। और शर्मिला, ऐसा जो हम करते हैं ना कार्य, उससे हमारा हर दिन नया बनता है, साथ ही हमारी कला, संस्कृति, संगीत,

0: तो बहुत मतलब खुशनुमा माहौल हो रखा है, और उसके बीच में उनकी धमा चौकड़ी और खेल, और उसके बीच वो मुझे आवाज दे दे के बुलाते हैं कि मामी आप हमारे साथ खेलो।
1: अरे वाह,
0: मतलब पता है मैं भी उनके साथ बच्ची बन जाती हूँ और खेलने लग जाती हूँ, और पता ही नहीं चलता कि समय कैसे निकल गया।
1: मैं मतलब किरण तुम बहनों से बताना चाहती हो कि अभी जो छुट्टियों का समय है उसमें बहनें जो हैं वो बच्चों के साथ में भी अपना समय बिताएंगी, लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान बहनों को रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे मोबाइल पे गेम ही खेलते रहे, है ना।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि खेलने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे एक नेचुरल पेन किलर हम गेम को कह सकते हैं कि खेलते समय दिमाग से जो एंडोर्फिन नाम का एक केमिकल निकलता है ना, उससे शरीर के बहुत सारे दर्द और तनाव जो है वो तुरंत मिट जाते हैं, और हमारा ब्रेन भी जो है वो सुपर फास्ट काम करता है ना। जैसे मैदान पर पल पल बदलते खेल के कारण आपका दिमाग जो है वो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलने लगता है।
0: बिल्कुल शर्मिला, रोजाना खेलने वाले लोगों की याददाश्त और फोकस आम लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा बेहतर होता
1: है। बहुत ज्यादा है ना, और खेल आपको मानसिक और शारीरिक रूप से हमेशा अपनी उम्र से छोटा और एनर्जेटिक भी बनाए रखता है ना। और खेल हमें सिखाता है कि लाइफ में गिरना बड़ी बात नहीं है, बल्कि गिरकर वापस उठना और खेल को दोबारा शुरू करना ही हमारी असली पहचान है।
0: बिल्कुल, तभी तो शर्मिला स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को हमेशा खेलने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि उनके अनुसार हम स्कूल जाते हैं तो अधूरे मन से जाते हैं, दफ्तर भी आधे अधूरे मन से जा सकते हैं, लेकिन खेल के मैदान में हमें स्वयं को पूरी तरह से झोंकना होगा, वरना हम नहीं जीत पाएंगे। इसलिए खेल हमें सहनशील, संवेदनशील, एकाग्रचित और समूह में व्यवहार की भावना सिखाता
1: है। मतलब तुम कहना चाहती हो कि आज के समय में पढ़ाई जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है खेल, है ना। क्योंकि केवल किताबों में लगे रहने से शरीर और मन दोनों थक जाते हैं, और खेल हमारे जीवन में ऊर्जा, अनुशासन और आत्मविश्वास लाते हैं।
0: हाँ, उसके साथ शर्मिला जरूरी है मन का खुश रहना, और मनोरंजन भी तो हमारे मन के लिए जरूरी है, तो क्यों नहीं सखियों को सुनवा दिया जाए ये प्यारा सा गीत।

0: तो किरण, जाते जाते हम अपनी बहनों को ये भी बता दें कि अब जो बच्चे आए हुए हैं, इकट्ठे हुए हुए, तो क्यों ना वो पानी को वेस्ट ना कर दें, है ना, क्योंकि पानी को बचाना बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है। और हमारा कर्तव्य भी है कि जल ही जीवन है, इसलिए इसको आगे के लिए संचय करके रखना है और साथ में पूरा सजग भी रहना है। और लेकिन ये जो स्टूडियो की घड़ी है आगे बोलने की इजाजत नहीं दे रही है, तो मैं किरण शर्मा और
0: मैं डॉक्टर शर्मिला लेती हूं अपनी बहनों से इजाजत। नमस्कार।

0: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारो चैनल है। दिन के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले अंग्रेजी में, उसके बाद हिंदी में होंगे।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
1: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
1: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार हैं। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं।

0: और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
2: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की एक एक सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। चुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
1: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूजीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
3: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेज

0: से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल BSF के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि BSF ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 270,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
2: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। IPL क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30

प्रकट हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। प्रोग्राम में पहले सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म शोर का ये गीत। गीत को लिखा है संतोष आनंद ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर में अभी आपने सुना फिल्म भीगी पलकें का यह गीत। गीत को लिखा था एमजी हशमत ने और फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में आप सुनिए मोहम्मद रफी के स्वर में फिल्म धरती का ये गीत। गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत शंकर जयकिशन का।

ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा था एसएच बिहारी ने, गीत को गाया था मोहम्मद रफी ने और फिल्म थी बहारें फिर भी आएंगी। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है शिव कुमार ने और फिल्म का नाम है कॉलेज गर्ल, गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे गीत को संगीत दिया है SD परमन ने। गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और फिल्म है अभिमान।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म अभिमान किस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 3 बजे हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे दूसरी सभा के प्रसारणों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आप जो मुकाम हासिल करना चाहती हैं, जिसका आपने कभी सपना देखा था, उसे पाने की कोशिश के लिए सपनों को पंख लगा दें, क्योंकि कोई भी काम छोटी सी शुरुआत से ही होता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता। खुद पर भरोसा रखें, कभी हार नहीं माने। जीवन में सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो तेज दौड़ते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो दौड़ते रहते हैं और हमेशा गतिशील रहते हैं। और गतिशील रहने के लिए हमें प्रयास करना होता है, जैसा कि हेलो सहेली कार्यक्रम में आप हमें कॉल लगाने के लिए बार बार प्रयास करती हैं और सफलता मिलने पर खुशी की बरसात होती है। शहर से और कौन सी सखी हमारी पहली कॉलर होती है, तो ये लीजिए, फोन की घंटी बज गई। हेलो सहेली।
1: जी जी नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगरे बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: और क्या करती हैं आप?
1: जी दीदी, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो घर का ही काम करती हूँ।
0: घर में भी तो बहुत सारे काम होते हैं, तो हाउस वाइफ की तो जो पूरी जिम्मेदारी। आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है और आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में भी हमें बताएं।
1: जी दीदी, मेरी दिन की शुरुआत तो सुबह ही हो जाती है। सुबह उठने उठते हैं, फिर जैसे अभी तो गर्मी का सीजन है, चाय वगैरह तो अभी पीते नहीं है गर्मी का है तो, और सुबह उठते हैं, फिर फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रश वगैरह करने के बाद सीधा जैसे घर के काम है, नाश्ता वास्ता बनाना है, तो सुबह हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं
0: जी।
1: तो फिर सुबह रोटी सब्जी बनाती हूँ, उसके बाद बाकी काम है जैसे झाड़ू पोछा बर्तन है, तीन बच्चे हैं तो उनको उठाना, फिर उन लोग का ब्रश वगैरह करवाना, फिर उन लोग को नाश्ता कराना। ये सब
0: लगता है आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, है ना?
1: जी, बेटा बड़ा है
0: जी
1: और गुड़िया है, वो छोटी है अभी।
0: अच्छा। और आपके क्या शौक रहे हैं बचपन में?
1: जी, मैं जैसे कि पढ़ाई करती थी तो उसके साथ साथ मुझे सिलाई बुनाई करने का शौक है, घूमना फिरना भी बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप सिलाई में क्या कर लेती हैं और बुनाई में आपको क्या पसंद है? आपने सबसे ज्यादा क्या चीज बुनाई करी है?
1: जी दीदी, मैं जैसे बुनाई में पर्दा वगैरह है या पैरदान है, थाली टुकने का जो होता है वो सब बनाती हूँ, और जैसे कि सिलाई में मुझे सब कुछ आता है, जैसे बच्चों के लिए फ्रॉक, अपने लिए ब्लाउज, ये
0: जी। क्या बात है, बहुत अच्छा हुनर है जिसको आप आगे अपने घर में कर रही हैं, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपनी पसंद का कोई गाना बताइए हमें।
1: जी दीदी, मैं जीना है तो हंस के जियो
0: जी,
1: खाने दाल छीलू।
0: अच्छा, तो लीजिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: दीदी आदाब।
0: आदाब, अपना नाम बताइए।
1: दीदी मैं जिला रामपुर ग्राम खड़िया एक मिनार वाली मस्जिद के पास से शबनम अब्बासी आपसे मुखातिब हूँ। दीदी दीदी मैं हेलो फरमाइश भी सुनती हूँ, हेलो सहेली भी सुनती हूँ, सही सहेली भी सुनती हूँ, सब कार्यक्रम सुनती हूँ और रेडियो मेरे पार्लर में चलता रहता है और कार्यक्रम सुनती रहती हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आपका काम है पार्लर में लोगों की खूबसूरती।
1: ब्यूटीशियन हूँ दीदी
0: भी ट्यूशन है, बहुत अच्छी
1: जी।
0: बात है ये। आप तो यानी कि बहुत सारी सखियों को आप बहुत सुंदर सुंदर बना करके तैयार करती हैं, है ना?
1: दीदी
0: ये जो आप ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं, पार्लर चला रही हैं, तो कितने साल हो गए हैं इसको चलाते हुए?
1: दीदी ये मम्मी करती थी, अब हम भी करने लगे हैं दीदी, इसे 10-12 साल से भी ज्यादा हो गए।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी सी बात है। और आपके

0: शहर में क्या चीज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है?
1: दीदी हमारे शहर में तो मतलब जो रामपुर की जो मशहूर चीज है वो है चाकू।
0: अच्छा अच्छा
1: कहना चाहती हूँ जो लाइना आपके लिए, हम वो नहीं जो मतलब से याद किया करते हैं, हम वो नहीं जो रिश्तों से प्यार किया करते हैं। दीदी आपका पैगाम आए ना, हम आपको दिल से याद किया करते हैं। दीदी
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी प्यारी सी लाइन कही और हम भी आप सभी को दिल से याद करते हैं। तो अब आप बताइए कि कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: दीदी फिल्म का नाम रहेगा जान और गाने के बोल हैं, मेरे सीने में मेरा दिल धड़की, मेरे सीने में तेरा दिल जान ओ मेरी जान।
0: लीजिए शबनम जी आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनते हैं अगली किस सखी ने हमें कॉल किया है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं संयोगिता बोल रही हूँ, चंडीगढ़ से।
0: संयोगिता जी, आप चंडीगढ़ से बोल रही हैं। चंडीगढ़ अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत शहर है।
1: जी,
0: तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम बहुत अच्छा है, रहता है हमेशा, लेकिन अभी 2 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी शाम को अच्छा हो जाता है।
0: संयोगिता जी, अपने बारे में आप कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या क्या हैं और आपको किन चीजों में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, रुचि है आपकी?
1: दीदी, मेरा बहुत ज्यादा शौक है कुकिंग का। मैं कुकिंग और बेकिंग दोनों करती हूँ। बेकिंग के लिए मैं कॉलेज जाती हूँ, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ ताकि वो अपना करियर अच्छे से कर सकें बेकिंग में।
0: बेकिंग में आप क्या क्या बताती हैं?
1: बेकिंग में दीदी मेरा है, ब्रेड बनाना सिखाती हूँ, बहुत तरह की ब्रेड्स होती हैं, केक्स है, आइसिंग केक और
0: जी
1: बिस्किट्स हैं, और चॉकलेट की भी क्लासेस होती है। तो मेरे जो घर पे क्लासेस होती हैं
0: जी
1: वो हाउसवाइफ, रिटायर्ड लोग कोई भी कर सकते हैं,
0: जी
1: और कॉलेज में सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चे।
0: क्या बात है, यानी कि बहुत सारे बच्चे बड़े खुश होते होंगे जब आप तरह तरह की
1: जी
0: केक सिखाती होंगी। तो
1: बिल्कुल
0: केक के लिए क्या खास जरूरी होता है ध्यान रखना कि हम जब केक बनाने चलते हैं तो हमें किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए?
1: केक के लिए दीदी सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका रेशियो,
0: जी
1: और जब हम ओवन में बनाते हैं तो भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है, और जब हम गैस से बनाते हैं तब भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है,
0: जी
1: और उसका बेकिंग का एक ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स का,
0: जी
1: तो उसको ध्यान में रख करके किया जाता है। मेन है इसका कि जो भी इंग्रेडिएंट हम लें वो
0: जी
1: हमारा रूम टेम्परेचर के हो और उसका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो, तो
0: बिल्कुल
1: केक बहुत अच्छा बनता है।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही बात कहा कि रेशियो,
1: जी
0: नाप तौल जिसे कहते हैं, नाप तौल बहुत अच्छी
1: बिल्कुल,
0: होनी
1: नाप
0: चाहिए
1: तौल।
0: उसमें। इसके लिए तो मेजरमेंट कप्स भी आते हैं जिससे नापा
1: कप्स
0: जाता
1: आते
0: है।
1: हैं। हाँ
0: जी,
1: जी
0: तो जो आपने बताया गैस पर केक बनाने का तरीका, तो उसको आप किन बर्तनों में इस्तेमाल करती हैं केक बनाने के लिए?
1: केक बनाने के लिए दीदी, जिसके पास ओवन नहीं है वो हेवी पैन की कढ़ाई ले,
0: जी
1: चाहे कोई पतीला ले,
0: जी
1: उसके अंदर आप नमक डाल दीजिए, 1 किलो नमक।
0: जी
1: उसके ऊपर जो हम स्टैंड, जिससे हम बर्तन रखते हैं, वो स्टैंड हम उस पर रख सकते हैं, और उसके बाद जो बेकिंग डिश है, जो एल्युमिनियम की आती है
0: जी
1: बेकिंग ट्रे हमारी, उसमें हम केक के बैटर को रख करके हम उसमें रखेंगे, और उसको ढक करके हमको 45 मिनट्स के लिए छोड़ देना होता है।
0: तो इसको संयोगिता जी, जब केक आपका 20 मिनट है या 45 मिनट्स के लिए आपने रखा है, तो उसको कैसे पता करेंगे कि केक आपका रेडी हो गया है, तैयार हो गया है?
1: एक टूथ पिक की सहायता से दीदी उसको चेक करते हैं,
0: जी
1: अगर उसमें नहीं लगा है इट मीन्स कि केक आपका रेडी है, और
0: जी
1: अगर उसमें थोड़ा बहुत लगता है तो आप 5-7 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए।
0: क्या बात है, और फिर जब इसको
1: जी
0: ठंडा हो जाएगा तब इसको निकालना रहता है ना?
1: इसको निकालिए बिल्कुल अपने मन मुताबिक, आइसिंग करिए और उसका मजा लीजिए।
0: क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छी चीज
1: जी
0: बताई है। और
1: जी
0: संयोगिता जी ये बताइए, हम ये भी जानना चाहते हैं कि और आपके क्या क्या शौक है, इसके अलावा बचपन में आप क्या क्या शौक रखती थी?
1: दीदी, बचपन से तो मुझे गाने का और डांस का बहुत ज्यादा शौक था,
0: हाँ जी
1: लेकिन तब इतनी सुविधा नहीं थी और इतने स्कूल कॉलेजेस नहीं थे जहाँ ये सब चीजें सिखाई जाए, तो
0: जी
1: हम लोग रूटीन के जो कॉलेज में 15 अगस्त 26 जनवरी
0: जी
1: होता था, इन्हीं यही सब डांस करते थे। गाने का बहुत शौक था,
0: जी
1: शादी के बाद हस्बैंड भी बहुत गाने के शौकीन है, बिटिया भी मेरी कथक करती है,
0: क्या
1: उसने तो
0: बात
1: ग्रेजुएशन किया है, तो गाने की परंपरा हमारे घर में बनी हुई है। मेरी मासियां, मेरी अम्मा,
0: जी
1: अम्मा अब नहीं है
0: जी
1: लेकिन वो विविध भारती बहुत सुनती थी, और सखी सहेली उनका फेवरेट प्रोग्राम होता था,
0: क्या बात
1: तो
0: है
1: उन्हीं के साथ सुनते सुनते मेरी सखी सहेली सुनने की आदत पड़ी।
0: क्या बात है, यानी हमारे विविध
1: जी
0: भारती के रेडियो के प्रोग्राम आप बहुत सारे सुनती आई हैं बचपन से।
1: बहुत बचपन से जी, हम घड़ी नहीं देखते थे, हम प्रोग्राम के हिसाब से सोचते थे कि अच्छा अब इतना बज गया अब ये
0: हाँ,
1: आएगा।
0: ये बात आपने बिल्कुल सही की। आपने बोला कि आपको गाने का भी शौक है, तो आज
1: जी
0: आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज तो दीदी आप सुना दीजिए मुकद्दर का, सिकंदर का गाना, सलामे इश्क मेरी जान।
0: ठीक है संयोगिता जी, आपको हम आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो, मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, कल्पना खरे।
0: जी कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। और बताइए, अपने बारे में
1: बस
0: बताइए।
1: आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो मैं बहुत दिन से फोन लगाती थी, कभी भी लगता ही नहीं है, हमेशा एंगेज जाता है,
0: जी
1: तो उसके लिए मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरा फोन लग गया।
0: क्या बात है। देखिए, आज आपने इतनी कोशिश करी, आपने दिल से फोन लगाया तो आपका फोन लग गया, और ये बहुत अच्छी बात है। कोशिश करते हैं तो सफलता हमेशा मिलती है ना कल्पना जी?
1: और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आवाज सुनने के लिए हम तरस जाते हैं, इतनी मीठी इतनी अच्छी आवाज है आपकी।
0: क्या बात है। और बताइए कल्पना जी, आपके क्या-क्या शौक हैं, आपका बचपन कैसा बीता?
1: एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स जो है हमेशा रेडियो पे ये कुछ कुछ प्रोग्राम सुनते ही रहते थे, तो हम लोगों को भी इन्हें बचपन में तो इतना समझ नहीं आता था,
0: जी
1: लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए, हम लोग को लगा कि नहीं, अच्छा लगता है गाने सुनना है, यंग एज होती है तो ये सब चीजें अच्छी लगने लगती हैं अपने आप।
0: जी
1: तो हमारे घर में हमेशा हमारे पेरेंट्स हैं अम्मा बाबू जी, तो
0: जी
1: एक्चुअल में तो मैं झांसी की हूँ,
0: जी
1: और छाया गीत, ये त्रिवेणी, सभी मतलब हम लोग सखी सहेली ये सब सुनना पसंद करते हैं हम लोग।
0: क्या बात है।
1: और हाँ, रेडियो हमारे यहाँ बहुत पुराना, पहले जो चलता था यानी नॉब जो घुमा के, और वो नहीं आवाज कम ज्यादा का, तो बहुत मजा आता था उसमें। अब तो खैर बहुत इजी हो गया है सब कुछ।
0: हाँ, अब तो सब मोबाइल में भी रेडियो आ गया है,
1: हाँ
0: अब
1: हाँ
0: कहीं भी बैठे
1: हाँ
0: रेडियो सुन सकते हैं, तो सुविधा हो गई।
1: हाँ
0: लेकिन वो जमाना, वो रेडियो का जो दौर था, वो जमाना जो रेडियो का दौर था, वो बहुत ही अलग था। सबके घरों में बढ़िया बढ़िया रेडियो हुआ करते थे, सब सुबह से लेकर रात तक प्रोग्राम।

0: सुनते थे, तो कहना चाहिए मनोरंजन का एकमात्र वही साधन था, है ना कल्पना जी?
1: वही साधन था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ
0: जी। और कल्पना जी, आपने अपनी पढ़ाई वगैरह कहाँ से करी?
1: मेरे झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मैंने MA सोशियोलॉजी में किया हुआ है।
0: जी जी जी
1: हाँ,
0: और
1: मतलब बहुत अच्छे दिन निकले मेरे, बचपन बहुत ज्यादा अच्छा निकला।
0: सही
1: और
0: बात
1: उसके
0: है।
1: बाद ससुराल भी बहुत अच्छी मिली है सब कुछ। तभी लोग म्यूजिक के इतने शौकीन है ने, हमारे ससुर तो सहगल के गाने गाते थे
0: क्या
1: हमेशा।
0: बात है, गाने की महफिल लग
1: हाँ
0: जाती है यानी आपके घर में।
1: हाँ और सभी सिंगर है हमारे, देवर वगैरह सब अभी भी मतलब 60+ हो गए हैं,
0: जी
1: तब भी वो क्लास जाते हैं, ज्वाइन की हुई है।
0: क्या
1: मेरा
0: बात,
1: बेटा भी बॉम्बे में गिटारिस्ट है, वो भी गिटार बजाता है जॉब के साथ साथ, तो
0: क्या
1: मैंने
0: बात है।
1: सबको का। हाँ, और बेटी भी मेरी गुंजा बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा।
0: क्या बात है।
1: मैं तो एक्चुअल में 63 ईयर्स की हूँ अभी,
0: जी जी जी
1: और मतलब मुझे हर दिन जीने में मैं बहुत अच्छा लगता है कि हर दिन मेरा बहुत अच्छा निकले, इसलिए मतलब अच्छा समय मैं व्यतीत करती। बच्चों की मैरिज हो गई है,
0: जी
1: दोनों बच्चे, उसके बच्चे भी हो गए हैं अभी,
0: क्या बात
1: मतलब
0: है।
1: फ्री हैं एकदम। तो
0: जी
1: मुझे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं इस सब के लिए, कि तुम्हें जो करना है अब करो अपने हिसाब से।
0: यानी कि जिंदगी में आप जो करना चाहती थी वो अपने शौक आप पूरे कर रही हैं, और इस उम्र में भी कर रही हैं और बहुत एक्टिव हैं जैसा कि आपने बताया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर के। और आपके पतिदेव का बहुत सहयोग है, ये बहुत अच्छी सी बात है आपने बताई मुझे, तो
1: हाँ,
0: बड़ा अच्छा
1: ये सब
0: लगा।
1: मेरी बेटी की मैरिज डे है, वो अपने हस्बैंड को वो 7 दिन का गाना कंगना कंगना डेडिकेट करना चाहती है।
0: हमारी तरफ से भी उनको बधाई दीजिएगा। और कल्पना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम आपको आपकी पसंद का वो 7 दिन फिल्म का कंगना कंगना करके ये गाना आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली लेकर हाजिर है आपकी सहेली मंजरी वर्मा। हेलो सहेली, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं वैष्णवी मोरे बोल रही हूँ, नांदेड़ से। अच्छे,
0: वैष्णवी जी, कैसी हैं आप? क्या करती हैं आप?
1: मैं घर पर रहती हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आप अपने मर्जी से कौन सा ही गाना
0: ठीक है
1: सुनाएंगे?
0: ठीक है, तो मैं आपको अपनी पसंद का ये गीत सुनवाती हूँ।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनु शर्मा बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: अनु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। और कैसी हैं आप, क्या करती हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हूँ। हेलो सहेली प्रोग्राम में कई दिनों से मैं कॉल लगा रही थी,
0: जी
1: आज जाके कॉल लगा।
0: देखिए क्या बात है, आज आपने कॉल लगाया और लग गया तो ये आपकी कोशिश रंग लाई है ना अनु जी।
1: बिल्कुल।
0: तो अनु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो जॉब करती हैं इसके अलावा आपके और कौन कौन से शौक हैं?
1: मेरा सबसे ज्यादा जो पसंदीदा शौक है वो मेरा है गाना गाना और गाना सुनना। जी
0: क्या बात है। तो विविध भारती से आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनना पसंद करती हैं, कौन कौन से रेडियो पर प्रोग्राम सुनती हैं?
1: विविध भारती से सबसे पसंदीदा तो सखी सहेली, हेलो फरमाइश, छाया
0: जी जी जी
1: गीत, ये सब बचपन से सुनते आए हैं, तो बहुत अपना सा फील होता है। आज
0: तो
1: भी 6 बजे चालू हो जाता है।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात
1: बिल्कुल
0: करके। और अच्छा, ये बात बताइए कि आपको खेलना पसंद है
1: खेलती हूँ मैं।
0: और अभी भी खेलती हैं, या बचपन में या स्कूल में आपके कौन से
1: नहीं,
0: खेल पसंद के होते थे?
1: मैं बैडमिंटन, कैरम, चेस ये पसंद करती हूँ।
0: अच्छा, तो अभी भी आपको समय मिल जाता है जॉब के बाद?
1: निकालना पड़ता है, थोड़ा हेल्दी
0: जी
1: रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है,
0: अच्छा
1: क्योंकि हम इंश्योरेंस में सब लोगों को यही सिखाते हैं कि अपना प्रोटेक्शन भी रखें और स्वस्थ भी रहें। हेलो
0: जी
1: सहेली सुन सुन के बहुत अच्छा फील होता
0: क्या बात है, अब
1: है।
0: हमारे
1: जी
0: विविध भारती के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको भी आप सुनती रहिए इसी तरह।
1: जी
0: और आपको आज हम कौन सा गाना सुनवाएं?
1: आज आपने ही पसंद का

0: गाना सुनवाइए, नाम घूम जाएगा।
1: क्या बात,
0: किनारा फिल्म से है।
1: अनु जी आपने इतना प्यारा गाना बताया है, नाम घूम जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि आपने कहा है कि आपको गाना पसंद है, तो क्यों ना आप एक दो लाइन हमारे लिए गा दीजिए।
0: जी बिल्कुल, नाम

0: जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए, आप भोपाल से हैं, तो वहाँ का कैसा मौसम है इस समय?
1: मैम, इस तरह तो गर्मी है और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि गर्मी की वजह से
0: जी,
1: सारा लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं बहुत ही।
0: गर्मी से बचने के लिए आप क्या उपाय अपनाती हैं, ये बताइए मुझे।
1: गर्मी से बचने के लिए देखो, प्रतिदिन तो सब स्नान करते ही हैं,
0: जी,
1: ऊपर से जैसे ठंडा कुछ, जैसे नींबू की सिकंजी है या रुआबजा है
0: जी,
1: या दही की लस्सी है, ये पीते हैं सब, ग्लूकोज है घोल के, बस इसी वजह से सबको तराई मिलती है
0: क्या
1: पीने
0: बात है।
1: से।
0: और आम का पन्ना नहीं बनाती आप?
1: मैम, आम का पन्ना नहीं बनाते हैं हम, सिर्फ जैसे अगर जैसे आम की अगर आपको लस्सी बनाना है तो
0: जी
1: आप मिक्सी में मिक्स करके और बढ़िया बर्फ वगैरह डाल के, जो आप जो डाल के बढ़िया पीजिए, अच्छा लगता है। मैम, मैं अपने परिवार का नाम लेना चाहती हूँ अगर आपकी इजाजत हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए अपने परिवार का नाम।
1: मैम, मेरे हस्बैंड का नाम विकास अग्रवाल है
0: जी
1: और मैं उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देती हूँ रेडियो के जरिए।
0: जी
1: और मेरी सास का नाम सुमन है,
0: जी
1: मेरे ससुर का नाम महेंद्र है और मेरे देवर का नाम विशाल है, और मेरे जो मायके में मेरे पापा का नाम धनराज कुकरेजा है, मेरी
0: जी
1: माँ का नाम फूला है और मेरे भाई का नाम अमित सुमित और भाभी का नाम संतोषी और उनके बेटे का नाम शिवा। ये
0: जी
1: है मेरा समस्त परिवार।
0: आपके परिवार के नाम जानकर बहुत अच्छा लगा। अपने पतिदेव को हमारी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिएगा। आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: राम लखन फिल्म का गाना सुनना है और वो है 1, 2, 4 माय नेम इज लखन।
0: तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गाना।

0: बताइए।
1: बिहार अच्छा ये राज्य है
0: जी,
1: यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है।
0: आशा जी, बिहार के जो खान पान है, जो वहाँ की चीजें स्वादिष्ट बनती हैं, उनमें से आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आता है बिहार का?
1: ये सबसे ज्यादा पसंद आता है दाल चावल, गोलगप्पे खाना पसंद है।
0: क्या बात है। तो चलिए अर्शिया जी, बताइए कि आज आप कौन सा गाना हेलो सहेली में सुनना पसंद करेंगी?
1: हिना फिल्म का है।
0: हिना फिल्म का,
1: और गाने का भूल है मैं हूँ खुश चंद।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने पसंद किया है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हम बिहार से किशनगंज जिला से बोल रहे हैं।
0: जी, आपका नाम क्या है?
1: जी, मेरा नाम अशिया नाज है।
0: अशिया नाज, बिहार में हैं आप रहती, तो बिहार के बारे में कुछ

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं दक्षा जहाँ बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: दक्षा जहाँ, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: घर पर ही रहते हैं, अभी तो गर्मी की छुट्टी है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर।
0: जी
1: विविध भारती सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हेलो सहेली और हेलो फरमाइश, ये सब ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज के मेहमान सब कार्यक्रम सुनती हूँ मैं।
0: तो दरक्षा जी, आज आप क्या सुनना पसंद करेंगी, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: गाना हमारे दादाजी की पसंद का, जैसे जब भी फोन लगाते हैं तो वो कहते हैं रेडियो जैसे हम लोग सुनते हैं,
0: जी
1: तो वो बोलते हैं कि ना मेरी पसंद का भी गाना सुनो कभी, तो उनकी फरमाइश है। आज
0: बिल्कुल, बताइए अपने
1: ये
0: दादाजी की पसंद।
1: वादियां मेरा दामन अभिलाषा फिल्म का गाना है।
0: तो दरक्षा जी लीजिए, सुनते हैं आपकी पसंद का, आपके दादाजी की पसंद का, वादिया मेरा दामन, ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र पुणे से शुभदा इनामदार बोल रही हूँ।
0: शुभदा जी, आपका हेलो सहेली में फोन लगा है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है हेलो
0: जी
1: सहेली में आकर।
0: जी अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं एक सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन हूँ
0: जी,
1: और जूनियर कॉलेज में अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: तो आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी?
1: मैं जूनियर कॉलेज में 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ाती थी। मराठी मेरा सब्जेक्ट था और ज्योग्राफी भी मैं सिखाती थी। अब मैं रिटायर होकर 15 साल हो गए हैं मुझे,
0: जी
1: तो अब मैं खाली वक्त मुझे बहुत मिलता है तो मैं विविध भारती सुनती हूँ, क्योंकि बच्चे सब काम पर चले जाते हैं तो अकेलापन विविध भारती के जरिए
0: जी
1: मेरा कम हो जाता है।

0: अब मैं रिटायर होकर 15 साल हो गए हैं मुझे
1: जी.
0: तो अब मैं अब खाली वक्त मुझे बहुत मिलता है तो मैं विविध भारती सुनती हूँ क्योंकि बच्चे सब काम पर चले जाते हैं तो अकेलापन विविध भारती के जरिए मेरा कम हो जाता है और बहुत खुशी मिलती है.
1: क्या बात है. तो हमारे विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम आप सुनती होंगी, तो आपको कौन कौन से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं?
0: ये पहले सखी सहेली और हेलो सहेली तो अच्छे लगते ही है और साथ ही साथ भूले बिसरे गीत, वंदे मातरम, त्रिवेणी, काया गीत, ये सभी प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आते हैं.
1: क्या बात है.
0: थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, ललित लेख, कथा, प्रासंगिक कविता मराठी में लिखती हूँ जो कभी कभी न्यूज़पेपर और मासिक पत्रिका में छप भी जाता है.
1: अच्छा.
0: हाँ,
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लिखती हैं. और हाँ, तो आप हमें आज कौन सी कविता की कुछ पंक्तियाँ सुना सकती हैं?
0: हे सखी हेलो सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो नित नई नवेली. किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम लगती हो सबको प्यारी न्यारी दुलारी. हेलो सहेली, ज्ञान विज्ञान साहित्य समाज उत्सव संस्कार से लेकर गीत संगीत कला क्रीड़ा तक करवाती हो सभी का दिलकश मनोरंजन, साथ ही साथ मिलता है उस बोधन का अंजन. मंजरी जी,
1: जी
0: अनुश्री प्रस्तुत हेलो सहेली ने स्नेह का दीप, गुणों की आरती, वाणी में ममता, आपस में मौज मस्ती और मंजूल सी सरलता.
1: धन्यवाद. आज आप कौन सा गाना पसंद करेंगे सुनना?
0: मिस मेरी फिल्म का सखी रे सुन बोले पपीहा उच्च पर
1: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का मिस मैरी फिल्म का ये बहुत प्यारा सा गीत.

आज हेलो सहेली के सफर में सखियों से बातें करते पता ही नहीं चला बातों और गीतों ने समा बांध दिया। अब कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। चलते चलते आपको जानकारी दे दें, आपके कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 4002466 2, एसटीडी कोड 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए, फोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 28670288, एसटीडी कोड है 022। तो बस मंगलवार को लगाइए इन्हीं नंबर्स पर कॉल और अपनी नई सहेली से कीजिएगा ढेर सारी बातें। हेलो सहेली प्रोग्राम प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो सुनना याद रखिएगा। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हमारे सखा भाइयों से विनती है कि वे हेलो सहेली में कॉल नहीं लगाएं क्योंकि लाइन व्यस्त हो जाती है। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के संग। हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, नमस्कार। सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: इस श्रृंखला में आज सुनिए इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। राधा और पुष्पा दो गरीब माँ बाप की बेटियाँ थी। राधा की बड़ी बहन पुष्पा की शादी हो चुकी थी। राधा को माँ बाप स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो किसी न किसी तरह मैट्रिक तक पढ़ने में कामयाब हुई थी, लेकिन जैसे ही जवानी की मंजिल में कदम रखा तो उसके पिता रामलाल ने प्रकाश नाम के आदमी से उसकी शादी कर दी।
1: वाह,

राधा के गरीब माँ बाप ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज को देखकर प्रकाश के रिश्तेदारों ने नाक भौं चढ़ाई और पूछा, बस इतना ही सामान मिला है? प्रकाश के माँ बाप ने इस बात पर सिर हिलाया, आप जैसे बड़े अफसर के लिए ये दहेज बहुत ही कम है। रिश्तेदारों ने नफरत भरे स्वर में कहा, ऐसे कंगाल घराने में रिश्ता क्यों किया? उस वक्त तो बात आई गई हो गई, मगर जिस जहरीले पौधे को प्रकाश के रिश्तेदारों ने इनके ख्यालात के आंगन में उगा दिया था, उसने धीरे धीरे एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके कड़वे कसैले फल का अर्क प्रकाश और उसके माँ बाप के हलक से उतारा जाने लगा। इस अर्क ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू किया, जिसके नतीजे में इन लोगों को यकीन हो गया कि रामलाल ने कम दहेज दिया। हमारे समाज में बुनियादी जरूरतों को हासिल करना मुश्किल हो जाए और इस पर पाबंदी लग जाए तो वहीं सामाजिक और नैतिक बुराइयां सर उठाना शुरू कर देती हैं। आज शैतानी वसवसे, नाजायज ख्वाहिशात और वाहियात रस्मों रिवाज ने शादी को बहुत मुश्किल और पेचीदा बना दिया है। दहेज की नाकाबिले बर्दाश्त फरमाइशें एक गरीब इंसान दहेज अदा नहीं कर सकता। दहेज की अदायगी न होने की सूरत में कितने ही गरीब खानदानों में शादियां रुक जाती हैं, बारातें दुल्हन की चौखट पर आकर रुक जाती हैं और कितने ही माँ बाप अपनी बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर लेते हैं या फिर लड़कियां खुद को बोझ समझकर मौत के मुंह में चली जाती हैं।

पर तेरा बसेरा था। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ

बरसाई, बारिश में

समाज में रिश्ते बाप की हैसियत और समाज में उसकी ऊंचे और बुलंद मर्तबे को देखकर किए जा रहे हैं। लड़की की काबिलियत एक अलग ही चीज रह जाती है। वो कितनी ही अच्छी किरदार और नेक सीरत क्यों ना हो, अगर उसके बाप की हैसियत लड़के वालों से मेल नहीं खाती तो बात हजार बार भी बनाओ तो भी नहीं बनती, बल्कि बिगड़ जाती है। रिश्ते नातों के इस नीलाम घर में कोई भी बोली ऊंचे दहेज और माली तहफ्फुज के बिना नहीं लगाई जाती। दहेज कितना खूबसूरत और हसीन शब्द है, मगर इसका हुस्न तो दुल्हनों का लहू पीकर मुस्कुराता है। दहेज की लानत एक शोला है जो हसीन आंचल पर लहराता है। दहेज की लानत कभी सास के हाथों बहू को जहर पिलाती है, कभी ननद की चालें भाभी का गला घोटती हैं, कभी शौहर से तेल छिड़ककर आग लगवाई जाती है, तो कभी लड़की के पाक दामन पर दाग लगाए जाते हैं। इस तरह दहेज के लालची लोग औरतों का खात्मा करते हैं। प्रकाश अपनी बीवी राधा से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। उसके रवैये को देखकर घर वालों को भी शह मिल गई। वे उठते बैठते सोते जागते राधा से दहेज की मांग करने लगे। शादी को एक साल का अरसा हुआ था, राधा बीमार रहने लगी। राधा के ससुराल वाले ठीक से उसका इलाज भी नहीं करवा रहे थे। बीमारी की हालत में ही राधा ने एक लड़की को जन्म दिया। दुख ये था कि बच्ची का एक पैर पोलियो का शिकार था। राधा की बड़ी बहन ने उस मासूम बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी ली और उस बच्ची का नाम रुक्मणी रखा गया, जो अपनी मौसी के साथ चली गई। राधा का रूप बड़ा दिलकश था, वो बहुत सुंदर थी। उसके संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। वो ससुराल वालों से ठीक तरह से पेश आती थी। किसी गलती के एहसास पर उसने कभी बुरा नहीं माना। ना वो बहस करती थी ना तकरार, हंसकर अपनी गलती कबूल कर लेती थी। मगर उसकी कोई गलती ना भी हो तो भी वो उसे अपनी गलती समझकर स्वीकार कर लेती थी। इन्हीं बातों और खूबियों ने उसे एक खुश मिजाज औरत बना दिया था, लेकिन अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग ने उसे उदास और निराश कर दिया था। राधा के चेहरे और होंठों पर मुस्कुराहट तो रहती थी, मगर दहेज के नासूर ने उसके सीने में गहरे जख्म कर दिए थे। अपने दुख को अपने तक ही रखने और दुनिया को दिखाने के लिए वो सामने सामने मुस्कुराती रहती थी। वो दुनिया को दिखाती थी कि इन हालातों में भी वो खुश है। हालात से समझौता करके वो खुश है।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। संध्या के 5 बजने वाले हैं। हमारे आज के प्रसारणों की संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा के आरंभ में सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग 2 गुना हो गया है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की

0: घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठियों को देश से बाहर करेगी। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी। मतदान और मतगणना 18 जून को होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। गिरिबाला सिंह सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। उन्हें अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है, जबकि समर्थ सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला को वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद ये पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिनभर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देशभर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 5:05 हुए हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना युवा वाणी कार्यक्रम।

0: नमस्कार दोस्तों, नई उमंग, नए सपने और युवा दिलों की धड़कन यानी आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आपकी युवा साथी पूजा रंगा
1: और हर बार की तरह मैं आपका दोस्त माधव। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सबसे बड़ी चीज स्वस्थ होंगे और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में लगातार जोश के साथ लगे होंगे।
0: बिल्कुल माधव, लेकिन तुम्हें पता है माधव, कभी कभी ना मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन सबसे इंटरेस्टिंग जनरेशन है।
1: कैसे?
0: क्योंकि हमने दुनिया को बदलते हुए सिर्फ देखा ही नहीं है बल्कि उसे महसूस भी किया है।
1: ये बात है। और पूजा, इसके साथ साथ में ना हमने वो समय भी देखा है जब लोग किसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए घंटों किताबों में लगे रहते थे, क्योंकि वी बिलोंग्स टू मिलेनियल्स, जनरली 1999, 1998 या 2000 या 2001 ज्यादा से ज्यादा करके। ये वो समय था जब अगर आपको जवाब जानना होता था मोस्टली लोग बुक्स की प्रिफर करते थे, क्योंकि उस वक्त इतना इंटरनेट की रीच इतनी ज्यादा नहीं थी। और आज एक छोटा सा

0: मोबाइल फोन दोस्तों सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर सारी जानकारी ला करके दे देता है।
1: और यही नहीं, जानकारी नहीं, अब तो मोबाइल हमारी पसंद भी समझने लगा है। कौन सा गाना हमें पसंद है, कैसी वीडियोस देखना पसंद है, हम क्या सर्च करते हैं, सब कुछ उसे जैसे पहले से ही पता होता है।
0: कभी कभी तो ना मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये वास्तव में हमसे ज़्यादा हमारे बारे में जानती है, और इसीलिए आजकल लोग तुम अगर ध्यान से देखो तो टेक्नोलॉजी को लेकर के थोड़े बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हल्के से कंफ्यूज्ड भी हैं और डरे हुए भी हैं।
1: ये इसलिए माधव क्योंकि बदलाव जितना बड़ा होता है ना, सवाल भी उतने ही बड़ी पैदा करके लाता है।
0: और आज का सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि AI जो अभी हम सबसे ज़्यादा कह सकते हैं हम लोग ट्रेंडिंग टॉपिक रह रहा है, AI आखिर आने वाले समय में हमारी जिंदगी और रोज़गार को कितना बदल देगा।
1: इसीलिए तो माधव आज युवाणी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो आज के हर युवा से जुड़ा हुआ है, AI और रोजगार का भविष्य।
0: बिल्कुल, और दोस्तों आज ना AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं रह गया है, अगर आप ग्राउंड पर देखें तो ये धीरे धीरे हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है।
1: बिल्कुल, जैसे मोबाइल फेस पहचान कर अनलॉक होता है, सोशल मीडिया हमारी पसंद के हिसाब से चीज़ें देखता है, वहाँ AI ही तो काम कर रहा होता है।
0: बिल्कुल, और आज तो दोस्तों AI इंसानों की तरह बातें भी कर रहा है, स्टोरीज लिख रहा है, जोक्स लिख रहा है, फोटोज बना रहा है, वीडियोज बना रहा है, कोडिंग कर रहा है पूजा, यहाँ तक कि बड़े बड़े ऑफिस में लोगों का काम इतना उसने आसान कर दिया है जो कि वास्तव में काबिले तारीफ है।
1: लेकिन माधव जितनी तेजी से AI आगे बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से युवाओं के मन में डर भी तो बढ़ रहा है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मशीनें सब कुछ करने लगेगी तो इंसानों के हिस्से में क्या ही बचेगा।
0: और कुछ हद तक ना दोस्तों ये जो डर है ना ये होना भी चाहिए और ये है भी, और ये नेचुरल है दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो शुरुआत में ऐसा ही लगता है कि ये इंसानों को रिप्लेस कर देगी और इंसानों की जगह ले लेगी।
1: ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर्स आए थे तब भी तो लोगों को यही लगा था कि अब नौकरियां खत्म हो जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन बाद में वही कंप्यूटर्स लाखों लोगों के करियर का सबसे बड़ा हिस्सा बन गए थे।
0: बिल्कुल, और मुझे ये लगता है दोस्तों कि AI भी कुछ वैसा ही बदलाव लेकर आया, बस फर्क इतना है कि ये जनरली बाकी चेंजेस से थोड़ा सा रैपिड है, तेज चेंजेस इसके अंदर हो रहे हैं।
1: AI के कारण बहुत सी जॉब्स जरूर बदलेगी, खासकर वो काम जो रोज एक जैसे तरीके से किए जाते हैं, जैसे डेटा एंट्री, सिंपल टेक्निकल वर्क या कुछ रूटीन ऑफिस टास्क।
0: बिल्कुल, लेकिन वहीं दूसरी तरह अगर आप ध्यान से देखो तो करियर ऑप्शन भी तो तेजी से सामने आ रहे हैं। भाई हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आज AI ट्रेनर, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, पूरा का पूरा नया सेक्टर डेवलप हुआ है पूजा, रोबोटिक्स स्पेशलिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और डेटा एनालिस्ट जैसी फील्ड्स युवाओं के लिए एक नई रीच लेकर के आया है, नए अवसर लेकर आया है।
1: यानी बात साफ है माधव कि भविष्य उन्हीं लोगों का होगा जो सीखना नहीं छोड़ेंगे।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अब सिर्फ डिग्री काफी नहीं है, अब स्किल्स को हमें सबसे ज्यादा अपनाना होगा।
0: बिल्कुल, और आजकल तुम देखो कि कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी जरूरी हो गई है, टेक्नोलॉजी की समझ, ये जो चीजें हैं ये फ्यूचर की रियल स्ट्रेंथ बनने वाली है।
1: मतलब मशीनें तेज हो सकती हैं लेकिन इंसानों जैसी भावनाएं तो नहीं रख सकती।
0: हाँ।
1: वो जवाब दे सकती हैं लेकिन रिश्तों की अहमियत महसूस नहीं करा सकती।
0: ये बात तुमने बहुत सही कही है पूजा, कविता लिख सकता है AI लेकिन दर्द महसूस नहीं कर सकता, जोक बना सकता है लेकिन इंसानों की तरह दिल खोलकर अल्लड़ हंसी नहीं हंस सकता।
1: और शायद यही इंसानों की सबसे बड़ी ताकत है, हमारी सोच, हमारी क्रिएटिविटी और हमारे इमोशंस।
0: बिल्कुल, इसीलिए मुझे तो ऐसा लगता है पूजा कि युवाओं को ना AI से डरने की नहीं बल्कि उसे ध्यान से समझने की और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, इस तरीके पर अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है।
1: लेकिन माधव टेक्नोलॉजी जितनी ताकत देती है उतनी जिम्मेदारी भी तो मांगती है, इसीलिए जरूरी है कि हम AI का इस्तेमाल हमेशा सही दिशा में ही करें।
0: बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर टेक्नोलॉजी इंसानियत से बड़ी हो जाए तो नुकसान भी हो सकता है, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम आगे बढ़ें लेकिन अपने संस्कार को, अपनी सोच को और अपनी संवेदनाओं को साथ लेकर।
1: दोस्तों भविष्य सिर्फ मशीनों का नहीं होगा, भविष्य तो उन लोगों का होगा जो टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी के बीच बैलेंस बनाना जानते होंगे।
0: तो दोस्तों बदलते समय से बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, खुद को उसके लिए लगातार तैयार करते रहिएगा, सीखते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा और हर नए बदलाव को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते रहिएगा। लेकिन AI के साथ एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, वो ये कि AI आपके लिए कविताएं लिख सकता है, आपके लिए जोक्स लिख सकता है, आपके दिए हुए किसी भी टास्क को पूरा कर सकता है, लेकिन AI कभी भी आपकी तरह किसी चीज़ को महसूस नहीं कर सकता। और एक युवा दिल की सबसे मजबूत चीज़ों में से एक प्रेम भी होता है, क्योंकि प्रेम एकमात्र

सी चीज़ है दोस्तों, जो इंसान को इंसान बनाती है। प्राणी मात्र के अंदर प्रेम के भाव फूंकने की, लगाव पैदा करने की जो क्षमता होती है वो सिर्फ प्रेम के अंदर होती है। तो आप यह यूज़ करें, आप अपने काम को ईजी बनाएं, लेकिन ध्यान रहे कि आपके अंदर मानवता के वो सारे गुण मौजूद रहें जो आपको एक इंसान बनाते हैं। इसलिए अपने आप को डेवलप करने के साथ साथ प्रेम भी जरूर करते रहिए, प्रेम से जुड़े रहिए, प्रेम की भावनाओं को फैलाते रहिए, अपने आसपास के माहौल को खूबसूरत और अच्छा बनाते रहिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: चीजें इतनी डाइवर्स हो गई ना दोस्तों कि लगातार इंसान को नए कंटेंट और नई चीज़ों के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जाना पड़ता है। और वैसे ही एक वेव ओटीटी हमने जो भी रिसेंटली आकाशवाणी यूनिट ऑफ प्रसार भारती ने एक वेव ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। वेरियस आप इसके ऊपर अलग अलग डिफरेंट स्टोरी स्ट्रीम से जुड़ी हुई चीज़ों को देख पाएंगे। जनरली जब भी आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो तो आप देखते हो उसमें भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिफरेंट एक्सपेक्ट्स डिफरेंट एरियाज से होकर के आते हैं। तो उनको कवर करने के कुछ बहुत सिंपल से तरीके हैं, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, वीकली मैगजीन्स, मंथली मैगजीन्स को आप जो जीके की है उसको परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इसके साथ साथ आप एक चीज़ और कर सकते हैं, वो ये कि जब हमारी और आपकी बातचीत होती है, आप रेडियो सुनते हैं, तो हम आपके लिए कुछ ऐसा लेकर के आए हैं जिससे आपके पास जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसके लिए भी आपके पास एक अच्छी खासी जो है नॉलेज आ जाए। तो उसके लिए हम आपके लिए लेकर के आते हैं एक क्विज सेगमेंट जिसमें हम आपसे पूछते हैं दो सवाल और उन सवालों के जवाब हम आपसे जानते हैं प्रोग्राम के एंड में। यानी कि हम अभी आपसे सवाल पूछेंगे, फिर हमारा प्रोग्राम चलेगा 5:55 तक, तब आपको उन सवालों के जवाब को खोज करके अपने पास कहीं पर लिख करके रख लेना है और फिर लास्ट में हमारे साथ मैच करना है। जैसे हमारा सेगमेंट का पहला सवाल आपसे आज का है,
3: स्पेस की दुनिया से इसरो और नासा ने मिलकर हाल ही में जो अपना सबसे एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है उसका क्या नाम है। मैं अपने प्रश्न को फिर से दोहराती हूँ, इसरो और नासा ने मिलकर हाल ही में जो अपना सबसे एडवांस्ड और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है उसका क्या नाम है।
2: और हमारा आज का दूसरा सवाल है, क्रिकेट के मैदान से हाल ही में खेले गए साल 2026 के आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की चैंपियनशिप ट्रॉफी किस देश की टीम ने उठाई है।
3: माधव तुम्हें पता है हर बार गर्मी की छुट्टियों में मुझे हमारे बचपन की गर्मी की छुट्टियां बहुत याद आती है। उस टाइम हम शाम होते ही घर से बाहर भाग जाते थे, पेड़ों की छांव, मिट्टी की खुशबू, चिड़ियों की आवाजों के बीच पूरा दिन कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता था।
2: ये बात हमने बहुत सच कही है पूजा। और दोस्तों मुझे ना आपको याद होगा कि बारिश शुरू होते ही वो जल्दी से दौड़ करके घर में जाना, देखना या तो कोई पुराना न्यूज़पेपर मिल जाए या कोई पुरानी कॉपी मिल जाए, उसका पेज फाड़ के जल्दी भी अगर खुद को बनानी होती तो ठीक है, हमने किसी बड़े से कागज की कश्ती बनाना और वो नाव चलाने का जो मजा था। आज आप हमें मनपसंद कोई भी चीज खरीद लीजिए, वो मजा लगभग खो ही गया है उस चीजों में।
3: यही नहीं माधव, पहले लोग मौसम को महसूस करते थे लेकिन अब सिर्फ वेदर अपडेट्स देख लेते हैं। पहले सुबह की शुरुआत चिड़ियों की आवाजों से होती थी और अब मोबाइल के अलार्म से होती है।
2: और शायद यही वजह है पूजा कि हम धीरे धीरे नेचर से दूर होते जा रहे हैं। वो हरियाली, वो साफ हवा, वो पेड़ों की ठंडी छांव जिनसे जिंदगी खूबसूरत लगती थी, आज लगभग ऐसे लग रहा है मुझे बहुत कम हो गई है। और आपने भी देखा होगा कम हो गई है।
3: बिल्कुल, और जब नेचर चुपचाप बदलने लगती है तब उसका असर हमारी जिंदगी पर भी दिखने लगता है। कभी तो इतनी गर्मी, कभी अचानक भारी बारिश, कभी सूखा, जैसे प्रकृति बार बार हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रही हो।
2: और शायद वो यही कह रही हो कि अगर धरती को खूबसूरत बनाए रखना है तो सिर्फ इंसानों का नहीं, हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधे और पूरी प्रकृति का ख्याल रखना होगा।
3: दोस्तों इसी सोच और प्रकृति की इसी खूबसूरत विविधता को समझाने के लिए हर साल आज ही के दिन यानी कि 22 मई

0: को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस।
1: बिल्कुल, और दोस्तों इस दिन की शुरुआत की गई थी संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इसका मेन मोटिव ये था लोगों को ये समझा पाना कि धरती पर मौजूद हर जीव और हर पौधा हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है,
0: क्योंकि अगर प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो उसका असर सिर्फ जंगलों तक नहीं सीमित रहता, उसका असर हमारी हवा, पानी, खेती, मौसम और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भर भी पड़ता है।
1: बहुत सही कहा है तुमने, क्या कहते हैं उसको। दोस्तों एक बात मुझे भी सडनली याद आ रही है कि पूजा रिसेंटली तुम्हें याद होगा बायोडाइवर्सिटी, एक भी महीने डेढ़ महीने पहले हमने बहुत इस टर्म को सुना था, क्योंकि जो गर्मी बढ़ रही थी इसका भी नेचर बताया था। जो एल नीनो इफेक्ट भी रिसेंटली हम लोग ईस्टर्न के अंदर देख रहे हैं कि एक्टिव हुआ है, इसके अंदर बहुत बड़ा कह सकता है कॉज रहा है बायोडाइवर्सिटी का, क्योंकि हम लोगों ने रिसेंट हमारी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है उनको इतना बढ़ा दिया कि बायोडाइवर्सिटी को बहुत आम हुआ है, और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें, अब गर्मी देखो कितनी ज़्यादा हो गई है। दोस्तों जो जैव विविधता का मतलब सिर्फ जंगल या जानवर नहीं है, इसमें वो सब कुछ आता है जो नेचर को जिंदा और संतुलित बनाए रखता है, छोटे से कीड़े से लेकर के बड़े जंगल तक, सबकी अपनी एक बहुत अहम भूमिका होती है।
0: अब माधव तुम अर्थवॉर्म्स या मधुमक्खियां ही देख लो, ये देखने में छोटे लगते हैं लेकिन खेती और पेड़ पौधों को बचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, अगर वो ना हो तो फसलों पर भी बहुत असर पड़ सकता है।
1: बिल्कुल, और यही कारण है पूजा कि आज दुनिया भर में जैव विविधता को बचाने की बात कही जा रही है, क्योंकि लगातार जंगल कट रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है और कई जगह जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं।
0: और माधव यही नहीं, मुझे तो ये लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंसान नेचर को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज समझने लगा है, जबकि सच ये है कि हम खुद नेचर पर डिपेंड है।
1: बिल्कुल, हमारी सांसें पेड़ों से जुड़ी है, पानी नदियों से जुड़ा है और खाना खेती से। अगर नेचर सुरक्षित नहीं रहेगा दोस्तों तो इंसान को हम ये माने कि वो सुरक्षित रह पाएगा ऐसी कल्पना व्यर्थ है।
0: तो माधव अब सवाल ये उठता है कि हम क्या कर सकते हैं।
1: हम ये कर सकते हैं दोस्तों कि बदलाव कर सकते हैं, और बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, जो पेड़ लगे हुए हैं उनको ना काटें, उनकी कटाई पर रोक लगा सकते हैं, पानी बचा सकते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, घर के बाहर कोई गाय जीव जंतु दिखे तो उसे उठाने की बजाय वहीं बैठा रहने दे सकते हैं, उनको परेशान करने की जो हमारी प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति पर हम रोक लगा सकते हैं, और जानवरों के प्रति संवेदनशील बन सकते हैं।
0: और इसके साथ साथ हम अपने आसपास के लोगों को भी नेचर के महत्व के बारे में जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि जब सोच बदलेगी तभी भविष्य बदलेगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि धरती पर सिर्फ हमारी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर हम जो बायोडाइवर्सिटी उसको मेंटेन रखें।
0: ये हमारी जिम्मेदारी इसलिए भी है कि आने वाली पीढ़ियाँ भी खुली हवा में सांस ले सके, बारिश की खुशबू महसूस कर सके और चिड़ियों की आवाज़ों के साथ सुबह का स्वागत कर सके।
1: बिल्कुल, तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि 22 मई के इस अवसर पर हम सिर्फ बातें ना करें बल्कि ऐसे स्टेप्स उठाएं जो कि इस दिशा में इन चीज़ों को सही करें, और गर्मियों के लिए अपनी छत के ऊपर पॉट्स के अंदर पानी भर करके भी रख सकते हैं पक्षियों के लिए।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान
1: जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक आइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़े आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: मैं ना पूजा तुम्हें एक बात बताऊं, बारिश का मौसम जो होता है भाई, सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये आप किसी भी राजस्थानी किसी भी मारवाड़ी को उठा करके पूछ लीजिए, उसको सबसे अच्छा मौसम अगर आप उसे पूछेंगे वो यही कहेगा कि बारिश का लगता है। उतना ही ना मुझे कहीं कहीं पर बारिश का मौसम अच्छा लगने के साथ साथ अजीब भी लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना भी अचानक से मन होता है कि गर्मा गर्म पकौड़े बनवा लें, चाय के साथ खाएं, लेकिन उसी के साथ कपड़ों के अंदर थोड़ी थोड़ी स्मेल भी आने लगती है। जो ब्रेड है, पकौड़े हैं या कोई चीज़ें जो कि हम जैसे सूखी रोटी हो गई, हम दो तीन दिन रखते हैं राजस्थान के अंदर, तो उनके ऊपर फफूंद आने लगती है, स्मेल आने लगती है, ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब होती है।
3: यही नहीं माधव, सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे तब आता है जब ब्रेड या का पैकेट खोलो और उस पर सफ़ेद हरी परत जमे मिले, और फिर मम्मी का वही डायलॉग, कितनी बार कहा है चीज़ें बाहर मत छोड़ा करो।
2: बिल्कुल, और पहले तो ऐसे लगता था कि ये जो इसके ऊपर पाउडर आ रहा है ये कोई बहुत ही बुरी सी चीज़ है, सूखली सी चीज़ है, लेकिन अब समझ में आता है कि इसके पीछे एक बहुत गहरा साइंस छुपा हुआ है। दोस्तों
3: नेचर की यही बात सबसे इंटरेस्टिंग लगती है। जिन चीज़ों को हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं ना, कई बार वही चीज़ें हमारे ज़िंदगी और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है।
2: बिल्कुल, अब आप ये देखिए बारिश के बारे में, भाई बारिश के मौसम में दीवारों पर, पुराने खाने पर या नमी वाली जगहों पर जो फफूंदी आपको दिखाई देती है, उसके पीछे नेचर का पूरा एक सिस्टम काम करता है।
3: इसीलिए दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं

0: ऐसे टॉपिक की जो सुनने में छोटा लगता है लेकिन साइंस और नेचर दोनों में बहुत खास जगह रखता है।
1: बिल्कुल,
0: वो है फंगस यानी कवक।
1: दोस्तों, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर फंगस होता क्या है, तो आसान भाषा में कहूँ तो फंगस ऐसे जीव होते हैं जो ना पूरी तरीके से पौधे होते हैं और ना ही जानवर, यानी कि ये एक इट्स अ लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड द प्लांट किंगडम।
0: और सबसे मजेदार बात ये है माधव कि फंगस हमें हर जगह मिल जाते हैं, मिट्टी में, हवा में, पुराने खाने पर, पेड़ों पर, यहाँ तक कि हमारे आसपास की हवा में भी इनके छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं।
1: बिल्कुल, और बारिश के मौसम में नमी में, जो नमी बढ़ने की वजह से ये बहुत तेजी से फैलते हैं, ब्रेड, अचार, रोटी पर बहुत जल्दी से फफूंद लगने लग जाती है।
0: लेकिन दोस्तों, फंगस सिर्फ चीजें खराब करने का काम नहीं करता, प्रकृति में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये सूखे पेड़ पौधे और मृत चीजों को गलाकर मिट्टी में मिला देते हैं जिससे मिट्टी उपजाऊ बन जाती है।
1: मतलब कि अगर फंगस ना हो तो नेचर में सूखे पत्तों और जिंदगी का ढेर लग जाए, क्योंकि चीजों को डीकंपोज करने का सबसे बड़ा काम यही करते हैं।
0: और साइंस की दुनिया में भी फंगस का योगदान बहुत बड़ा है। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन भी एक खास तरह के फंगस से ही बनाई गई थी।
1: यानी जिस फंगस को लोग सिर्फ एक बुरी चीज समझते हैं, वही इंसानों की जान बचाने वाली दवाइयों में भी इस्तेमाल करने वाली चीज है।
0: इसके साथ साथ माधव, ये ब्रेड, चीज और कई तरह के फूड्स बनाने में भी फंगस काम आता है।
1: लेकिन हाँ पूजा, हर फंगस फायदेमंद नहीं होता। कुछ फंगस इंसानों, जानवरों और पौधों में बीमारियां भी फैला सकते हैं।
0: जैसा कि माधव ने कहा, हर फंगस फायदेमंद नहीं होता है, इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने आसपास साफ सफाई रखें, नमी वाली जगहों को ड्राई रखें और खराब खाने से बचें।
1: बिल्कुल, और पूजा, नेचर की यही खासियत भी है कि यहाँ हर छोटी चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह और महत्व ज़रूर छिपा होता है।
0: और फंगस भी हमें यही सिखाता है कि जिन चीज़ों को हम मामूली समझते हैं, कई बार वही नेचर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है।
1: बहुत सही पूजा, लेकिन पूजा इसके पीछे ना मुझे ऐसा लगता है, चाहे बारिश या इस नमी की वजह से कितने ब्रेड के पैकेट खराब हो जाए, कितने ही कपड़ों से बदबू आने लग जाए, हम राजस्थानियों का बारिश के लिए जो प्यार है वो कभी भी कम नहीं होने वाला, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। और मैं तो कहता हूँ ख़त्म होना भी नहीं चाहिए, हमारे ऊपर तो भगवान की ऐसी कृपा है कि वैसे ही बारिश कम होती है। इतना पानी जो है हमारे मारवाड़ रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा, ग्राउंड वाटर की भी शॉर्टेज रहती है, तो बारिश के लिए हमारा जो प्यार है वो बहुत ज़रूरी है। गाँव में आप जाएंगे तो लोगों के मन में हर वक्त एक ही रहती है कि आसमान को देखे भाई, कब बरसे ये बादल, कब बरसे ये मेघ। तो ज़रूरी है कि आप जो है इन चीज़ों को एक प्रिकॉशन ज़रूर रखें कि आपके पास इन बारिश के मौसम के अंदर आपको इन्फेक्शन ना हो, कपड़ों में जो है बदबू ना आने लगे, माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना बढ़े। लेकिन इन सब की वजह से बारिश के आपके मन के अंदर ध्यान रखें, किसी भी मन मुटाव ना हो, क्योंकि वैसे ही हमारे यहाँ बारिश कम होती है।

0: मैं आकाशवाणी हूँ। 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना।
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।
1: तुझको आशिकी वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: माधव, अगर लाइफ में अपनी मर्जी ना हो, आज़ादी ना हो और इज्जत ना हो, तो वो जीना भी क्या जीना है?
1: ये बात तुमने बहुत सही कही पूजा। और वास्तव में हमें खुलकर जीने की ये जो गारंटी है, ये देता है हमारा संविधान। और हमारे संविधान का सबसे इंटरेस्टिंग और हमारा सबसे फेवरेट आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21, यानी कि दोस्तों राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार।
0: सुनने में थोड़ा भारी भरकम लीगल टर्म लगता है ना दोस्तों, लेकिन ये आर्टिकल हम युवाओं की लाइफ लाइन है। माधव, जरा आसान भाषा में डिकोड करना इसे।
1: दोस्तों, सिंपल अगर लैंग्वेज में इसे कहें तो अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी इंसान की जिंदगी सिर्फ जिंदा रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि इज्जत के साथ जीने की, राइट टू लिव विद डिग्निटी का इसका वास्तविक नाम है। और साथ साथ ये भी सुनिश्चित करता है कि सबसे जो ज़रूरी हमारे लिए है वो ये है कि हम हमारी इच्छाओं के मुताबिक और एक डिग्निटी के साथ लाइफ को जी सकें। और इसके साथ साथ एक मज़ेदार बात और है पूजा, पता है
0: क्या?
1: वो ये कि चैन की नींद सोने का हक, अपनी पसंद का लाइफ पार्टनर चुनने का हक, और तो और हमारी प्राइवेसी यानी कि निजता का जो अधिकार है, ये सब भी इसी अनुच्छेद 21 के अंदर आते हैं। मतलब कोई आपकी पर्सनल चैट या स्पेस में बिना वजह घुसपैठ बिल्कुल नहीं कर सकता।
0: क्या बात है माधव, मतलब अगर कोई पूछे कि तुम्हें ये हक किसने दिया, तो बेझिझक कहना है संविधान के आर्टिकल 21 ने। यहाँ तक कि साफ हवा में सांस लेने का और अच्छा पर्यावरण पाने का हक भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी में जोड़ दिया है।
1: बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ऐसा ब्रह्मास्त्र है, इमरजेंसी के सिचुएशन में भी ये सस्पेंड नहीं होता, आपसे आपका यह कोई नहीं छीन सकता। सुप्रीम कोर्ट तो इसे हमारे संविधान का, हम यूं कह लें कि सोल मानती है, दिल मानती है।
0: तो दोस्तों, अपने हक को पहचानिए, शांत से जिए और दूसरों को भी उनकी आज़ादी के साथ जीने दें, क्योंकि जब हमारा यूथ अपने हक और कानून को लेकर अवेयर होगा, तभी तो देश सही मायने में आगे बढ़ेगा।
1: बिल्कुल। और देश की जब जब आगे बढ़ने की बात आती है, तो हमारे सशस्त्र बलों को, पैरामेडिकल फोर्सेज को, आर्म्ड फोर्सेज को भूल नहीं सकते, क्योंकि इस देश को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान उन्हीं का। आइए कैलाश खेर की आवाज़ में सुनते हैं उनके लिए विशेष गीत।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: संगठना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: और ये जो गीत कैलाश खेर ने हमें समर्पित किया, इस देश की आर्म्ड फोर्सेस को समर्पित किया, ये वास्तव में जोश भर देने वाला था। और आर्म्ड फोर्सेस की बात ही कुछ ऐसी निराली है कि जब जब उनका नाम आता है तो जोश और सम्मान के साथ हमें चलने के लिए हम विवश हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सेनाएं है ही इतने पराक्रम के साथ विभूषित। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस योजना की जो सिर्फ कागजी डिग्री नहीं है बल्कि सीधे आपके हाथों में हुनर और शानदार भविष्य की चाबी भी थमा रही है।
4: बिल्कुल दोस्तों, बिना किसी देरी के आते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पर, पीएम सेतु योजना।
3: दोस्तों, सेतु यानी कि राम सेतु, जैसे राम सेतु में पीछे सेतु आता है, सेतु का अर्थ होता है एक ऐसा पुल जो हमारे युवाओं को सीधे नए जमाने के ग्लोबल जॉब मार्केट से जोड़ रहा है। दोस्तों, पीएम सेतु योजना के लिए जब इस सेतु का नाम आता है तो इसका अर्थ यह है कि ये आपके भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा रोड मैप तैयार कर रहा है। दोस्तों, सरकार ने पूरे 60,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के साथ इस योजना को मंजूरी दे दी है और इसके साथ साथ इसका असल मकसद जो है वो भी बहुत दमदार रहने वाला है।
4: दोस्तों, पीएम सेतु का पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्किलिंग और एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपडेट्स ITIs। आसान भाषा में कहें तो देश भर के 1000 सरकारी ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 5 NSTI का पूरी तरह से हाईटेक कायापलट होने वाला है।
3: तुम बहुत सही कह रही हो पूजा। और है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें गवर्नमेंट ला रही है, न्यू जो कह रहे हैं प्लानिंग्स लेकर के आ रही है, योजनाएं ला रही है, इन सब युवाओं को बहुत बेनिफिट हो रहा है। जैसे रिसेंटली अगर हम देखें तो अभी एक सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई, जैसे पीएम घर सूर्य घर योजना जो सोलर पैनल के लिए हमने बताई थी, और जैसे राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा चिरंजीवी योजना, ये सारी योजनाएं वास्तव में आम व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। दोस्तों, सबसे कमाल की बात इसके अंदर ये भी है कि इसमें हब एंड स्पोक मॉडल लागू किया जा रहा है, यानी कि 200 हब ITI बनाए जाएंगे जो स्मार्ट क्लासरूम और मॉडर्न लैब्स से लैस होंगे, और ये अपने आसपास के बाकी 800 स्पोक ITIs को नई तकनीक और ट्रेनिंग में सपोर्ट करेंगे।
4: और दोस्तों, एक बात और, अब पुराने सिलेबस का ज़माना चला गया, इस योजना के तहत अब नए सिलेबस आएंगे। इसके तहत 31 एकदम न्यू एज कोर्सेज शुरू किए गए हैं, चाहे एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या लॉजिस्टिक्स, आज की इंडस्ट्री को जो चाहिए आपको बिल्कुल वही सिखाया जाएगा।
3: बिल्कुल, और बहुत ज़रूरत है कि

0: चीज़ सीखें जिसकी मेनली ज़रूरत हो, क्योंकि अक्सर क्या होता है दोस्तों कि अगर हम वो हमारे एक माइंड की जो कैपेसिटी होती है दोस्तों लिमिटेड है, हम या तो दिमाग में वो चीज़ें रख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल ना हो, ऑल दो हमारे सिलेबस में वही चीज़ें हैं जो हमारे काम की है, ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा सिलेबस में इंक्लूड की भी नहीं गई, लेकिन फिर भी जैसे हम इधर उधर की फिजूल की बातों में ध्यान देते हैं या सोशल मीडिया के कारण डाइवर्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इनसे बचने के लिए भी ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो माइंड का स्पेस है वो लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड नहीं है, और इसीलिए जो ये स्कीम्स हैं ये इन सब चीज़ों को और ज़्यादा शार्प करने के लिए, आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा शार्प करने के लिए लेके आई जाती है, ताकि लोगों को और ज़्यादा इन चीज़ों के साथ जोड़ करके प्रशिक्षित किया जा सके।
1: यही नहीं माधव, अब रट्टा मार पढ़ाई नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और डिमांड ड्रिवन स्किल्स पर पूरा फोकस होगा। तो अगर आप भी विकसित भारत 2047 का हिस्सा बनना चाहते हैं दोस्तों, तो अपने स्किल्स को अपडेट करने का इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता है।
0: बिल्कुल, यानी कि जैसे ही आपकी इस योजना के बाद ट्रेनिंग खत्म होगी, आपकी जॉब रेडीनेस 100% पक्की हो जाएगी, क्योंकि इस बार सिर्फ सरकार जो है वो बड़ी इंडस्ट्रीज जो है उनको ही इसके साथ सम्मिलित नहीं कर रही, बल्कि अलग अलग सेक्टर्स के ओनर्स को भी आपके साथ जोड़ने का काम कर रही है। ये संस्थान अब गवर्नमेंट ओन्ड और इंडस्ट्री मैनेज्ड भी होंगे।
1: बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों अपने आसपास के आईटीआई में जाकर इस योजना की जानकारी

0: पढ़ाई नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और डिमांड ड्रिवन स्किल्स पर पूरा फोकस होगा। तो अगर आप भी विकसित भारत 2047 का हिस्सा बनना चाहते हैं दोस्तों, तो अपने स्किल्स को अपडेट करने का इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता है।
1: बिल्कुल, यानी कि जैसे ही आपकी इस योजना के बाद ट्रेनिंग खत्म होगी, आपकी जॉब रेडीनेस 100% पक्की हो जाएगी, क्योंकि इस बार सिर्फ सरकार जो है वो बड़ी इंडस्ट्रीज जो है उनको ही इसके साथ सम्मिलित नहीं कर रही, बल्कि अलग अलग सेक्टर्स के ओनर्स को भी आपके साथ जोड़ने का काम कर रही है। ये संस्थान अब गवर्नमेंट ओन्ड और इंडस्ट्री मैनेज्ड भी होंगे।
0: बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, अपने आसपास के आईटीआई में जाकर इस योजना की जानकारी जरूर लें और याद रखिए, हुनर है तो कद्र है।
1: और दोस्तों, हुनर की जब बात आती है तो युवाओं के मस्तिष्क के हुनर को कैसे भूला जा सकता है। हमने आपसे दो सवाल पूछे थे, मुझे उम्मीद है कि आपने दोनों सवालों के जवाबों को कोच करके रख लिया होगा।
0: तो आज का पहला सवाल, इसरो और नासा ने मिलकर हाल ही में जो अपना सबसे एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, उसका क्या नाम है, का सही जवाब है निसार।
1: और हमारे द्वारा पूछा गया आपसे दूसरा सवाल, उसका सही जो दूसरा सवाल था वो ये था, क्रिकेट के मैदान से हाल ही में खेले गए साल 2026 के ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की चैंपियन ट्रॉफी किस देश ने उठाई है, जिसका सही जवाब है भारत, यानी कि हमारे देश ने इसकी चैंपियंस ट्रॉफी को उठाया है। अगर आपके सवालों के जवाब सही थे तो आपको बहुत बहुत बधाई। एक बेहतरीन वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है SSC के द्वारा, जिसमें पोस्ट रहने वाली है ग्रेजुएशन लेवल वेरियस पोस्ट के लिए और डेट रहने वाली है 21st of May टू 22nd of June 2026। वेबसाइट की बात करें तो ssc.gov.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन रहेगा ऑनलाइन और वैकेंसीज रहेगी 12,256 के करीब। उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज कुछ नया जानने, कुछ नया सीखने का अवसर मिला होगा। बस अपने आसपास का ख्याल रखते रहिए और वनस्पतियों का जो है ख्याल रखते रहिए। मिलेंगे आपसे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना युववाणी कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। रात्रि 10 बजे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तां।

रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा सितार पर राग नंद कल्याण, कलाकार होंगे उस्ताद रईस खां। लोक संगीत का रसास्वादन आप कर सकेंगे रात्रि 8:30 पर।

महत्व, सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्परिणाम, उष्ट्र संरक्षण योजना राजस्थान और हमारी जनगणना हमारा विकास विषयों पर, साथ ही इनके ग्रामीण भाई सुनेंगे लोक संगीत।

ग्रामीण भाई अपना ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुनेंगे संध्या 7 बजे। आज के इस कार्यक्रम में चर्चाएं होंगी फसल चक्र का।

फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे संध्या 6:05 पर। कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से। अलावा इसके फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे रात्रि 8 बजे, रात 9:15 पर और रात्रि 9:30 पर पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम के अंतर्गत।

हम आपको एक बार फिर से याद दिलवा दें, रात्रि 10 बजे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तान।

ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला में वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद ये पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन देर भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में

0: ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरीबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। ये पोस्टमार्टम एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के CBSE के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में रात का मौसम गर्म रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM के 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। और आज के इस फिल्म संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं किसी एक फिल्म से गीत। आज के इस फिल्म संगीत कार्यक्रम में, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मैंने प्यार किया के गीत।

ये था कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म मैंने प्यार किया से। आवाजें थी लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की, गीत रचना देव कोहली की और संगीत रचना राम लक्ष्मण की। और ये है फिल्म मैंने प्यार किया का अगला गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। और आज के इस कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं एक ही फिल्म मैंने प्यार किए के गीत।

ये है मैंने प्यार किया फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत रचना राम लक्ष्मण की।

0: श्रोताओं, आज संगीतकार जोड़ी राम लक्ष्मण के विजय पाटिल की पुण्यतिथि है।
1: बदलिया है सोच समझ के ये सौदा किया है मैंने, ओ मैंने।

लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में ये था मैंने प्यार किया फिल्म का शीर्षक गीत। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं मैंने प्यार किया फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। गीत रचना असद भोपाली की है और संगीत रचना राम लक्ष्मण की।

और ये है मैंने प्यार किया फिल्म का ये आखिरी गीत और इस कार्यक्रम का आखिरी गीत लता मंगेशकर की आवाज में। असद भोपाली के बोल हैं और राम लक्ष्मण का संगीत

तो दोस्तों ये था फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए फिल्म मैंने प्यार किया का कुछ फिल्मी गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में गाई फिल्म मैंने प्यार किया के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अब आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर जिले की चिट्ठी और तत्पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू की जाएगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के निर्देश दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पिछले 12 साल में राजस्थान में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर देश और प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। जयपुर में होने वाले रोजगार मेले में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल होंगे। वहीं अजमेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर कॉन्सेप्ट के तहत बीएसएफ की सुरक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी को शामिल कर अगले एक

0: वर्ष के भीतर अभेद्य सीमा सुरक्षा ढांचा विकसित करने की दिशा में काम चल रहा है।
1: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन रडार आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियनों और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब ये सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने इन चुनावों को दिसंबर तक स्थगित करने के सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया है। अदालत के आदेश पर पहले राज्य सरकार को चुनाव करवाने के लिए 15 अप्रैल तक का समय दिया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। नगरीय विकास मंत्री झाबरमल खल्ला ने न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दूसरी ओर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। एक वक्तव्य में श्री जूली ने कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग ने प्रदेश की 3 सीट सहित 10 राज्यों की 24 सीटों के लिए राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन 24 सदस्यों का कार्यकाल जून और जुलाई में समाप्त हो रहा है। इनमें राजस्थान से चुने गए राज्यसभा के 3 सदस्य नीरज डांगी, राजेंद्र गहलोत और रवनीत सिंह का कार्यकाल 21 जून को पूरा हो जाएगा। इन चुनावों के लिए अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी। नामांकन 8 जून तक भरे जाएंगे। वहीं 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 11 जून तक नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 18 तारीख को होगा और उसी दिन शाम को मतगणना होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की मंत्री बैठक चल रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। अब से कुछ देर बाद राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देंगे। करीब 3 महीने बाद हुई मंत्रिमंडल की इस बैठक को कई मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 12 साल में राजस्थान में रेल की आधारभूत संरचना का काम तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई स्टेशनों को नया और भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। श्री वैष्णव आज जालौर में भुज बरेली एक्सप्रेस रेल सेवा के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले राजस्थान में रेल सेवाओं के विकास के लिए हर वर्ष 500 से 600 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन अब 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इससे राज्य में कई रेल परियोजनाओं का तेजी से काम चल रहा है।
2: राजस्थान में तो काम की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे काम हाथ में लिए हैं और आज उसके कारण 85 स्टेशन बन रहे हैं 4,600 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से और 15 स्टेशन का काम पूरा हो गया है। आगरा बांदीकुई की डबलिंग चल रही है 150 किलोमीटर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ की डबलिंग चल रही है 178 किलोमीटर, बीकानेर से लालगढ़ डबलिंग 11 किलोमीटर, देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा ये मारवाड़ जंक्शन को मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाली मीटर गेज की जो लाइन थी दोनों ब्रॉड गेज लाइन से पूरी तरह से कनेक्ट होंगे। वैसे ही उमरा से देवारी की डबलिंग, लूनी से भीनड़ी की डबलिंग आप देख ही रहे कितना तेजी से काम चल रहा है।
0: श्री वैष्णव ने भुज बरेली एक्सप्रेस रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन भीलड़ी, जालौर, लूनी और जयपुर होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। इससे जालौर वासियों को पहली बार दिल्ली तक के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिल सकेगी। श्री वैष्णव अब से कुछ देर बाद पाली पहुंचकर रेलवे स्टेशन पर हो रहे विकास कार्यों का

0: जायजा लेंगे। इससे पहले रेल मंत्री ने आज सुबह जोधपुर स्टेशन से 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिल्ली कैंट के लिए रवाना किया। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन पहले 8 डिब्बों के साथ संचालित हो रही थी। रेल मंत्री ने जैसलमेर स्टेशन पर नए बने कोच केयर कॉम्प्लेक्स का भी वीसी के माध्यम से शुभारंभ किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने समृद्ध जैव विविधता को सतत विकास की अनगिनत चुनौतियों का समाधान बताया। उन्होंने कहा कि प्रकृति के प्रति मनुष्य के मन में कृतज्ञता का भाव होना जरूरी है।
1: बायोडायवर्सिटी डे बनाने का अर्थ ये है कि हम किसी भी स्पीशीज को नष्ट न होने दें, सबके एग्जिस्टेंस के साथ बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के साथ सभी प्रजातियों की संख्या को समाप्त न करते हुए उनके सामाजिक व्यवहार, पारिस्थितिक ज्ञान और सामुदायिक संरचनाओं के संरक्षण का काम करें। इस विकास क्रम में एक अगर स्पीशीज, एक फ्लोरा अगर एक समाप्त होगा तो ये हजारों साल का, सदियों का विकसित किया हुआ एक ज्ञान तंत्र, एक सूचना तंत्र भी समाप्त है।
0: जैव विविधता दिवस पर प्रदेश में भी विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो कोटा की ओर से विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई, साथ ही उन्हें जैव विविधता संरक्षण के महत्व के बारे में बताया गया। हनुमानगढ़ के टिब्बी में सरकारी स्कूल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान पौधे रोपे गए और पक्षियों के लिए परिंडे बांधे गए। पाली में भी पर्यावरण संरक्षण शपथ, पौधरोपण और जल संरक्षण सहित कई कार्यक्रम आयोजित हुए। देश भर में 1 अप्रैल से लागू हुए आयकर कानून को लेकर शुरू किए गए देशव्यापी जनजागरूकता अभियान प्रारंभ के तहत आज जयपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद कर नए कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी, साथ ही विभाग की ओर से लाए गए विभिन्न टूल्स के बारे में बताया। मीडिया से बात करते हुए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त सुमित कुमार ने बताया कि नया आयकर अधिनियम छोटा और सुगम है, जिसमें पुरानी सभी परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया गया है।
2: ये नया अधिनियम जो है ये पुरानी की तुलना में बहुत ही सरल है, छोटा है, जिसको समझना आम जनता के लिए भी आसान होगा। चीजों को आसान बनाने के लिए कई टूल्स भी लाए हैं, जिसमें कि चैट बॉक्स और FAQ हैं, जिनको हम कर सेतु बोलते हैं FAQ को, और चैट बॉक्स का नाम कर साथी है। नए कानून में कोशिश की गई है कर को समझाने की भाषा सरल और सहज हो।
0: राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान के तहत प्रदेश में 14 वर्ष तक की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव का निशुल्क टीका लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में डीग में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रही है, साथ ही स्कूलों में जाकर टीके लगाए जा रहे हैं। डीग जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि ये वैक्सीन बालिकाओं के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। ये भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम करने में सहायक है।
3: जो HPV वैक्सीन है, बच्चियों को बाद में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए, उनके प्रिवेंशन के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए इसको केवल बच्चियों को दिया जा रहा है, जो एडोलेसेंट एज की जो बच्चियां हैं उन्हीं को ये टीका लगाया जा रहा है। पहले ये टीका काफी महंगा आता था, जो लोग अफोर्ड कर सकते थे वो लोग ही इस टीके को लगवा पाते थे। तो सरकार ने इस टीके को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल निःशुल्क सबके लिए इसको उपलब्ध कराया है, जो कि बहुत अच्छी पहल है हमारे सरकार के द्वारा।
0: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आगामी 31 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। बच्चों द्वारा बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला और साहित्य तथा विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में प्रेरणादायक कामों के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके लिए 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू की जाएगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के निर्देश दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पिछले 12 साल में राजस्थान में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर

तेजी से विकास हुआ और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर देश और प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से डीग जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आरजू शर्मा ने तैयार किया है। डीग जिले की चिट्ठी में हम आपको बताएंगे विकास कार्यों, एचपीवी टीकाकरण, नशा मुक्ति जागरूकता गतिविधियां और आत्मरक्षा प्रशिक्षण के बारे में। साथ ही होगी बात ग्राम कृषि महोत्सव और हीटवेव की दौर की। किंतु चिट्ठी की शुरुआत ब्रज की ऐतिहासिक 84 कोसी परिक्रमा के साथ। जिले में इन दिनों श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना हुआ है। अधिक मास की शुरुआत के साथ ही 84 कोसी परिक्रमा विधिवत रूप से शुरू हो गई है। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर इस पवित्र यात्रा में शामिल हो रहे हैं। प्रशासन और विभिन्न धार्मिक संगठनों की ओर से भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई तैयारियां की गई हैं। डीग जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने बताया कि परिक्रमार्थियों के लिए प्रमुख पड़ाव स्थलों पर सहायता केंद्र बनाए गए हैं। वहीं कई सरकारी विद्यालयों को अस्थायी आश्रय स्थलों के रूप में विकसित किया गया है। डीग पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ ने बताया कि परिक्रमा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। जिले को करीब 24 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं की सौगात मिली है। राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया है। जल संसाधन मंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पिछले दिनों परमदरा गांव में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी उनके साथ रहे। किसानों की सुविधा के लिए ककड़ा चैनल के जीर्णोद्धार और गुड़गांव कैनाल सिंचाई परियोजना के तहत टेल डिस्ट्रीब्यूटरी और इसकी माइनर्स के पुनरुद्धार कार्यों को पूरा कर इसे जनता को समर्पित किया गया। इसके अलावा डीग डिस्ट्रीब्यूटरी की दीदावली, परमदरा और डीग सब माइनर के जीर्णोद्धार कार्य का भी शिलान्यास किया गया। डीग जिले को पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना से जोड़ दिया गया है। इससे इन नदियों का पानी आने वाले समय में मिलेगा। गृह राज्य मंत्री श्री बेढम ने बताया कि पेयजल संकट के समाधान के लिए हर घर नल योजना के तहत अगले 2-3 महीनों में लगभग 40% काम पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे एचपीवी टीकाकरण अभियान में डीग जिले ने राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। जिले को 13,855 बालिकाओं के वैक्सीनेशन का लक्ष्य दिया गया था। इसमें से 10,000 से अधिक बालिकाओं को एचपीवी टीका लगाया जा चुका है। 72% से अधिक टीकाकरण कवरेज के साथ डीग प्रदेश में पहले स्थान पर है। 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान के तहत जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में ब्लड प्रेशर, शुगर, एनीमिया सहित अन्य जांचें भी की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंघल ने बताया कि जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य रक्षा के साथ ही जिले में लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्हें वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने और तेज गति से वाहन नहीं चलाने के बारे में भी सचेत किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने जिले में साइबर सुरक्षा, सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति रोकथाम के लिए विशेष कैलेंडर जारी किया है। इसके तहत हर महीने के पहले शनिवार को विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के बारे में बताया जाएगा। वहीं दूसरे शनिवार को नशे की लत से बचाव के लिए नशे से होने वाले गंभीर नुकसानों के प्रति सचेत किया जाएगा। तीसरे शनिवार को साइबर अपराधों की रोकथाम और सुरक्षा उपायों के बारे में सतर्क किया जाएगा। पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की ओर से इन दिनों महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्कूल, कॉलेजों और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिसकर्मी लगातार गश्त कर रही हैं। पिछले दिनों कुम्हेर के कृषि विज्ञान केंद्र में ग्राम कृषि महोत्सव रखा गया। इसमें जिले भर से महिला और पुरुष किसानों ने भाग लिया। इस दौरान किसानों को नई कृषि तकनीक, मृदा स्वास्थ्य, संतुलित उर्वरक उपयोग संबंधी जानकारी दी गई। जिले में इन दिनों प्रचंड गर्मी और हीट वेव का असर है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से चिकित्सा संस्थानों में लू और तापघात के मरीजों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही डीग जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल रखा जावन वाला 19वां रोजगार मेला माए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए 51,000 बत्ता नौजवाना ने नौकरी लागण रा कागजात सू पहला। देश री सरहद री हिफाजत और मजबूत अर करडीकरण सारू स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करी जावेला। राजस्थान हाईकोर्ट आज सरकार और चुनाव आयोग ने पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय रा चुनाव 31 जुलाई 2026 ताई करावन रा हुकम दीना। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहो लाडला 12 साल माए राजस्थान माए रेलों जुड़िया बुनियादी ढांचा रो तेज विकास भयो। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस रे मौके देश और प्रदेश माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल देश माए 47 ठोड़ा राख्या जावन वाला 19वां रोजगार मेला माए वीडियो कॉन्फ्रेंस रे मार्फत 51,000 बत्ता नौजवाना ने नौकरी लागण रा कागजात सू पहला। श्री मोदी रो ई मौके मौजूद लोगों ने संबोधित करण रो ये कार्यक्रम है। नुआ चुनीचिया कर्मचारी रेल गृह और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग समेत केंद्र सरकार रा न्यारा न्यारा मंत्रालय और विभाग माए कामकाज संभालेला। जयपुर माए राख्या जावन वाला रोजगार मेला माए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल फैला। अजमेर माए फेवन वाला कार्यक्रम माए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी शामिल फैला। देश री सरहद री हिफाजत और मजबूत और करड़ीकरण सारू स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करी जावेला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली माए आज सीमा सुरक्षा बल BSF रा अलंकरण समारोह माए आ जानकारी दीनी। वे कहो कि ई परियोजना माए ड्रोन रडार कैमरा और दूजा तकनीकी साधन शामिल फैला। गृहमंत्री कहो कि स्मार्ट बॉर्डर री सोच रातेत BSF री सुरक्षा प्रणाली माए प्रौद्योगिकी न शामिल कर आवता एक साल माए नी भेदियो जा सकबा वालो सीमा सुरक्षा ढांचो विकसित करण सारू काम चाल रियो है।
1: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन रडार आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आए।
0: गृह मंत्री कहो कि BSF साल 1965 में 25 बटालियन और सीमित साधना सागे काम शुरू कीनो हो। शाह कहो कि BSF अब 2,70,000 कर्मचारियों री मोटी तादाद सागे सरहद री हिफाजत करन वालो दुनिया रो सब मोटो बल बन गयो है। राजस्थान हाईकोर्ट आज सरकार और चुनाव आयोग ने पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों रा चुनाव 31 जुलाई 2026 ताई करावन रा हुकम दीना है। अदालत ए चुनाव इस साल दिसंबर महीना ताई टाल देवन रे सरकार री अर्जी खारिज कर दीनी। हाईकोर्ट रा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SP शर्मा री सदारत वाली खंडपीठ चुनाव प्रक्रिया ने आसान बनावन सारू अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 20 जून ताई रपट पेश करन रा हुकम दीना। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा अदालत रा फैसला माथे कहो कि सरकार चुनाव करावन सारू तैयार है। दूजिकानी विधानसभा में विपक्षा नेता टीकाराम जूली हाईकोर्ट रा फैसला रो स्वागत कीनो। वह राज्य सरकार माथे सोच समझ हर चुनाव टाळबारी कोशिश रो आरोप मांडियो। चुनाव आयोग राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव रा कार्यक्रम रो ऐलान कर दिनो है। कार्यक्रम रे मुजब चुनाव री अधिसूचना 1 जून 2026 न जारी करी जावेला। पर्चा 8 जून ताई भरिया जा सकेला और 11 जून ताई नाम पाछा लिया जा सकेला। 18 जून न वोट पड़ेला और वाई दिन

जाने पोर वोटाने गिनती करी जावेला। वो चुनाव प्रदेश री तीन सीटां समेत 10 राज्यां री 24 सीटां सारु करायो जावेला। आ 24 सदस्यां रो कार्यकाल जून जुलाई 2026 माय पूरो भै जावेला। राजस्थान नु चुनी जिया तीन सदस्यां नीरज डांगी, राजेंद्र गहलोत और रवनीत सिंह रो कार्यकाल 21 जून 2026 ने पूरो भै रियो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा री सदारत में आज राज्य मंत्रिमंडल री मीटिंग राखी ची। अब थोड़ी देर पछे राज्य मंत्रिमंडल रा सदस्य मीटिंग में करी जिया फैसला री जानकारी देवेला। करीब तीन महीना पाछे भी मंत्रिमंडल री आ मीटिंग खास मानी जा रही है। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहो है कि लाडला 12 साल माए राजस्थान माए रेलाओं जुड़ियो बुनियादी ढांचो तेजी विकसित करी चियो है। श्री वैष्णव आज जालौर माए भुज बरेली एक्सप्रेस रेल सेवारी सर्वात्र मौके राखी जिया जलसा माए बोल रहा है। वह कहो कि पहली

0: पूरज मेरू सुन रहा हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहो है कि लाडला 12 साल माए राजस्थान माए रेलाओं जुड़ियो बुनियादी ढांचो तेजी विकसित करी चियो है। श्री वैष्णव आज जालौर माए भुज बरेली एक्सप्रेस रेल सेवा री शुरुआत रे मौके राखी जिया जलसा माए बोल रहा है। वह कहो कि पहली राजस्थान माए रेलां रा विकास सरू हर साल 500-600 करोड़ रुपया मिलता है, जबकि अब हर साल 10,000 करोड़ रुपया खर्च कराया जा रहा है।
1: राजस्थान में तो काम की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे काम हाथ में लिए हैं और आज उसके कारण 85 स्टेशन बन रहे हैं 4,600 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से और 15 स्टेशन का काम पूरा हो गया है। आगरा बांदीकुई की डबलिंग चल रही है 150 किलोमीटर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ की डबलिंग चल रही है 178 किलोमीटर, बीकानेर से लालगढ़ डबलिंग 11 किलोमीटर, देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा ये मारवाड़ जंक्शन को मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाली मीटर गेज की जो लाइन थी दोनों ब्रॉड गेज लाइन से पूरी तरह से कनेक्ट होंगे। वैसे ही उमरा से देवारी की डबलिंग, लूनी से भीनड़ी की डबलिंग आप देख ही रहे कितना तेजी से काम चल रहा है।
0: श्री वैष्णव भुज बरेली एक्सप्रेस गाड़ी ने हरी झंडी बता रवाना कीनी। आगाड़ी भीलड़ी जालौर लूणी और जयपुर वेती दिल्ली पुगेला। इनू जालौर री जनता ने पहली दफा दिल्ली ताई सीधा संपर्क रो सुबितो मिल सकेला। श्री वैष्णव रो अबू थोड़ी देर पछे पाली माए रेलवे स्टेशन माथे कराया जा रहा विकास रा कामा रो जायजो लेवन रो कार्यक्रम है। इनू पहली रेल मंत्री आज समारे जोधपुर स्टेशन नु 20 डिब्बा वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी दिल्ली कैंट स्टेशन सारू रवाना कीनी। पहली ई गाड़ी माए 8 डिब्बा हा। रेल मंत्री जैसलमेर स्टेशन माथे नुआ बनाई जिया कोच केयर कॉम्प्लेक्स रोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे मार्फत उद्घाटन कीनो। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जनताओं सगला प्राणियां सारू भेड़ो भविष्य बनावण माए मदद करण रे अरज कीनी है। वे आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस रे मौके मध्य प्रदेश रा भोपाल माए राखी जिया कार्यक्रम माए बोल रहा हा। यादव कहो कि कुदरत रा प्रति इंसान रा मन माए कृतज्ञता रो भाव वे उणो चाहिए।
2: बायोडायवर्सिटी डे बनाने का अर्थ ये है कि हम किसी भी स्पीशीज को नष्ट न होने दे, सबके एग्जिस्टेंस के साथ बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के साथ सभी प्रजातियों की संख्या को समाप्त न करते हुए उनके सामाजिक व्यवहार, पारिस्थितिक ज्ञान और सामुदायिक संरचनाओं के संरक्षण का काम करें। इस विकास क्रम में एक अगर स्पीशीज, एक फ्लोरा अगर एक समाप्त होगा तो ये हजारों साल का, सदियों का विकसित किया हुआ एक ज्ञान तंत्र, एक सूचना तंत्र भी समाप्त है।
0: जैव विविधता दिवस रे मौके प्रदेश में आई न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी जिया। केंद्रीय संचार ब्यूरो कोटारी ओरों एक कॉलेज में विद्यार्थियां सारू सवाल जवाब री होड़ राखी जी और जैव विविधता ने बचावन रा महत्व रे बारा माए जानकारी दीरी जी। हनुमानगढ़ जिला रा टिब्बी री सरकारी स्कूल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम राखी जियो। ये मौके पौधा रोपी जिया और परिंदा सारू परिंडा बांधी जिया। पाली माए पर्यावरण ने बचावन री सौगन लेवन, पौधा रोपण और पानी बचावन जुड़िया कई कार्यक्रम राखी जिया। 1 अप्रैल 2026 लागू करी जिया नुआ आयकर कानून रे बारा माए जाग जगावन सारू चलाई जिया अभियान। प्रारंभ रातेत आज जयपुर माए खास कार्यक्रम राखी जियो। कार्यक्रम में इनकम टैक्स महकमा रा आला अहलकार न्यारा न्यारा हितधारक सागे बातचीत कर नुआ कानून रे बारा माए विगतवार जानकारी दीनी। कार्यक्रम में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वकील और उद्योग जगत रा नुमाइंदा शिरकत कीनी और सुझाव दीना। खबर नवीसा सागे बातचीत करता था राज्य रा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त सुमित कुमार बतायो कि 1 अप्रैल नु लागू करी जियो नुआ इनकम टैक्स कानून नानो और आसान है।
3: ये नया अधिनियम जो है ये पुराने की तुलना में बहुत ही सरल है, छोटा है, जिसको समझना आम जनता के लिए भी आसान होगा। चीजों को आसान बनाने के लिए कई टूल्स भी लाए हैं जिसमें कि चैट बॉक्स और FAQ हैं, जिनको हम कर सेतु बोलते हैं FAQ को, और चैट बॉक्स का नाम कर साथी है। नए कानून में कोशिश की गई है कर को समझाने की भाषा सरल और सहज हो।
0: टाबरिया ने बच्चा दानी रा कैंसर री बीमारियों बचावन सारू HPV टीका लगावन रा अभियान रा तेत डीग माए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री टीमा गावा माए जार इंबाबत जाग जगा रही है। जिलारी स्कूला माए टाबरिया रे HPV टीका लगाया जा

0: ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਗਰਾ ਮੁੱਖ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਬਤਾਇਓ ਕਿ ਓ ਟੀ ਕੋ ਟਾਵਰੀਆਂ ਸਾਰੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਰੋ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੈ।
1: ਜੋ ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕੋ ਬਾਅਦ ਮੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਸੇ ਬਚਾਵ ਕੇ ਲੀਏ ਉਨਕੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। इसलिए इसको केवल बच्चियों को दिया जा रहा है, जो एडोलेसेंट एज की जो बच्चियां हैं उन्हीं को ये टीका लगाया जा रहा है। पहले ये टीका काफी महंगा आता था, जो लोग अफोर्ड कर सकते थे जो लोग वो लोग ही इस टीके को लगवा पाते थे। तो सरकार ने इस टीके को फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल निःशुल्क सबके लिए इसको उपलब्ध कराया है, जो कि बहुत अच्छी पहल है हमारे सरकार के द्वारा।
0: आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल रखा जावन वाला 19वां रोजगार मेला में वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए 51,000 रूबत्ता नौजवानों ने नौकरी लागन रा कागजात सौंपेला। देश री सरहद री हिफाजत और मजबूत और करडीकरण सारू स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करी जावेला। राजस्थान हाईकोर्ट आज सरकार और चुनाव आयोग ने पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय रा चुनाव 31 जुलाई तय करावन रा हुक्म दीना। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहो लारला 12 साल माए राजस्थान माए रेलाओं जुड़िया बुनियादी ढांचा रो तेजियों विकास फियो। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस रे मौके देश और प्रदेश माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 7 बजे हैं। अब ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना ग्रामीण जगत कार्यक्रम।

0: अदल बदल नहीं करानी तो खेत ने वे नुकसान।
1: सर तो भाई लोभ लई मतलब गेहूं गेहूं बो लेकिन बीरी पड़ोस बदल दो जिग्या बदल दो
0: बीरी जी की है नी
1: टाणी कल खेत में जे गेहूं बोई है तो अगले साल भी मचीना बो दो बाजरो बो दो तो वही फसल चक्कर है
0: वही फसल चक्कर है कि अलग अलग मौसम महीने भगत सारू का है कि अलग अलग तरह की फसल लेनी है और एक ही साल में आप फसल बोवा तो जमीनी ताकत जी के नहीं क्या करे कि एक जिसी लेवा तो जमीनी ताकत घट जाया करे कीट रोग और भी जी की फसल लड़ने की क्षमता है नी वह भी कम हो जाया करे उत्पादन मत है प्रति बीघा जी को उपज बा कम हो जाया करे
1: एक जिसी चीज
0: तो भाई अपने कहे पुराने जमाने में भी किसान आप अनुभव अनुसार अलग अलग फसल लिया करता है फसल चक्कर जिको नाम नहीं हो तो कहीं है पर अदल बदल खेती करया करता, करता और आज वैज्ञानिक जी को है अपने चीज ने कह रिया है तो ये फायदो है कि भाई जमीन री की उर्वरा शक्ति है नी बनोड़ी रहे। दूसरो फायदो है कि कीट और रोगा से बचा होया करे कि हर फसल रा जिका है नी अलग अलग तरह का कीट और रोग होया करे और किसान कही है कि हर बार एक ही एक फसल उगावे तो वह फसल का कीट जी कहनी खेत में स्थायी रूप में
1: जम जाए। एक बात मन नहीं सत्तू भाई याद आएगी अपन जो को खेत हड़ियो करा यानी अभी काले उनाड़ा में कोई भाई जाहिर हुड़ करे हुड़ करन हड़ियो करन खेत बावे जने निंदाण करे खरपतवार मिटाने खातर कहवे की खरपतवार नियंत्रण माथे भी फसल चक्कर रो खासा फर्क पड़े।
0: सही बात के भी
1: जे मान लो बाजरी घागे उगण आला घास अपन ठाए अगले साल बे उगण खातर तैयार हुए बण अपन तो फसल बदल दी
0: जने
1: बांगो तो पापो
0: कट गयो। और एक और फायदा है की अपने राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में पानी की घनी
1: कमी
0: किल्लत रिया करे तो फसल चक्र अपना पानी रो सही उपयोग भी होया करे भाई कई फसल ऐसी है जिके में कहें सिंचाई की जरूरत कम पड़िया करे तो अपा बीसी फसल भी ले सका हा। तो बात आ है कि अपने
1: मन एक बात और समझ में आ गई
0: हाँ
1: भाई फसल चक्र सागे सागे थे अब वो तो बगत है कोनी के खेत में पानी उखाड़ो आयो और आप पानी छोड़ दियो अब तो बात होगी बूंद बूंद सिंचाई फुहारा पद्धति डिगी बना लो पानी बेड़ो कर लो खाड़ो आयो है तो फूटरी बात है पर पानी ने संचय राखर अब लाइट की भी जरूरत कोनी वो के आ गयो एक दूसरे
0: सोलर
1: आ गयो सोलर उन थे पंप चला सको और सिंचाई ले सको गणक रो भगवान करे कि जमन हुए
0: सही बात
1: जमन हुई जन मन हुई राजी मन राजी हुई जन जी करी गीत संगीत सुनने रो
0: सही बात
1: तो है बाजे में तो अपन हम ही बैठा है कौन
0: देखो
1: चंद्रशेखर भाई
0: हाँ
1: जो एक फूट रो सो गीत
0: आवन दो
1: लो सुनो

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: बोल बोल के थक गया।
3: क्या हुआ?
2: नया किडबैक चाहिए।
3: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले, आ गया नया किडबैक।
4: RBI कहता है,
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु परिवर्तन हमें कैसे प्रभावित करता है? यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन मानव जीवन के लिए एक खतरा है, क्योंकि यह ताजा पानी कम करता है, भोजन की सप्लाई में रुकावट डालता है और वायु की क्वालिटी को खराब करता है। इसका असर खासकर गरीब लोगों पर पड़ता है। यह जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचाता है और लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल देता है। गर्मी की लहर, बाढ़ और सूखा जैसे मौसम अब बार बार हो रहे हैं, जिससे लोगों को नुकसान होता है और उन्हें अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। जलवायु परिवर्तन तटवर्ती और बाढ़ प्रभावित इलाकों से पलायन का बढ़ावा दे सकता है। कुछ क्षेत्रों को थोड़े समय के लिए लाभ हो सकता है, लेकिन

0: अधिकतर को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह एक चौंकाने वाली बात है। करीब 10 लाख पौधे और जानवरों की प्रजातियां विलुप्त होने के किनारे पर हैं, और कई तो अगले कुछ दशकों में ही गायब हो सकती हैं।
1: देखो सत्यनारायण भाई, बात संदेश में खास अलान ठीक है दी कि आपा जक कुदरत ने प्रकृति ने नुकसान करा है, बिंगे लारे कई कारण है। आज जिया आपने ठा वेला कि आज रे दिन आपा और अपनी लोक कल्याणकारी सरकार जैव विविधता दिवस मनावे। जैव विविधता मतलब है कि अपनी इन धरती माथे जीव जिंदावरा री, पेड़ पौधा री, न्यारी न्यारी, बांत बांतरी प्रजातियां होनी चाहिए। अपन कठी नहीं लागे कि लागे नहीं कहीं लागे ही है कि आप प्रकृति ने कुदरत ने अपने जका
2: सब एक दूसरे से जुड़ रहा है, सब एक दूसरे वजों फायदे में भी रहे,
1: फायदे में रहे। पर आपने स्वार्थ खातर आप जंगल ने, जमीन ने और जीव जिंदावरा ने आपने स्वार्थ खातर नुकसान पहुंचाए। अब बात चौकी तो कोनी,
2: बिल्कुल चौकी कोनी।
1: बडेरा के करता कि आपने जका बर्तन होता, आपने जकी चीजा होती वे माटी री बनोड़ी होती, माटी मिल जाती री, माटी माटी नुकसान कोन
2: के के जीता प्रकृति री नजदीक रेवा बिता भी जुड़ रेवा बिता ही फायदे में रेवा। प्रकृति रे सागे खिलवाड़ जी को है हमेशा नुकसान करे,
1: नुकसान
2: आपरो प्रकोप
1: बतावे बतावे
2: बतावे, चाहे बाढ़ होवे चाहे सूखो होवे, किसी न किसी रूप में
1: ते भूल गया के लारे एक चमत्कार बतायो मन तो नाम ही को ले जन के लोग को जो नाम है को कहीं बीमारी है नहीं बा।
2: हाँ।
1: प्रकृति रो कहरी तो एक तरह
2: तो और बचने रो जो को काम है नी वो आपा कर सका, समझदारी दिखा सका। कई चीजें ऐसी है जिका अपनी दिनचर्या में हटा दा या भी उपयोग कम कर दा नी तो आपा नुकसान जी को अपने धरती ने कम कर सका और आपा ने भी नुकसान कम कर सका।
1: जी हाँ,
2: इसी एक चीज है सिंगल यूज प्लास्टिक और बिरो दुष्परिणाम। जिकी चीजियां जिको प्लास्टिक आपा एक बार उपयोग कर परा फेंक दवा
1: पाछो काम में नहीं,
2: काम में नहीं लेवा बिना सिंगल यूज प्लास्टिक। हमारा अपन आधुनिक जीवन में प्लास्टिक रो उपयोग आपा जानाया के दिनो दिन बढ़तो जा रियो। हर चीज रे महीने चाहे वो बाजार रो सामान लावणो हो, चाहे पानी री बोतल लेनी हो, चाहे चम्मच कप कटोरा जिका आजकल डिस्पोजल ब्याह शादियां में फंक्शन में आया करे।
1: बात बताऊं थाने
2: बे सगली चीजियां जिके चाहे पैकिंग रो सामान हो बे प्लास्टिक को बनोड़ी और बियाने एक बार काम में ले फेंक दिया करा, जिका कहीं है कि अपन धरती ने और पर्यावरण ने नुकसान पहुंचाया करें।
1: ओ ओल बुकिन है कि देखो अपन के हो के आलसी हो गया। पहले मेहमान आमता जन घर ने मायने गिलासा होती कांसेरी तांबेरी पीतलरी होती, लोग तो होने चांदी वाला में पीऊता खाऊता है, पर धीरे धीरे माटी वाली आई स्टील लड़ाई बढ़ता ही तो ठीक है। पर अब तो मेहमान आवे जन बे कोपड़ा लावे प्लास्टिक वाला, चाय भी मैर सिकंजी भी
2: तो भाई देखो ओल बो तो नहीं है, आपने संकल्प लेनो चीज है कि यार जिका दुष्परिणाम
1: है गलाने चगलान था है।
2: हाँ,
1: फिर भी आंख मीच रंदेरो करे।
2: और बिर खार दिन मती है कि जिकी पॉलीथीन है प्लास्टिक थैले है ए नाल्या में अड़ रुक जाया करे जिके सु पानी रो भराव
1: जाए डाटो आ जाए ने।
2: हां डाटो आ जाए और कई है के याने जलावे कई लोग तो बियां सु कई है के धुओं निकले प्रदूषण प्रदूषण वायु प्रदूषण फैले और जमीन उर्वरता तो देखो के लेवा तो अपा काम में एक बार यहाँ पर खत्म होने में सालों साल लगाया करें।
1: वे कहीं कि आप यूज करी यार जट चाय पी ढाबे माथे या हड़क माथे काम कर हड़क माथे फेंक दीर बिंग आगे कोई खाऊन पीऊन की चीज पड़ी है तो बापड़ी बे जो का निरीह पशु है बोला जिंदावर है बे भी लालच में भी प्लास्टिक ने खा ले। कई बार पशु मरने रो और पशु धन रो नुकसान रो कारण हो प्लास्टिक।
2: कई बार पढ़ा के डॉक्टर ऑपरेशन कर निकाले पांच किलो दस दस किलो
1: अब बताओ बे
2: आ और समुद्र में भी जिके नदियां रे द्वारा जावे है तो प्लास्टिक रो पहुंचने सु मछलियां है कछुआ है दूसरा जिका
1: जैव विविधता कम होगी।
2: हां बे ने नुकसान पहुंचा और मानव स्वास्थ्य माथे देखो इरो दुष्परिणाम है ही कई तरह रा हानिकारक रसायन जिका आया करे जिका अपन चाहे गरम चाय खाणो या पानी अपन लेवा तो बिन में कई तरह नुकसान जिका है जानकार के होया करे तो अपन ने ये चीज बचनो है और बचन सारू अपन संकल्प तो जिको देखो चोखा लेना ही है कि भाई कपड़े रा या जूट रा थैला अपन ने काम में लेना चीज है। मिट्टी है स्टील है कांच है या कागज है जिकी लिफाफा और है बे चीजें बनोड़ी अपन ने काम में लेनी चीज है। सरकार भी कई जगह पॉलीथीन रे मथे प्रतिबंध जिको लगाएड़ो है और भी प्रतिबंध ने आपा कहीं है कई बार तोड़ दिया करा तो अपन ये चीज बचनो है। अपना जिका प्रतिबंध लगाए बिना मान कानून रो

0: जी को है बहुत बहुत ही जरूरी है सब।
1: अब
0: और
1: देखो
0: जागरूकता फैलानी है, चाहे अपना स्कूल है, चाहे टाबरियान है, चाहे गांव में है, चाहे शहर में है।
1: अब बात आ है थे इतनी बात करी नहीं जन मेरे तो मन में हूँ आई कि ओल बो तब किन दाबी लाई में थे रूं रगला ही शामिल है पर अच्छे काम री शुरुआत अपन खुद करनी पड़ी। जद भी आप बाजार जाओ तो एक कपड़े रो थैलो आगे राखो, लोग कही वो थैलो लेवड़ो के फिर लोग बोलेंगे अब है कहीं लोगन दे कर चलांगा आप आमने अनुसार चला। पर जे विविधता री बात करा पर्यावरण नुकसान री बात करा तो एक बात हम ही आवे कि माटी री चीज़ें अपना वहाँ धातु री चीज आप ले सको बनी प्लास्टिक ने अड़गो बाड़ो। और काम री बात आए कि कुदरत ने प्रकृति ने आ पेड़ पौधा ने जीव विविधता ने बचा रखो और फूट रहा टेम मत गीतर लौना होते
0: तो अगलो गीतर लो किरो ऐसा
1: करीम का खेजड़ला रहे
0: सुनाओ
1: इथल पिथल
0: आउन दो सा
1: लोस सा।

0: 90 साल की आपकी आकाश वाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना।
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: तो सर रामस्वरूप जी देखो बातां करी खेती री और जे विविधता री बीरे सागे सुनिया मीठा सा कीतड़ला और ए सगली चीजें चोखी लागे है अपने भगत रे सागे। और भगत जी को इस वे देखो दौड़ तो जा रही है और भगत दौड़ते भगत रे में लोग आधुनिक होता जा रही है। आधुनिक तरह सागे कहीं है पुरानी चीजें लारे रह जाए जहाँ बिहार महत्व कम हुए बिहार पूछ कम हो जाए इसो ही एक
1: आपन। एक बात बताऊं
0: हाँ
1: थे एक वो गीत सुनियो के मर्दुरिया दौरा में चाले ऊंट गाडो।
0: हाँ सुनियो सा।
1: अब देखो खाली गीता ताई तो ऊंट गाडो है कोनी दौरे में तो जानो है तो थारी बे गाड़ियां तो जाए कहानी
0: पर दौरा देखो अब कम हो रहा है लोग दौरा
1: थे लेके गया जट खेत है नी चांदी जड़ी चमकती रेत भया जेड़ो ए तरह दौरिया पलपलाट करता ए आज भी हैर जरूरत है कि माँ दौरा मत जावन खातर ऊंट गाडो और ऊंट होना चाहिए कुरिया होना चाहिए टोडिया होना चाहिए रांडिया होनी चाहिए। अब के अन तो ना ही ठा को नी
0: दिखनी भी तो कम होगी नहीं। अबे
1: अब देखो मिनक के है कि फटाफट काम करना चाहिए।
0: हाँ।
1: गाड़ी ले जाए एक घंटे में ऊंट जहाँ जन घंटा लागी हड्डी तीन आदमी तो के है कि रातों रात तो बनना चाहो लखपति यार हगला नहीं है जल्दी बेगा जाएंगे
0: बेगा जाऊंगा। और ऊंट सागे देखो भैया है कि मेरी सार संभाल भी करनी पड़े नहीं तो अठे गाड़ी में चाबी घुमाई चलो।
1: अब के है कि ऊंट खातर खान पान भी चौको चीजे। मने एक बात याद आ गई
0: बताओ
1: देख के हो के कई बार आप कही ओडा ओडी में पहली कहीं करे बडेरा ऊंट राखता नहीं जन ऊंट ने उकाली देवनी पड़ती गुड़ है फिटकड़ी है ऊंट की खुराक होती जन पड़ोसी ऊंट लिया या काकाला ऊंट लिया या बे तो दे गुड़ फिटकड़ी रलडाने आप अगर गुड़ फिटकड़ी वालों हाँस दे को नीर पानी दे रही रलडाना तो अब एक हंसने री बात है पर देखा देखी कहानी आप लोग देखा देख गाड़िया मोटरसाइकिल अपना ली पर देखो ऊंट गाड़े री तो हुआ कौन एक ऊंची पोलस है खेत बाउड़े दोरे माते पड़ी हुए लाटो बिन थारी गाड़ी तो ला सके कान चार सकाले।
0: और पहले तो रामा सामा करता पूछता भी दिनों दापो कहीं है पशु किता है जिनोर किता है बा बीमो पतो लागतो के भी कितो
1: पैसा लो है।
0: हाँ
1: लखपति आदमी पहचान ऊंट गाड़े हो।
0: हाँ कितनी गाड़ियां गणी आगे कितनी बकरियां बा पूछता अब तो गाड़ियां गोड़ियां होगी जने के बड़ोड़ी काल की गाड़ी आ गई तकड़ो आदमी है के तो देखो पूछ कम हुई जने कहीं है के जिको अपन मर्दरो जाज है इरी उपयोगिता कम हुई जने इरी संख्या कहीं है के
1: कम
0: घटन लागी और ये घटती संख्या चिंता रो विषय और चिंता खाली अपन ही को नहीं अपनी सरकार ने भी है बीरे सारू अपनी जी की राजस्थान सरकार है बा ऊंट संरक्षण योजना शुरू करी है जिके रो मोटो उद्देश्य हुई है कि ऊंट जी की नस्ल जी की बचावनी और ऊंट पालका ने आर्थिक सहायता देनी।
1: एक बात और सत्तू भाई बात आए कि ऊंटार खातर गवर्नमेंट देवे फ्री वाली दवाई ऊंटार कल्याण खातर ऊंट री संख्या घटी जन सरकार एक कदम उठायो कि इन राज्य पशु रो दर्जो दी। पहली राज्य पशु अपनो जो को वन्य जीव है बी में चिंकारा है पालित पशु री श्रेणी में ऊंट ने शामिल करी
0: बहुत अच्छी बात है।
1: और ऊंट अपनी और खान है राजस्थानी संस्कृति में ऊंट रो श्रृंगार देखो ऊंट री दौड़ देखो एर ऊंट रे खातर अपन बीकानेर
0: नाच देखो वीरो।
1: हां ऊंट री
0: और अपन बीकानेर में तो ऊंट
1: उत्सव अपनी लाठी पहचान है
0: देश विदेश का पर्यटक आया करे तो ये उद्देश्य वही है ऊंट संरक्षण योजना रो के भाई ऊंटा री जकी घटती संख्या बेन रोकनी ऊंट पालन ने लाभकारी
1: बनावण खातर
0: ऊंट पालकारी जकी आर्थिक स्थिति बा सुधारनी रेगिस्तानी संस्कृति और अपनी जी की परंपरा है बिने बचावनी ऊंट दूध और बिने पर्यटन जी को है बिर सके जोड़ करो
1: देखो कितनी फुटरी बात कही कि आपने ऊंट नीर जो को दूध है बिर मायने जो की सुगर है जो के नाम आवे
0: रिसर्च भी चले है
1: अपने के नाम लो सुगर ने
0: भाई डायबिटीज जी की है
1: जी की भी है बा कम करन री अपार शक्ति है ऊंट दूध खाली सोखे ना पीर आदमी औषधीय रूप में भी पी सके है और कहनो कहीं ऊंटरी जकी बाल है बे बाखिलियो बने गलीचा फूटरा बने ऊंटरी कलाकारी देखन लायक बने रहा अपनी संस्कृति रोड खाने इतनी
0: सही बात कही अपनी सरकार भी कहीं ऊंट रो जो है चिकित्सा शिविर टीकाकरण पशु स्वास्थ्य सुविधा ये भी उपलब्ध
1: करावे
0: और कई जगह तो पशु मेला और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर ऊंट पालन ने प्रोत्साहन भी दिया करे। और ऊंट है दूध रे उत्पादन में बड़ा वो दे रही है वैज्ञानिक जी का कह रहा नहीं कि भाई ऊंट जो को दूध है वो पौष्टिक होया करे राजस्थान सरकार जी की ऊंट है दूध ने डेयरी उद्योग में भी जो को डेयरी उद्योग है बीर में भी इन्हें बड़ा

0: दे रही है। और बीकानेर जैसे बात करी कि भी अठे अपने राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र है जो ऊँट पालन और ऊँट दूध पर शोध रो जो काम वो कर रही है। और अठे ऊँट है दूध रहा कई उत्पाद भी जी का है नी बनाई दे आइसक्रीम तक भी थे, बन रही है।
1: बुल्लो कुं करो एक अपनी बॉर्डर माथे जकी एक फौज रो एक
0: पलटन
1: पलटन है
0: हाँ।
1: बापुरी ऊंटा माथे आधारित है। बीएसएफ रे मायने अपने जका ऊंट रा जवान
0: पुराने जमाने में अपने गंगा रिसालो जी को हो
1: देखो देखो कित ले गया अमेरिका भूल गया थे
0: और विदेश में भी
1: ले गया पण ई बात ने अपन सिरे राखनी है और ध्यान और राखनो है कि सरकारी इनरोल कल्याणकारी योजना और फायदा उठावा और ऊंट ने बत्थो बत्थो संरक्षण देवा वो अपना फर्ज बने
0: और एक और फर्ज बने अपनो
1: अतई घणी कर ली। अब देखो गीत संगीत का निलेजो और अभी कोई हांतरो गीतर तो होना होते
0: तो बिछोड़ो आउन दो समंदर खान रे गायड़ो।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास, आकाशवाणी बीकानेर का।

0: मेले में।
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।
2: तो बात करी अपा उठारी संख्या जी की है कम हो रही है और संख्या क्या कम हो रही है, क्या ध्यान पड़ेगा, दिखना कम हो गया और पशुओं की गणना भी होया करे भगत सारू भी यही कही है कि देखो गणना में नहीं जाने कई चीजें ब्यू कोई फायदे की चीज़ है बिना खातर कहीं योजना बनानी है बीर अपन ने आइडियो लाग जाया करे बीर अनुसार अपन योजना बना सका तो इन्हें सारू अपनों भी विकास करना सारू यदि अपनी जनगणना हो जाए और वे भी है।
3: बार देखो सत्तू भाई आपने और कार्यक्रम होने वाला ने अगला ठा है कि अपनी जनगणना है बीरो पहलो जो को चरण है अब बार मकान और भवन रो गणना रो काम चल रही है। अपनी जनगणना जनवरी 2027 में उसी यही हागणी प्रगणा का अपने घरे आई आपनो फर्ज जो बने कि कई बार आपा जका कार्मिक घरे आवे बा सोचा कि वो तो गवर्नमेंट रो काम है तो मारो काम है आनंद पैसा मिले है
2: आपने
3: सहयोग वो करना चाहिए कि बे तपती लूर है मायने जनगणना रो बड़ो काम उत्साह करे आप रे घर तक आवे आप रे खंड ब्लॉक तक आवे
2: और अपन जानकारी देनी है खाली
3: सही और सही कोई जानकारी हाँ। देनी है अपन घर टापरो जो कच्चो है तो कच्चो बताना है बीरमान दो भाग है तो दो भाग अलग अलग बताना
2: की सुविधाएं हैं घर मैंने बतानी है
3: बीरमान सगली चीजें लिखी सा सड़क मार्ग की शोक है कंक्रीटली सड़क है डामर रोड है बिल्कुल और बिरे अनुसार ही आप बतावे है कि आने वाले टाइम में आपने जके भी गांव री भी कस्बे री योजना बनी तो आपनो फर्ज हो बने कि आपनी जनगणना आपनो विकास रो आधार है। वो मोटो नारो नहीं है वो एक लांठो काम है इन लांठे काम ने अपन सहयोग करना है
2: बिल्कुल करा सर राम स्वरूप जी और अब सहयोग थे भी करो
3: दिया बुद्धिर टाइम में कोई बदन होना हो
2: बिल्कुल
3: थे होना हो कोई और
2: देखो शेर मोहम्मद सुलखानिया रे आवाज रमे ने वो मीठो सो भजन सुना सा।

अभी ग्रामीण भाइयों ने सुना अपना ग्रामीण जगत कार्यक्रम। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 7:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत।

सुगम संगीत कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति के रूप में अभी आपने सुना शोभा राव के स्वर में मीरा का लिखा ये भजन। आइए अब सुनते हैं कबीर की भक्ति रचना पुष्पा हंस के स्वर में।

पुष्पा हंस के स्वर में गई। कबीर की इस भक्ति रचना के बाद सुगम संगीत कार्यक्रम के आखिर में सुनिए अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये मीरा भजन।

अनुराधा पौडवाल और साथियों के युगल स्वरों में गए इस मीरा भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज के इस फिल्म संगीत कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं भारतीय हिंदी सिनेमा के सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी राम लक्ष्मण को। आज संगीतकार जोड़ी राम लक्ष्मण के लक्ष्मण यानी कि विजय पाटिल की पुण्यतिथि है। हम आपको सुनवा रहे हैं जोड़ी राम लक्ष्मण के संगीत से सजे कुछ फिल्मी गीत।

उदित नारायण, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में ये था अनमोल फिल्म का गीत। माया गोविंद की गीत रचना थी और संगीत रचना राम लक्ष्मण की। दोस्तों, संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम विजय पाटिल था। वे संगीतकार जोड़ी राम लक्ष्मण में से एक लक्ष्मण थे, जबकि उनके जोड़ीदार राम यानी कि राम सुरेंद्र थे। राम सुरेंद्र की मृत्यु के बाद विजय पाटिल यानी लक्ष्मण ने अपने नाम के साथ राम भी जोड़ लिया और इस प्रकार ये जोड़ी बनी राम लक्ष्मण। लेकिन इस जोड़ी से पहले लक्ष्मण फिल्मों में संगीत दिया करते थे। अब हर हल कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं इसी राम लक्ष्मण जोड़ी से संगीत से सजा फिल्म हमसे बढ़कर कौन का ये गीत। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, शैलेंद्र और भूपेंद्र की आवाज़ों में।

मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, शैलेंद्र और भूपिंदर की आवाज़ों में ये था हमसे बढ़कर कौन फिल्म का ये भक्ति गीत। दोस्तों, संगीतकार राम लक्ष्मण का जन्म 16 सितंबर 1942 को हुआ था और हम आपको सुनवा रहे हैं राम लक्ष्मण के संगीत से सजी फिल्म हम आपके हैं कौन का ये गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम की।

श्रोतो, राम लक्ष्मण के संगीत में एक अजीब सी कसक और एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। उनके संगीत को सुनकर बच्चे, बूढ़े और जवान सभी झूम उठते हैं। दोस्तों, लक्ष्मण यानी कि विजय पाटिल पहले लक्ष्मण नाम से संगीत दिया करते थे, लेकिन फिर वो मिल गए एक दोस्त जिनका नाम था राम सुरेंद्र। उनके साथ ही ये फिल्मों में काम किया करते थे, संगीत दिया करते थे, लेकिन फिल्म एजेंट विनोद में गाना गाने के बाद अचानक संगीतकार राम का निधन हो गया और उसके बाद संगीतकार लक्ष्मण उर्फ विजय पाटिल ने अपना पूरा नाम ही राम लक्ष्मण रख लिया। यह है राम लक्ष्मण के संगीत से सजी फिल्म पत्थर के फूल का गीत। आवाजें एक बार फिर लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की।

राम लक्ष्मण ने करीब 150 फिल्मों में संगीत दिया था, जिनमें हिंदी के अलावा मराठी और भोजपुरी फिल्में भी शामिल हैं। दोस्तों, मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन के साथ, हम साथ साथ हैं फिल्म में भी उन्होंने संगीत दिया था, और इस फिल्म के सारे गाने लोग आज भी बहुत पसंद करते हैं। यह है हम साथ साथ हैं फिल्म का गीत, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक की आवाजों में।

संगीत कार्यक्रम में हमने याद किया संगीतकार जोड़ी राम लक्ष्मण के लक्ष्मण यानी कि विजय पाटिल को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये फिल्म संगीत पसंद आया होगा।

फिल्म हम साथ साथ हैं के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारो चैनल है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए अब रसास्वादन करते हैं लोक संगीत का।

भूंगर खां के स्वर में गाए इस लोकगीत के बाद आइए अब सुनते हैं फतेहबाई के स्वर में ये लोकगीत।

श्रोताओं, तो ऐसे लोकगीत, ऐसे लोक कलाकार और ऐसा लोक संगीत जिस पर पूरे राजस्थान को गर्व है, और इसी श्रृंखला में हम आपको सुनवा रहे हैं पद्मा व्यास के स्वर में ये लोकगीत। इनके साथ ढोलक पर संगतकार हैं पूनम चंद निधारा।

0: श्रोताओं, हमें खेद है कि समयाभाव के कारण ये लोकगीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाए। बहरहाल पद्मा व्यास के गाए इस लोकगीत के साथ ही सुगम, क्षमा करें, लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। थोड़ी ही देर में समाचार संध्या और उसके बाद न्यूज़ एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
4: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
1: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा

0: बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
1: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन रडार आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। ये देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड्स ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 100,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट UG परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री

0: की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह

0: दिल्ली।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरीबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय

आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम का पहला गीत मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से। आवाजें हैं महेंद्र कपूर और साथियों की।

जी हाँ दोस्तों, प्यार ही जिंदगी है और इस जिंदगी से अगर प्यार निकल जाए तो फिर जिंदगी नीरस लगती है। अनजान की गीत रचना है और कल्याण जी आनंद जी की संगीत रचना।

जी हाँ दोस्तों, प्यार ही ज़िंदगी है। और इस ज़िंदगी में कभी ऐसा हो कि हमारा जो प्यारा है, हमारा जो प्यार है, वो अगर हमसे बिछड़ जाए तो फिर जीना बड़ा दुभिर होता है। लेकिन जब वही हमारा अपना बिछड़ा हुआ हमें मिल जाए तो फिर दिल बाग बाग हो जाता है।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे हैं लावारिस फिल्म का ये गीत। दोस्तों, सही मायने में कोई भी लावारिस पैदा नहीं होता, बस लावारिस उसको कर दिया जाता है।

बिछुड़ने के बाद मिलन एक अमृत सा लगता है। और दोस्तों, हमारा आप सभी से निवेदन है कि हम और कुछ न कर सकें, कुछ नहीं तो न सही, लेकिन हम इतना ज़रूर करें कि हम किसी के लिए बेगाने न हों। हम किसी के अकेलेपन का कारण न बने। हम किसी को सुख देने वाले बने। किसी का हाथ थाम कर उसको आगे बढ़ाने वाले मिले। ये है कार्यक्रम का आखिरी गीत, मेरे हम सफर फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में गाए फिल्म मेरे हम सफ़र के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 9:30 हुए हैं और अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगीत, और इसमें हम आपको सुनवाते हैं पुरानी फिल्मों से गीत।

लता मंगेशकर के स्वर में ये थी काजल फिल्म की दर्शन से भरी गीत रचना। गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार रवि थे। और आइए अब सुनते हैं प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

दुनिया का खेल निराला है, किसी को इस जहां में प्यार मिलता नहीं और किसी को प्यार मिलता है तो यूं लगता है कि इसके लिए एक जन्म क्या कई जन्म काफी है। वहीं दोस्तों, कभी जीवन में ऐसा भी मोड़ आता है कि हमें कोई अपना मिलता है तो हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या न करें, कहां जाएं,

बहुत से गीत ऐसे हैं जो हमको यूं लगते हैं कि ये हमारे अपने हैं। उन्हीं में से एक है ये।

आशा भोंसले की आवाज में ये था धुंध फिल्म का गीत, साहिर के बोल और रवि का संगीत। सच में दोस्तों, जिंदगी में कभी उलझने महसूस होती हैं तो कभी खुशियां। वैसे देखा जाए तो जिंदगी क्या है, बस एक पहेली है। मंदा डे की आवाज में फिल्म आनंद का ये गीत

दोस्तों सच में ज़िंदगी एक पहेली है, लेकिन इस ज़िंदगी में जीने के लिए बस एक ज़िद ज़रूरी है।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में यह है फिल्म लैला मजनू का गीत, साहिर के बोल हैं और मदन मोहन का संगीत।
1: लौट जाऊं क्या कयामत है।

जी हाँ दोस्तों, प्यार दीवाना होता है और उस प्यार भरे दीवानेपन में कोई भी क्षमा बनकर जलने को भी तैयार हो जाता है।

दुनिया में हर चीज की हद होगी, मगर प्यार की क्या हद होगी। ऐसा ही कुछ था इस गीत में जो अभी आपने सुना, और शायद ऐसा भी कुछ है इस गीत में। मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम आग। बोल बहजत लखनवी के हैं और संगीत राम गांगुली का।

मुकेश की आवाज में गए फिल्म आग के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। अब उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तां आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले होगा।

ये सरसराती हवा, ये लहराते खेत, ये बलखाती नदियाँ, ये चरिंद, ये परिंद, यही तो जिंदगी है, यही तो जिंदगी है। आलमी हयातियाती तनवों का दिन आज हम मना रहे हैं। आप तमाम को ये दिन बहुत बहुत मुबारक, यानी कि जैव विविधता का दिन। किस तरह से दुनिया में हम अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं और बहुत ही सारी कुदरत की नेमतें हैं जो हमें नज़र आती हैं। उनका दिन, उनका खास रोज़ हम मनाते हैं, उसकी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आकाशवाणी 101.2 आपने ट्यून इन किया है और आज है जुमे की शब और आज हम लेकर आते हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है गुलिस्तां। जी हाँ, ये बज़्म आरास्ता हो चुकी है गुलिस्तां की और मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर ज़ेबा ज़ीनत। कबूल कीजिए मेरा आदाब। दोस्तों, आज हम आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आए हैं, चलिए वो बताए देती हूँ। वैसे एक बात और बताती हूँ कि गर्मी ने अपनी शिद्दत अख्तियार कर ली है। मई का महीना है तो साहब गर्मी तो होगी। अब आप कहेंगे भाई इसमें कौन सी नई बात कर दी। नई बात यह है कि अब रातें भी गर्म होने लगी हैं। जी हाँ, अभी तक तो दिन ही गर्म होता था, रात में थोड़ी सी खुनकी हो जाती थी, लेकिन अब रात में भी गर्मी का एहसास होने लगा है और अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मी और बढ़ेगी। और कहते हैं कि जिस कदर गर्मी होती है उतनी ही अच्छी बारिश होती है। तो दुआ कीजिए हमारे जंगलात के लिए, हमारे खेतों के लिए, हमारी फसलों के लिए कि बहुत अच्छी और खैर की बारिश हो, क्योंकि कितने सारे लोग हैं ना जो सड़कों पर भी रहते हैं और हमारे चरिंद परिंद, हमारे जानवर, ये भी तो बेचारे खुले में रहते हैं, पेड़ों पर, दरख्तों पर रहते हैं। जब ख़तरनाक बारिशें होती हैं तो उनसे भी मुश्किल हो जाती है। तो बस खैर की बारिशों की, अच्छी बारिशों की दुआ कीजिए। चलिए साहब, आज हम क्या खास लेकर आए हैं वो बताती हूँ। आज हम बात करेंगे बातें उर्दू अदब की में हयातियाती तनवों का। आलमी दिन जो हम मना रहे हैं वो क्या है और उसकी क्या अहमियत है। वहीं एक प्यारा सा नगमा सुनेंगे और उसके साथ ही सुनेंगे कलाम शायर में बलजीत सिंह साहब का कलाम। चलिए आगाज करते हैं हमारे प्रोग्राम का जिसका नाम है गुलिस्तां। तो साहब, हयातियाती तनवों का आलमी दिन, यानी माहौल में किस तरह से अलग अलग लोग रहते हैं, किस तरह की जिंदगी है, किस तरह की दुनिया है और उसे हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके माहौल को, इसके तरीक़े को, जीने के सही सलीक़े को सीखने की हमें ज़रूरत है ताकि ये जो ज़िंदगी है ये अच्छी तरह से चलती रहे, हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। यानी हम इंसानों की वजह से ना कुदरत को परेशानी हो, ना इस माहौल को परेशानी हो और ना ही हमारे पर्यावरण को परेशानी हो, ना ही दरख्तों को और ना ही जंगलों को, ना ही समंदरों को और ना ही चरिंद्र परिंदों को। तो चलिए साहब, बात करते हैं आज के इस खास दिन की। हर साल ही 22 मई को दुनिया भर में हयातियाती तनवों का दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद है लोगों में कुदरती माहौल, जंगलात, जानवरों, पौधों और मुख्तलिफ परिंदों के तहफ़ुज़ के बारे में, उनकी हिफाजत के बारे में जानकारी, मालूमात पैदा करना। ये जो हमारी जैव विविधता है उससे मुराद ये है कि ज़मीन पर जितने भी मौजूद तमाम जानवर हैं उनके अलग अलग किस्में हैं। कोई इंसान है, कोई जानवर है, कोई परिंदे हैं, दरख्त हैं, पौधे हैं, पानी है और हवा है। इन तमाम ही चीज़ों को शामिल किया गया है हयातियाती तनवों में और कुदरत जो है इस तमाम ही दुनिया को

देखती है, संभालती है और अलग अलग नेमतों से हमें नवाजा गया है। लेकिन अब हमारा फर्ज ये बनता है कि हम भी इस कुदरत को संभालें, क्योंकि हमें हर चीज़ ताज़ी और बहुत अच्छी दी गई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमारी तादाद बढ़ती रही, जैसे जैसे लोग दुनिया में बढ़ते रहे, हमारी ज़रूरतें बढ़ती रहीं, हमने दुनिया को अपने हिसाब से मोड़ना, जोड़ना, तोड़ना सीख लिया। हमने जंगलात को काटा, हमने नदियों के रुख को मोड़ दिया, हमने पहाड़ों को काट दिया, हमने ईंट पत्थर और गारे की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, बड़ी बड़ी इमारतें बना दी। वहीं हमने बागात को ख़त्म कर दिया, हमने मैदानों को ख़त्म कर दिया। और अब तो आलम यह है कि धुआं, गुबार, पोल्यूशन, इसने माहौलियाती आलूदगी को, जंगलात की कटाई को और बस हर चीज़ को करके हर तरफ तबाही तबाही कर दी है, है ना। आज के दौर में माहौलियाती आलूदगी, जंगलात की कटाई, आबादी में इजाफा और सनअती तरक्की के बाइस इसी की वजह से कुदरती मसाकिन तेज़ी से तबाह हो रहे हैं। जंगलात ख़त्म होते जा रहे हैं, जानवरों और परिंदों की नस्लें भी ख़तरे में पड़ गई हैं, बल्कि इंसानों की ज़िंदगी भी मुतासिर हो रही है। हमें ताज़ा हवा नहीं मिलती है, हमें अच्छे और ताज़ा खाने नहीं मिलते हैं, मिलावटी चीज़ें मिल रही हैं। खुश्क माहौलियाती निज़ाम हमारी जल्द को, हमारी ज़िंदगी को, हमारी ज़ात को तबाह कर रहा है। सूरज की गर्मी बढ़ती जा रही है, बारिशों की कमी होती जा रही है, सर्द मौसम इतना तेज़ हो जाता है कि हम बर्दाश्त ही नहीं होता है। वहीं ग्लेशियर, हमारी बर्फ के पहाड़ हैं, वो पिघलते जा रहे हैं और दुनिया का पूरी तरह से निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो गया है, बिगड़ चुका है। इस वक्त कुदरती मसाकिन का तहफ्फुज़ वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। लिहाजा हमें अपने जानवरों, परिंदे, पेड़ पौधों को और जितनी भी जिंदगियां हैं उनको बचाने के साथ साथ पानी को, जंगलात को, पहाड़ों को, झरनों को, कुओं को, इनको भी बचाने की बहुत ज़रूरत है। सहरा समंदर भी हमारी ज़िंदगी का ही हिस्सा है, हमें चाहिए कि हम इनकी हिफाजत करें, क्योंकि इनके बगैर हम भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। इनका तहफ्फुज़ हमारी हुकूमतों, इदारों और आम लोगों को मिलकर करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और जितना हो सके जंगलों के लिए हिफाजती काम करें। कानूनन कटाई पर रोक लगा देनी चाहिए, हरे दरख्तों को नहीं काटना चाहिए। वहीं पानी और हवा में आलूदगी पैदा ना हो ऐसे काम करने चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है कि हमें एक ये यूज़ एंड थ्रो वाली जो अपनी एक आदत हो गई उसे ख़त्म कर देना चाहिए। मिट्टी की चीज़ें, मिट्टी के बर्तन, इनका इस्तेमाल बढ़ाइए, कचरा मत करिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए, पानी को गंदा कम कीजिए, पानी को बहुत ध्यान से इस्तेमाल कीजिए। बस इतनी सी कोशिश करेंगे और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, कुदरत बहुत खूबसूरत हो जाएगी। चलिए एक गज़ल सुनते हैं और फिर चलेंगे कलाम-ए-शायर की जानिब, जहाँ बलजीत सिंह साहब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं।

आया हवा के वो किसी झोंके की शक्ल में, आया हवा के वो किसी झोंके की शक्ल में, आया हवा के वो किसी झोंके की शक्ल में, छूकर मेरे ख्याल को जाने किधर गया। आया हवा के वो किसी झोंके की शक्ल में, छूकर मेरे ख्याल को जाने किधर गया। खुद में सिमट के रह गई सब हसरतें मेरी, खुद में सिमट के रह गई सब हसरतें मेरी, खुद में सिमट के रह गई सब हसरतें मेरी, एक पल किसी की याद का मुझ में ठहर गया। खुद में सिमट के रह गई सब हसरतें मेरी, एक पल किसी की याद का मुझ में ठहर गया। उसको पुकारता ही रहा बेबसी से मैं, उसको पुकारता ही रहा बेबसी से मैं, हद्दे नज़र से वो मेरी लेकिन गुज़र गया। उसको पुकारता ही रहा बेबसी से मैं, हद्दे नज़र से वो मेरी लेकिन गुज़र गया। गुलशन मेरी हयात का महका नहीं कभी, गुलशन मेरी हयात का महका नहीं कभी, गुलशन मेरी हयात का महका नहीं कभी, उम्मीद का गुलाब भी एक रोज़ झर गया। गुलशन मेरी हयात का महका नहीं कभी, उम्मीद का गुलाब भी एक रोज़ झर गया। शेर देखिएगा, खुद ही बिखर के रह गए अब्रे करम मगर, खुद ही बिखर के रह गए अब्रे करम मगर, इल्ज़ाम तिश्नगी को हवाओं के सर गया। खुद ही बिखर के रह गए अब्रे करम मगर, इल्ज़ाम तिश्नगी को हवाओं के सर गया। हरसू वहाँ थी रोशनी चैनो सुकून की, हरसू वहाँ थी रोशनी चैनो सुकून की, मैं बेखुदी में रात उजालों के घर गया। हरसू वहाँ थी रोशनी चैनो सुकून की, मैं बेखुदी में रात उजालों के घर गया। और जिन रास्तों को मंजिलों का कुछ पता न था, जिन रास्तों को मंजिलों का कुछ पता न था, जिन रास्तों को मंजिलों का कुछ पता न था, उन रास्तों के साथ मैं भी दर बदर गया। जिन रास्तों को मंजिलों का कुछ पता न था, उन रास्तों के साथ मैं भी दर बदर गया। कल शब मेरे करीब से गुजरी थी ज़िंदगी, कल शब मेरे करीब से गुजरी थी ज़िंदगी, जिसको कज़ा में जान के अफसोस डर गया। कल शब मेरे करीब से गुजरी थी ज़िंदगी, जिसको कज़ा में जान के अफसोस डर गया। फिर आ गया हूँ जाहिलों की मैं कतार में, मक्ता देखिएगा, फिर आ गया हूँ जाहिलों की मैं कतार में, ये इल्म बेहिसाब भी जब बे असर गया। फिर आ गया हूँ जाहिलों की मैं कतार में, ये इल्म बेहिसाब भी जब बे असर गया। दिल का फलक यकीन की लौ से निखर गया, एक माहताब ख्वाहिशों का जब उभर गया। रिश्ता जो धूप का है किसी सायबान से, रिश्ता जो धूप का है किसी सायबान से, ऐसे वो जुड़ गया है मेरी दास्तान से। कौलो करार ताक पे सब उसने रख दिए, एक पल में वो पलट गया अपनी ज़ुबान से। कौलो करार ताक पे सब उसने रख दिए, एक पल में वो पलट गया अपनी ज़ुबान से। और उम्मीद का चराग न जब दिल में जल सका, उम्मीद का चराग न जब दिल में जल सका, हम भी अलम में डूब गए इत्मीनान से। उम्मीद का चराग न जब दिल में जल सका, हम भी अलम में डूब गए इत्मीनान से। खिलते रहे लबों पे तबस्सुम फरेब के, खिलते रहे लबों पे तबस्सुम फरेब के, नश्तर चले खुलूस वफा की कमान से। खिलते रहे लबों पे तबस्सुम फरेब के, नश्तर चले खुलूस वफा की कमान से। उसने भी एक दिन मुझे काफिर बता दिया, उसने भी एक दिन मुझे काफिर बता दिया, जिसके लिए मैं खेल गया था ईमान से। दिल टूट जाए पर नहीं होती है आँख नम, दिल टूट जाए पर नहीं होती है आँख नम, देखे हैं चंद लोग बड़े सख्त जान से। और जब से यकीन की रोशनी जुल्मत में ढल गई, जब से यकीन की रोशनी जुल्मत में ढल गई, हमने बना ली दूरी।

आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तां। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद रईस खां का सितार पर बजाया राग नंद कल्याण। इनके साथ तबले पर संगतकार हैं जाकिर हुसैन और तंबूरे पर है अमाम। तो आइए सुनते हैं उस्ताद रईस खां का राग नंद कल्याण में।

अभी आपने सुना उस्ताद रईस खां का सितार पर राग नंद कल्याण में सितार वादन। इनके साथ तबले पर संगतकार थे जाकिर हुसैन और तंबूरे पर इमाम। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में रिले किए जाएंगे।

0: रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Navneet Adhikari. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidas today called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. The joint statement on the state visit of the Cyprus president said both leaders urged for strong and concerted action against all UN and EU designated terrorist and terrorist entities, including those under 1267 UN

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को